0: अहो ऐकलत का, तो आमचा रेडिओ पुणेरी, तो आमचा रेडिओ पुणेरी।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुश।

प्लस 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन

0: पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणे आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले झक्कास रेडिओ स्टेशन पुणेरी आवाज ऐकत रहा 107.8 FM, आनंदी रहा आणि आनंद
1: सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, परमात्मा कहते हैं कि पर चिंतन पर दर्शन अर्थात दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की गलतियों को देखना, दूसरों के दोषों को स्वभाव संस्कार को देखना, उसी का चिंतन करना, वर्णन करना, इसी को परचिंतन परदर्शन कहते हैं। यह एक विकार है। परचिंतन परदर्शन करने वाला व्यक्ति दूसरों के दोषों, कमियों या उनके व्यवहार में गलतियां निकालता रहता है। आलोचना करते रहना उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरों के जीवन में अत्यधिक रुचि लेने लगता है। परमात्मा कहते हैं दूसरों के बारे में सोचने से हमारी अपनी ऊर्जा और मन की शांति नष्ट हो जाती है। परचिंतन से मन में नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, घृणा, अहंकार उत्पन्न होता है। परमात्मा कहते हैं कि परचिंतन पतन की जड़ है। परचिंतन परदर्शन से किसी का फायदा तो होता नहीं, सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर कोई आपको सच्ची बात भी सुनाने आए और आपने सुन लिया, बुद्धि

धारण कर लिया तो आपका मन और बुद्धि दोनों मैली हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी और की कमी कमजोरी को अपने मन और बुद्धि में संभाल कर रख लिया। अगर आपने एक बार भी किसी की बातों को सुन लिया तो सुनाने वाला व्यक्ति बार बार आपके पास आएगा। आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन जाएंगे। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना है। आपका मन और बुद्धि कचरे के डिब्बे की तरह बन जाएंगे, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के कमी कमजोरी गलतियों का संग्रह होगा। इतना निगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने मन बुद्धि में भरने के बाद आप सकारात्मक सोच ही नहीं पाएंगे। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना मुश्किल लगेगा। परमात्मा कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कई बार कई लोग कहते हैं कि पता तो चलना चाहिए कि क्या बात है, और दूसरों की गलतियों को बड़े रुचि से सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? अगर ठीक ही नहीं कर सकते तो सुना क्यों? उससे आपको क्या फायदा हुआ? अपना समय वेस्ट किया, अपनी शक्ति निगेटिव बातों में वेस्ट किया, मन को भटकाया। जितना हम दूसरों के अवगुणों का चिंतन करेंगे उतना वो अवगुण हमारे चित्त पर रहेंगे, और जो अवगुण हमारे चित्त पर रहेंगे वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाएंगे, और जो हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा व्यक्तिमत्व बन जाएगा। अवगुणों का चिंतन करने से अवगुण हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि अवगुणों पर ही हमने ध्यान दिया है। जिस पर भी ध्यान लगाएंगे वो चीजें समाज में बढ़ती जाएंगी। अवगुणों का चिंतन करने से वायुमंडल वातावरण खराब होता है, उस जगह का वाइब्रेशन खराब होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां हमें दिव्य शांत वाइब्रेशन का अनुभव होता है, क्योंकि हम बड़ी ही श्रद्धा से अपने देवी देवताओं के गुणों का वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, चिंतन करते हैं। गुणों का चिंतन करने से हमारा मन भी प्रसन्न शांत होता है, उस जगह के वातावरण सकारात्मक बन जाता है। हम अपने चिंतन से किसी भी जगह का वातावरण निगेटिव बना सकते हैं, और अपने चिंतन द्वारा किसी भी जगह का वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं। बुराई का निर्माण करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छाई का निर्माण करें जो हमें भी अच्छा महसूस कराए। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम

0: खुद भरपूर है, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप, अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है, जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि किसी की बुराई सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। अगर आप किसी की बुराई सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो आप उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, अगर आप उस व्यक्ति को बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, उस व्यक्ति का कल्याण कर सकते हो, तो कल्याण की भावना से भले सुनो, लेकिन अगर आप व्यक्ति को बदल नहीं सकते तो फिर किसी का अवगुण बुराई सुनकर फायदा ही क्या है, इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारा मन तो उस व्यक्ति प्रति घृणा नफरत द्वेष जैसी निगेटिव भावनाओं से भर गया। निगेटिव भावनाएं हमें भी शांत सुखी रहने नहीं देगी। दूसरों की गलतियों की सजा हम अपने आप को भी देते हैं, अपने मन की शांति खुशी गवाकर। अगर हम किसी को सुधारने के निमित्त है तो सुधारने की भावना से, उसका कल्याण करने की भावना से उस व्यक्ति की गलतियों को सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम निमित्त नहीं हैं, हम उसे सुधार ही नहीं सकते, तो उस व्यक्ति के अवगुणों को मन बुद्धि में सजाकर रखने का फायदा ही क्या है। परमात्मा ने हमें मन बुद्धि किसी के अवगुणों को रखने के लिए नहीं दी है, मन अच्छा सोचने के लिए दिया है, और बुद्धि परमात्मा के ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए दिया है। जब हम किसी के अवगुणों को सुनकर उसे अपने मन बुद्धि में रखकर अपनी भावनाओं को दूषित करते हैं और मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत क्रिएट करते हैं, तब हमारा उस व्यक्ति के साथ कर्मों का निगेटिव खाता बन जाता है। कर्मों का यह निगेटिव हिसाब किताब का खाता आगे चलकर हमें ही दुख देता है। जन्म जन्म हम सब ने यही किया है, दूसरों के अवगुण देखते आए, उसके बारे में सोचते आए, दूसरों के सामने उसका वर्णन करते आए, ऐसे व्यक्तियों से कर्मों का हिसाब किताब बनाते आए और जन्म जन्म दुख पाते आए। पहले के खाते अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और कहां किसी के अवगुणों को देखकर उस व्यक्ति के साथ कर्मों के हिसाब किताब का नया

हीन करती है, जिसके कारण हमारा पाप का खाता बन जाता है और हम भी दुख पाते हैं। हम उस व्यक्ति को और ही कमजोर करने के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए हमारा भी पाप का खाता बन जाता है, हमारी भी आंतरिक शक्ति घटती है। हमारी सोच निगेटिव नकारात्मक बनती है और हम भी दुख को महसूस करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको किसी की कमी कमजोरी अवगुण नजर आए तो आप उसे दुआ दो, उसके प्रति शुभ भावना रखो, ताकि उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़े और वो उस अवगुण से मुक्त होने का प्रयास कर सके। हमें दुआ देकर औरों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। हमारी बददुआ निगेटिव भावना उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को घटाती है, जिससे हमारा पाप का खाता बन जाता है, जो हमें दुख देता है। इसीलिए सभी को दुआएं देनी है, चाहे कोई कैसा भी हो। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी एक ने किसी के बारे में कुछ सुनाया तो वो दूसरे को सुनाएगा, दूसरा तीसरे को सुनाएगा और सुनाने में भाव ही बदल जाएगा। अगर कोई अपने हिसाब से सुनाएगा, अपना भाव ऐड करके सुनाएगा तो बात कुछ होगी और फैलते फैलते कुछ और ही हो जाएगा। तो ये भी वायुमंडल को खराब करता है। एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुनावे, यह हो नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं कि समझो आपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की और परिचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। किसी के प्रति किसी और की भावनाओं को खराब करना यह भी पाप के खाते में आता है, क्योंकि आपने जिसे भी सुनाया वो उस व्यक्ति को घृणा नफरत के दृष्टि से देखेगा। उसकी भावनाओं को दूषित करने के निमित्त आप बने तो आपने भी आपके पाप के खाते को बढ़ाया, जिसकी सजा आपको भी मिलेगी। परिचिंतन से हमारे कई मनुष्य आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनने से बंधन हो जाता है। परिचिंतन परदर्शन से हमारे मन की एकाग्रता नष्ट होती है, मन उदासी को महसूस करता है, खुशी समाप्त हो जाती है। परिचिंतन परदर्शन से हमारा पुण्य का खाता समाप्त होता है। परिचिंतन परदर्शन हमारे बुद्धि के लिए हानिकारक है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करती है। जो व्यक्ति हमेशा परिचिंतन परदर्शन में रहता है वो भगवान से दूर हो जाता है। उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट होने के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। परमात्मा कहते हैं किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के दिल से गिराना, उसकी बुराई करना भी पाप है। परचिंतन परदर्शन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्व उन्नति नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं कि बुराई सुनने औरों को सुनाने से हमारी खुद की और औरों की अवस्था हलचल में आती है, हम अचल अडोल स्थिर नहीं रह सकते। अगर किसी को सुधारने या शिक्षा देने के कल्याण की भावना से सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे शिक्षा देने के निमित्त नहीं है तो उसे सुनना और फैलाना नहीं है। परमात्मा कहते हैं अगर आपने किसी की गलती कमजोरी सुन ली तो आपके मन के सोच का ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। सेकंड में ब्रेक लगाकर फुल स्टॉप लगाने की ताकत आपके पास चाहिए, नहीं तो

यह परिचिंतन बहुत समय चलेगा, जिससे आपका समय एनर्जी वेस्ट होगी। परमात्मा कहते हैं, हम खुद की स्थिति को बिगाड़कर औरों को ठीक नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को दूषित कर घृणा द्वेष भावना रख कर हमने भी गलत किया। एक गलत दूसरे गलत को ठीक नहीं कर सकता। औरों को शिक्षा देने के लिए या सुधारने के लिए पहले हमारी मन की भावनाओं का ठीक होना जरूरी है। हम ठीक होकर ही दूसरों को ठीक कर सकते हैं। श्रोतेहो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे की 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, परमात्मा कहते हैं कि परदर्शन पर चिंतन से बचना है तो उसका उपाय है स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, परमात्म चिंतन। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यह है स्वचिंतन। जब हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका मनन करते हैं, ज्ञान के ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, उसे कहा जाता है ज्ञान चिंतन। और जब हम परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसके दिव्य गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के कर्तव्यों का चिंतन करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा चिंतन। परमात्मा कहते हैं परचिंतन परदर्शन से बचना है तो स्वचिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, सर्व पर परोपकार करो। परमात्मा कहते हैं कि आपका व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर डिपेंड ना हो। कोई हमसे अच्छा व्यवहार करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो हम भी बुरा व्यवहार करेंगे। तो फिर हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे असली नेचर क्या है? अगर हमारा व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो है ही नहीं। कितने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं। इन सारे स्वरूपों में हमारा वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप कौन सा रहा? परमात्मा कहते हैं कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप अपने वास्तविक स्वरूप, अपने शांत स्वरूप को नहीं छोड़ो। क्यों हम दूसरों के लिए अपनी ओरिजिनल नेचर को छोड़े? हमारा ओरिजिनल नेचर शांत है, हमें इसी शांत नेचर में टिकना है। परमात्मा कहते हैं व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आओ, किसी भी हालात में अपनी शांत नेचर को मत छोड़ना।

हमें सारा दिन यही पुरुषार्थ करना है कि कोई कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, हमें हमारे शांत स्वरूप में टिके रहना है। क्यों हम दूसरों के लिए खुद को बदल दें? क्यों हम अपना ओरिजिनल शांत स्वरूप छोड़ दें? क्यों हम अपनी ऊर्जा को घटाएं? क्यों हम हलचल में आए? क्यों हम परचिंतन परदर्शन में अपना समय गवाएं? हमें पुरुषार्थ करना है अपने शांत नेचर में टिके रहने का, सभी के प्रति शुभ भावना रखकर अपने पुण्य का खाता बढ़ाने का। कभी कभी लगेगा यह आसान नहीं है हर वक्त शांत रहना, लेकिन हमें अपने प्रयत्नों को छोड़ना नहीं है। जब हम अपना ध्यान दुनिया की बातों से हटाकर परमात्मा पर लगाते हैं, तब परचिंतन परदर्शन से मुक्त होना आसान होगा। वेस्ट से बेस्ट की तरफ ध्यान लगाना है। हम जहां भी ध्यान लगाएंगे उसी ओर हमारी ऊर्जा बहेगी और वो चीजें बढ़ने लगेगी। जब हम परमात्मा के दिव्य गुणों पर ध्यान लगाते हैं, तब हमारे अंदर भी अच्छाई दिव्य गुण आने लगते हैं। परोपकार करना हमारे लिए भी आसान हो जाता है। जब हमारा मन ज्ञान के चिंतन में रहता है, तब हम व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। ये विश्व नाटक कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये विश्व नाटक न्यायकारी है, एक्यूरेट है, सही है। यहाँ वही हो रहा है जो कर्मों के फल अनुसार होना चाहिए। सभी मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। ये धरती कर्म प्रधान है, जिसने जो जो बोया है वही पाता है। तो क्यों ना हम पुण्य की खेती करें, सद्भावना शुभ भावना परोपकार के बीज बोकर पुण्य का खाता बढ़ाएं। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया, मन तो

0: दिन चलता है वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन बुद्धि संस्कार, लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स, इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर है, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है, एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां वो उनके कंट्रोल से चले।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का एक पूरा एहसास हमें पता चला कि टेक्निक क्या है, खुद की पहचान भी हुई। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसी आत्मा के साथ, क्योंकि मैं आत्मा हूं, एक ऐसी आत्मा के साथ जो कि प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, प्योरिटी का सागर है, और उसकी वाइब्रेशंस हमेशा मुझ तक पॉजिटिव पहुंच रही हैं। उसके साथ जब रिश्ता जुड़ा तो मैं खुद एम्पावर होती गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसी श्रृंखला में आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको देखना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अगर पूरी श्रृंखला को मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखूं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम आगे कहां पढ़े, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में?
1: आई वुड जस्ट से दैट इट्स लवली टू सी के हाउ एवरीवन has this pure desire to work on themselves. You know, aaj din tak jo hum blame auron par dal dete the, to kahin na kahin har ek jo dekh raha hai usko ek bahut deep realization ho gayi hai, and an amazing sense of self confidence ki okay, it's still in my hands. So wo ek feeling jo hai wo bahut bade ek source of empowerment mil jati hai ki irrespective of कितना भी प्रॉब्लम बाहर हो, स्टिल द सोल्यूशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज इन माई हैंड। और जब ये एक रियलाइजेशन होती कि ये मेरे हाथ में है, चाहे अपना ध्यान रखना, चाहे अपने संबंधों को परिवर्तन करना, और चाहे सिचुएशंस को ठीक करना, सो दिस गिव्स अमेजिंग रियलाइजेशन। और हर एक के जो फोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हर एक को कितना ये एक प्योर डिजायर है टू वर्क ऑन देमसेल्फ्स एंड देन टू सी द रिजल्ट्स। क्योंकि इतना हर एक, जैसे जस्ट यस्टरडे आई गॉट एन एसएमएस फ्रॉम अ सिस्टर एंड शी सेड टुडेज एपिसोड एंड वन प्रॉब्लम जो मेरे साथ सालों से थी वो कल सडनली ठीक हो गई।
0: ये बहुत हो रहा है, एक सूत्र, इनफैक्ट मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बार बार एपिसोड्स में, या लोगों के साथ होता है, एक सूत्र मिलता है और हमें लगता है कि अरे हल्के हो गए, यू नो, बेसिकली वी आर ऑल फीलिंग लाइट।
1: तो दिस आई जस्ट रियलाइज फ्रॉम दैट, आई सेड लुक एट द कि परमात्मा के ज्ञान में कितनी पावर है। कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञान यू नो जीवन को कैसे परिवर्तन करता, कि एक पॉइंट से हमारे सालों के से जो हमने कोई बात पकड़ी हो वो ऐसे खत्म हो जाती है। जस्ट शोज द पावर ऑफ द ज्ञान, बट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ द सोल, कि हम आत्माओं में भी कितनी ताकत है।
0: एक सेकेंड में, सेकेंड हम हवा में उड़ा सकते हैं उस चीज को।
1: तो इसका मतलब अगेन इट प्रूव्स टू मी, टू ईच वन, कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड। जहां हमने इतने सालों तक उस बात को पकड़ी होगी कि मेरे, ये तो मेरी गलती नहीं है, और चेंज करने में वन थॉट, इट्स ओनली अबाउट When I create that thought.
0: अभी तक का जो मेरा बिलीफ सिस्टम जिंदगी हुए, मेरा ये रहा था कि वहां से मिल रहा है, मेरा बच्चे के कारण मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे ऑफिस, मेरी अचीवमेंट के कारण मुझे सक्सेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। ये रियलाइज हुआ कि इट इज ऑल इनसाइड, यू नो, यहां से मिलेगा। लेकिन यहां की भी अभी जर्नी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। तो एक तरफ तो बार बार मेरा वो जो बिलीफ सिस्टम, मेरे को जो आदत पड़ी हुई है यहां से खुशी लेने की, कि उनके आने से मुझे खुशी मिलेगी, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अभी तक उतना नहीं टूट रहा है, और जो अंदर का रिश्ता मेरा अपने आप से जुड़ता हुआ जो है वो भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है।
1: एक्चुअली जो हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। रियलिटी तो पहले भी वही थी, रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। जो हम कह रहे हैं कि मुझे खुशी औरों से नहीं मिलती, मुझे खुशी कुछ करने से नहीं मिलती, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, ये कोई नई चीज आज होने नहीं वाली है। दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग इवन बिफोर हैंड, इट इज जस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेयर। अब सडनली जैसे कि हमने अवेयरनेस आई तो हमें लगा

0: ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही आती जा रही है, हर चीज मैंने करनी है, हर चेंज मैंने लाना है, हर खुशी मुझे यू नो समवेयर आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटिल
1: वेरी ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि अरे मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी या मैं लोगों से मिलूंगी उससे मिलूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी.
0: नहीं नहीं बट सी अगेन आप अपने आप को इन चीजों से कट ऑफ नहीं करेंगे,
1: कट ऑफ नहीं कर रहे लेकिन मुझे ये कि उनसे खुशी मिलेगी को मैं देखना तो कम से कम शुरू करूंगी कि अब मैं उसको तो देखती हूँ कि नहीं मेरे अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, मुझे मेरी खुशी मुझे खुशी मिल रही थी वो है गुड, वो नहीं भी होंगे तब भी मैं वो खुशी क्रिएट कर सकती.
0: एब्सोल्युटली. तो ये तो पहले भी हो रहा था, सिर्फ ये था कि वो है तो मैं खुशी क्रिएट कर रही थी, वो नहीं है तो मैं दर्द क्रिएट कर रहे थे. वो तो पहले भी यही रहा था, सिर्फ ये था कि मुझे लगा था कि उनके आने से खुशी आ गई, बट इट वॉज एक्चुअली उनको मिलने से मैंने खुशी क्रिएट कर दी. नाउ द ओनली थिंग विद अवेयरनेस इज रियलाइजिंग कि आई एम क्रिएटिंग दर्द ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग. दूसरे ने मुझे दर्द नहीं दिया, दूसरे ने मुझे खुशी नहीं दी, आई एम क्रिएटिंग. तो वो करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी फिनिश हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को तुरंत फटाफट से राइट स्टेट ऑफ माइंड में फिर से लाना वो इजी हो जाता है. इट डजंट मीन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे या हम पार्टी नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे बट विद द राइट इंटेंशन कि ये सब क्यों हो रहा है. इट्स अ चेंज, इट्स नाइस टू मीट पीपल एंड व्हेन आई मीट पीपल नाउ इट इज विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग. वो करो, अब आप पार्टी में जाओ, डिनर पे जाओ, बट गो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग योर वाइब्रेशंस. इट विल बी द सेम पार्टी लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप पार्टी में जाओ हर एक से मिलो लेकिन किसी के भी कमेंट से या किसी की भी कोई बात से आप डिस्टर्ब अगर नहीं हो. पहले भी हम जाते थे, कई बातें अच्छी हुआ करती थी, कई बातें कोई ऐसी हो जाती थी जो मैं अपसेट ही होकर वापस आ जाती थी, तो फिर वो डिनर ने खुशी दी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे. नाउ आई गो आई मीट एवरीवन विद द अवेयरनेस ये सब बाहर है ये अंदर है, मुझे क्या करना है क्या लेना है और इसका साथ साथ ध्यान रखना है, इस अवेयरनेस के साथ अब इंटरेक्शन में आना है. तो ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं होगा लेकिन लीकेज बंद होने लगेगी. अभी लीकेज बहुत हो रही थी. देखो हम चार्जिंग बहुत कम कर पाते हैं सारा दिन में. सोल कॉन्शियस रहना दिस इज चार्जिंग, हम कितना कर पाते हैं फिर सारा दिन वही बॉडी को. एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जिंग इतनी सी होगी और डिप्लीशन इतना हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे
1: वही थका हुआ महसूस
0: कहीं भी नहीं. तो एक है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, चार्ज करते हैं, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दिस कि ओवरनाइट आप एकदम भरा हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं.
1: अच्छा, कि दोनों शिफ्ट बहुत बड़े हैं एक्चुअली और दोनों को आप बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाते हैं.
0: हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं उसको एफर्ट नहीं कहें लेकिन जो हम अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं उसको कभी टेंशन मत बनने देना. यू नो कई बार परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारा अटेंशन तो यही हो रहा है कि टेंशन को फिनिश करना है लेकिन कई बार अटेंशन रखने का टेंशन हो जाता है.
1: ओहो मुझसे ऐसा हो गया, उफ ये फिर हो गया ऐसे.
0: ट्रू. सो वो नहीं, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अगेन नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन. हम ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कि मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, विच इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कीप अटेंशन, क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वापस वही ऑर्डिनरी तरह में चलते जाएंगे, ये हुआ गुस्सा किया, ऐसा हुआ गुस्सा किया एंड फिर से वहीं के वहीं पहुंचेंगे. लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है अपना सिर्फ, यू नो लाइक जैसे हम कहें कि अगर आप जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, ठीक है, तो बच्चा जैसे एक पालने में है, क्रेडल में है और माँ पूरे घर का काम कर रहे हैं, ठीक है. नाउ एज अ मदर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि आप घर का भी काम करते हैं
1: एंड यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग,
0: बच्चे का भी ध्यान रखते हैं. तो एक नजर बच्चे पर है, अब आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन फ्रॉम द

0: corner of the eye, you're taking care of the child. अगर बच्चा थोड़ा भी रोना शुरू करता है, आप एक मिनट निकालते हैं, इधर से हटते हैं, उसके पास जाते हैं, चुप कराते हैं, वापस आ जाते हैं. तो हम दोनों काम करते हैं ना. हम ये तो नहीं कहते बच्चे को संभालना है तो मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती. नहीं, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी देखना. इसी तरह यहाँ ये बच्चा है, सारा काम करना है हमें, बाहर सबसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज भी करना है, सब कुछ करना है. एक नजर
1: अपने बच्चे पे, अपने पे रखनी है. हाँ,
0: कि ये कहीं भी थोड़ा सा रोने ना लग जाए या अपसेट ना हो जाए या यू नो गुस्सा ना करने लगे. सो जस्ट दैट लिटिल अटेंशन, नॉट दैट कि मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, मुझे और तो बाहर यू नो आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज बोथ. नो, आई एम गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, कि टेकिंग केयर ऑफ दिस ओनली बाय कीपिंग अ प्रायोरिटी राइट.
1: अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैं एक पार्टी में गई, ठीक है, एक अपने फ्रेंड सर्कल की पार्टी में गई, मैरिज पे है, कहीं पे भी गए, रिलेटिव्स के बीच में गए. वट एवर दे आर टॉकिंग, आई नाउ अंडरस्टैंड कि डस नॉट यू नो लाइक वो उसका कोई लाभ नहीं है.
0: सी, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग आर्टिफिशियल, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्सटर्नली. बी विद देम, बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. अपने आप को काटना नहीं उस ग्रुप से, लेकिन आप ये देखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कि आप जो शेयर करेंगे उन्हीं के साथ उसी टॉपिक पर, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट
1: हो चुका होगा.
0: विच इज ओके. एनीवेज, जब चार लोग बात करते हैं किसी एक बात को लेकर भी, तो चार लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव ही होता है ना. सिर्फ ये है कि अब हमें लगेगा कि कहीं हमारा पर्सपेक्टिव सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है. बट यू नो पीपल आर लुकिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव. अगर आज आप बोल रहे हो कि हम सबकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड फोर पीपल टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम विद योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यू माइट स्टार्ट शेयरिंग द सोल्यूशन. एंड जो लोग, वो चार लोग प्रॉब्लम की बात कर भी रहे होंगे, अगर वो सोल्यूशन की तरफ भी देखते तो वो सोल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हैं. अब हमें ज्ञान से समझ में आया कि सोल्यूशन तो बहुत ईजी है, मेरे पास है, तो मुझे उल्टा अपने फ्रेंड से और लोगों से विड्रॉ नहीं करना है, मुझे सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी स्थिति और अपने पर्सपेक्टिव को मेंटेन करके. कई बार हम बह जाते हैं, या कई बार फिर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं. ईदर ऑफ देम इज नॉट गुड. बह जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में लगेगा अरे मैंने क्या किया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीजों में, मैं कहां कहां इन बातों में चली गई. और विड्रॉ हो गए, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट.
1: इन्वॉल्वमेंट खत्म,
0: इन्वॉल्वमेंट नहीं. और अंदर से देन, क्योंकि हर एक आत्मा का पर्पज ऑफ लाइफ जो है वो है रिलेशनशिप, इंटरेक्शन. तो इसलिए हमें कचना नहीं है, विड्रॉ नहीं होना, सबके बीच रहना है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में चल रही है कि नहीं.
1: अगर इसी में करते करते किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया जो कि मुझे कहीं हर्ट हुआ, या मेरे पर्सनल उस पर कहीं हुआ, आई गो इन टू दैट हर्ट, तो फिर मेरा वो जो ज्ञान, जो ये सोल्यूशन में जहां तक जा पा रही थी, वो नहीं. ये जो मैं कह रही हूँ कि अभी आधे आधे जर्नी जो
0: कोई बात नहीं है, दिस इज द प्रोसेस. जैसे कोई बीमार होता है ना फिजिकली, तो हम बीमार से ठीक हो रहे हैं ना, यही तो हो रहा है. तो थोड़े से कमजोर भी हैं, लेकिन ठीक भी तो हो रहे हैं. अब इस ये जो बीच का फेज आएगा, इनफैक्ट द होल द जर्नी विल गो ऑन. ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन में ये जर्नी पूरी होने वाली है. Every time you will find yourself at a different stage. आज हो सकता है आपको बड़ी ordinary बात से hurt हो जाए, दो महीने बाद आप उन्हीं लोगों को मिलेंगे, वो ordinary बातें आपको hurt नहीं करेंगी, लेकिन उस दिन कोई थोड़ी और बड़ी बात आपको hurt कर जाएगी, और चार साल के बाद उससे कई गुना कोई बहुत बड़ी बात आपको hurt करेगी. लेकिन the journey is going on and then we are reaching towards the stage where we will be pain free. लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में,
1: बार बार नहीं हो रहा है, छोटी छोटी बात नहीं हर्ट कर रही है,
0: तो उससे क्या होगा, पावर अक्यूमुलेट होती जाएगी. अभी अगर दिन में पांच बार हर्ट हो रहे हैं, तो दो महीने बाद आप पांच दिन में एक बार हर्ट होंगे, फिर साल बाद आप पांच महीने में एक बार हर्ट होंगे, एंड देन इट, सो दिस इज अ साइन ऑफ रिकवरिंग. तो रिकवरिंग इज नॉट विद इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स, इट्स गोइंग ऑन. जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज के नॉट एट ऑल. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जाती है, जिसके लिए दिन में पांच बार हर्ट होना नॉर्मल था, उसके लिए पांच दिन में एक बार हर्ट होना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. मतलब लीकेज कितनी कम हुई, कहा तो उससे क्या होता है कि अभी तो मैं

0: होता है, हस्बैंड में, मतलब पहले मैंने गुस्सा किया तब मैं हर्ट हुई, फिर आप तो चले गए, कोई बच्चा स्कूल चला गया हस्बैंड, फिर उसके बाद मैं जो गिल्ट क्रिएट किया फिर मैं और हर्ट किया।
1: और वो इतना ज्यादा देर तक रहता है वो,
0: कई बार देखो बच्चे को तो भूल भी जाता है, वो चला जाता है स्कूल अपने फ्रेंड्स में, लेकिन मदर घर पे बैठ बैठ कर इतना गिल्टी हो जाती है। सो रियलाइजेशन एंड गिल्ट में फर्क है। गिल्टी होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पश्चाताप करते गए, हाय मैंने क्यों किया, हाय मैं, मेरे से नहीं होना चाहिए था, ये चर्न नहीं करते कि मुझे क्या करना है या मुझे आगे से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है।
1: एंड व्हाट वाज इट दैट ट्रिगर्ड, यू नो, दैट हैज हेल्प्ड मी नाउ,
0: यू नो, दैट इज रियलाइजेशन, दिस इज गिल्ट। तो गिल्ट इज डैमेजिंग, लेकिन रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, और रियलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उस पर रिफ्लेक्ट तो करना पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव, रिफ्लेक्ट इन द सेंस फिर से उस सिचुएशन को ले लो और अपने आप को उधर देखो, वेयर डिड आई गो रॉन्ग इन द रिस्पॉन्स, एंड इसकी जगह और कौन सा रिस्पॉन्स हो सकता था, कहां मैं अपने आप को भी और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती थी। लेकिन गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने गलती ही ऐसी की, इट इज अनदर विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी, रिजल्ट नहीं, कई बार बार बार बार बार सोचते रहते हैं और कहेंगे जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे,
1: पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को तय करते हैं,
0: रिवाइंड सब करते हैं, सीखा नहीं जाता हमसे उससे कुछ भी, रिवाइंड करके एक बार उस सिचुएशन को देख ले और अपने आप को देखे उसमें। रिफ्लेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट ये है कि किस पे रिफ्लेक्ट करना है, हम रिफ्लेक्ट सब पर भी कर रहे होते हैं जो जो उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है, नॉट एट ऑल, दे वर प्लेइंग देयर ओन रोल। रिफ्लेक्ट करना है, वेयर डिड आई डू समथिंग विच वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन I do to make it
1: even correct. That's more important than what can I do to make it better, because what happens at times I become so ashamed of myself, mujhe apne upar sharm aa rahi hoti hai agar main rewind karke usko dekh rahi hoti hu ki main aise kaise kar sakti hu,
0: lekin this is relationship with the self. Agar kisi aur se koi galti ho jati hai, ha, hum unko kya kahenge,
1: it's okay,
0: koi baat nahi, move, डोंट सिट बैक विद दैट, उठो आप कर सकते हो, बिकॉज जब कोई गलती कर देता है वो पहले दर्द में चला जाता है, तो उसको अब चाहिए प्यार एंड कॉन्फिडेंस वापस खड़े होने के लिए, तो जो हम औरों को देते हैं वो खुद को देना है, इसलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, कि कोई बात नहीं चलते चलते ये सब विल कम एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट रुक कर अपने आप को प्यार से कि इट्स ओके, यू've डन वेरी वेल, पहले इतनी बार भी तो आपने नहीं किया, एक बार हो गया, नेवर माइंड, मूव, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट, यू नो दैट्स वे, दिस इज सेल्फ काउंसलिंग, अपने आप से प्यार, अपने आप को मोटिवेट, लेकिन अगर गिल्ट में चले गए तो खुद को डीमोटिवेट कर देंगे,
1: इट्स वेरी बैड, यू नो,
0: और फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को ही रोक देंगे कि ये मेरे से नहीं होता, इससे तो गुस्सा करो, खत्म करो।
1: अच्छा, तो मैं पहले ही थी कि मैं गुस्सा को एक्सेप्ट कर लूँ कि गुस्सा ठीक है, गुस्सा जेन्युइन है, गुस्सा नेचुरल है, इट्स ओके,
0: ट्रू। सो देन कहीं ना कहीं द ओनली थिंग इज एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड एम आई कन्विंस्ड। चेंज जहां बात आती है, चेंज कहते तीन चीजें चाहिए, व्हाट टू चेंज, हाउ टू चेंज, एंड द वॉन्ट टू चेंज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वॉट टू चेंज, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, लेकिन क्या मुझे चेंज करना है,
1: क्या मैं चाहती
0: हूँ। वॉन्ट टू चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी क्या हुआ, वॉट टू चेंज मालूम है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल गुस्सा नहीं करना, वॉट टू चेंज मालूम पड़ गया, हाउ टू चेंज वो भी मालूम पड़ गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, लेकिन डू आई रियली वॉन्ट टू चेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सब कॉन्शियस में अभी तक भी वो पुराना बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ, गुस्से से ही काम होगा, गुस्से से ही दूसरा सुधरेगा, तो जब तक वो बिलीफ नहीं हटेगा, सो दैट डीप डिजायर टू वॉन्ट टू चेंज डजंट कम, तो वो सेल्फ एनालिसिस हमें करना पड़ता है, और ये सेल्फ एनालिसिस भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सारा दिन में अपने आप को देखते हैं तो एक ऊपर की लेयर पे देखते हैं, यू नो, कॉन्शियस माइंड पर, एंड उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन जब साइलेंस में बैठकर सुबह देखते हैं तो यू नो ये कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो जाती है, एंड सब कॉन्शियस में हमें आंसर्स मिलते हैं
1: जो रियल में निकल कर आ रहे होते हैं,
0: कि कहाँ कहाँ मेरे अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं बार बार अभी भी फेल हो रही हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने ही प्रोग्रेस में, जो सक्सेस मुझे जीवन में चाहिए

0: हाँ वो अभी भी रुकावट बन रही है। ये चीजें साइलेंस में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी पता चलती हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या इंट्यूशन पावर, ये उस समय एक्टिवेट होता है। तो उसमें हमें ये आंसर्स मिलते हैं व्हाट टू चेंज, फिर परमात्मा के ज्ञान से हाउ टू चेंज वो मिलता, एंड वॉन्ट टू चेंज तो हर आत्मा चाहती है, लेकिन डीपली दैट ऑल्सो आई हैव टू चेक। दिस इज कई बार लगता हाँ हाँ आई वॉन्ट टू चेंज, लेकिन अंदर अगर वो आंसर निकल रहा नहीं लेकिन गलती तो इनकी थी, तो देन आई डोंट वॉन्ट टू चेंज, आई स्टिल वॉन्ट यू टू चेंज। द नीड फॉर आस्किंग अदर पीपल टू चेंज इज अ वेरी डीप बिलीफ, बहुत डीप है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें आसपास अपने दूसरे लोग गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की, तो वो बहुत फोकस सब पर है। तो अभी भी वॉन्ट टू चेंज औरों का बहुत ज्यादा है कि इनको बदलने की जरूरत है। सो दीज आर थ्री क्वेश्चंस जो अपने साथ रखें एंड इसको मेडिटेशन में इस पर वर्क करें, आंसर्स निकल कर।
1: वेरी ट्रू, और आंसर्स वही होंगे जो सही है, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सुशील शिवानी थैंक यू सो मच। फिलहाल आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, लेकिन उसका हम जो है अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-944-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org।

3102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका स्वागत। अब हम समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन यानी योग, जिसके लिए हम कब से बात करते आ रहे हैं कि उसी से जीवन परिवर्तित होगा। मेडिटेशन जीवन के आखिरी पड़ाव में नहीं बल्कि शुरू में ही जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जीवन के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सुधर जाएं। और अगर पिछली कड़ी याद हो आपको तो हमने देखा था मेडिटेशन का, योग का फिजियोलॉजिकली या हमारे जो थॉट पैटर्न हैं उस पर क्या असर पड़ता है। साइंटिफिकली भी अब बातें हमारे सामने आ रही हैं। आज थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी, दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहेगी, तब तक हमें वो अनुभव, वो प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हमें ये जीवन मिला था। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सत्य शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। आपसे बात शुरू करते हैं। हमें बहुत सी बातें की, मेडिटेशन और योग, जिसका अगर हम कहें कि अवेकनिंग का की नींव रही है राजयोग पे, हर बार आपने जोर दिया है। और आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने कहा है कि जितनी छोटी उम्र से योग या मेडिटेशन की शुरुआत हो उतना अच्छा। पिछली कड़ी पे जाते हैं तो साइंटिफिकली भी अप्रूव हुआ। अभी भी हम इतना समझने के बाद योग को जीवन में, या अगर देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूट में, क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे?
1: भले ये हर इंस्टीट्यूट में नहीं अपनाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसकी अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस अब रियलाइज हो रही है। काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन कॉरपोरेट सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज भी मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में लेकर आ रहे हैं। बट मेडिटेशन इज नॉट समथिंग विच कैन बी फोर्स्ड ऑन समवन। तो अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको इन्फोर्स कर देता है, समटाइम्स पीपल जस्ट मूव अवे कि ये क्या है, हमें नहीं इसकी जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज टू बी बाय चॉइस। कोई भी चीज वैसे भी आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये अंदर का काम है। बाहर का काम

0: हम आप किसी पर फोर्स कर दो आप उनसे करवा सकते हो। मेडिटेशन आप कंपल्सरी नहीं करवा सकते, वो कोई बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन अंदर क्या चिंतन चल रहा है अगर वो मेरी चॉइस से होगा, आई विल पुट इन माय बेस्ट इनटू इट।
1: अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू,
2: और एक बात जो होती है ना कि भैया क्यों नहीं, क्योंकि लोग उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं। ये समझ में आ जाए कि धर्म नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत ही पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की साइंटिफिक टेक्निक है, तो सभी उसको अपनाएंगे।
1: वेरी ट्रू एक्चुअली, यही बात आज जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो बहुत बार मुझसे कहते हैं कि आप ना प्रोग्राम में जो होते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान नहीं समझना, ज्ञान की बात नहीं या वो सारी चीजें जो है, मेडिटेशन सीखना है। आई वॉन्ट टू आस्क, मेडिटेशन बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के राजयोग क्या संभव है?
0: राजयोग तो नॉलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है और आपको लगता है वो हो सकती है, वो बिना ज्ञान के होगी। अगर आप कोई एक मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं, उसके लिए भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में सोल कॉन्शियसनेस देन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर, ये उसके बिना नहीं होगी। विदाउट द नॉलेज आई एम अ सोल, क्वालिटीज ऑफ द सोल, हु इज द सुप्रीम पावर, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता, ये सारा ज्ञान है। दिस इज लाइक दो लोगों के बीच में रिश्ता जोड़ना, वो तब तक नहीं हो सकेगा ना जब तक हम उन दो लोगों को जानते नहीं होंगे। हम चाह रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, प्राप्ति हो जाए, बिना ये जाने कि कौन वो दो एंटिटीज हैं जिनके बीच वो रिश्ता जुड़ रहा है। तो ज्ञान कोई रिलीजन नहीं है, ज्ञान उल्टा हमारे हर जो भी हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसको हमें अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। ज्ञान जो राजयोग और प्रमाख हमारे सेंटर पे जो ज्ञान मिलता है, व्हाट इज दैट, हु एम आई, every religion is talking about it, and who is he, every religion is talking about it, only it comes out now in a very simple, practical and scientific way. To usko adopt karna aur fir usko practical mein leke aana, wo easy ho jata hai. Religion hamare jeevan ka ek aspect hua karta hai, lekin humne kabhi religion ko जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करता है, रिलीजन ने जो हमें सिखाया उसको अपने जीवन में लेकर आना, ताकि वो रिलीजन का जो, इसे रिलीजन इज माइट कहा गया, तो वो रिलीजन की जो माइट है आज हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर।
1: धर्म जो था वो धारण करने के लिए था।
0: एग्जैक्टली,
1: तो हमें धारण करने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए।
0: हमने तो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से उल्टा अलग हो गए, तो इसका मतलब हम अपनी धारणाओं से काफी दूर थे।
1: तो आते हैं मेडिटेशन के फिर कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जब मेडिटेशन में हम हैं, किस तरह से मेरे बॉडी के पार्ट्स पर और मेरे थॉट पैटर्न्स पर मेडिटेशन का प्रभाव पड़ता है।
2: जो फाउंडेशन हमने समझा था कि मेडिटेशन से सिंपैथेटिक अराउजल है वो कम होता है और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ी सी ओवर एक्टिवेट होती है, उससे बहुत सारे बेनिफिट,
1: वो बैलेंस जाता
2: है। हाँ, बैलेंस हो जाता है। एक तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स रेट कम हो जाती है, जो सांस की गति है वो डीप और धीमी होती है। साथ साथ बहुत ही पावरफुल बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड की मात्रा काफी कम होती है, नींद के साथ तुलना करें तो करीब 3 से 4 गुना ज्यादा व कम हो जाती है। और अच्छा सा बेनिफिट है कि जो ब्रेन वेव पैटर्न्स है वो अल्फा पैटर्न्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी स्लो जो थीटा पैटर्न है वह भी संभव है। हमने भी देखा कि बिगिनर्स में भी मेडिटेशन से अल्फा या थीटा पैटर्न को जब मेंटल एरिथमेटिक कर रहे हैं तब भी उसको मेंटेन कर सकते हैं,
1: वो एक्टिविटी करते हुए।
2: हाँ, और एक अच्छा बेनिफिट है जिसका हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, वह स्किन रेजिस्टेंस। क्योंकि जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्लो हो रहे हैं वो हमारे अणु-अणु में फ्लो होते हैं, और स्किन में भी एक माइक्रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, और जब ब्रेन वेव्स रिलैक्स हुए तो माइक्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो भी स्लो डाउन होंगे, और वह कम हुए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से अपोजिट है, तो इसके कारण स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है।
1: ओके, स्किन रेजिस्टेंस मींस व्हाट?
2: स्किन एक्चुअली तो वह करंट है जो स्किन में फ्लो हो रहा है, वो करंट कम होता है, और आपने समझा भी होगा कि रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है करंट से, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है
1: तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा,
2: कम हुआ
1: तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी
2: भी कम होगी, साथ साथ आपकी जो कहेंगे कि अराउजल है वो भी कम होती है। आप देखना जो लोग थोड़े नर्वस होते हैं उनके हाथों में पसीना आने लगता है,
1: एक्साइटमेंट लेवल्स जो है
2: हाथ ठंडे होते हैं, हाथों में पसीना आता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उनके बढ़ गए, जो ब्लड फ्लो है वो कम हुआ और इसके कारण हाथों में पसीना आने लगा। तो जब मेडिटेशन करते हैं तब ब्लड फ्लो बढ़ता है कि जिसके कारण भी हाथ थोड़े से आपके वार्म होंगे, वो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी देता है।
1: अच्छा इसके साथ ही क्या जो ब्रेन में जो चेंजेस की बात आपने कही थी तो मेडिटेशन में ऐसा भी कुछ संभव है, खासकर कंसंट्रेशन की जो बात है। आजकल पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं करता है, तो उसमें मेडिटेशन के जो रिजल्ट है वो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना भी हो सकता है,
2: बढ़ाएगी। उससे पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूँ कि जिससे कंसंट्रेशन पर क्या प्रभाव है वो भी सिद्ध हो जाएगा। हाल ही में ये स्टडीज तो पहले भी हुई है, हम सबने एमआरआई सुना है तो ऐसे ब्रेन का एमआरआई कर सकते हैं। अभी ही लेटेस्ट आया है फंक्शनल एमआरआई, कि पहले था वह था स्ट्रक्चरल एमआरआई कि जो स्ट्रक्चर को मेजर करता है, फंक्शनल एमआरआई जो कार्यवाही है ब्रेन की उस कार्यवाही को भी मेजर करता है। और बस एक साल पहले ही फंक्शनल एमआरआई के द्वारा जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनका फंक्शनल एमआरआई किया गया, जो लोग नहीं कर रहे थे उनका भी किया और फॉलोअप किया गया काफी सालों तक, तो देखा कि जो मेडिटेशन करते थे उनके फंक्शनल एमआरआई में जो ब्रेन की थिकनेस है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कहते हैं, वह सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस भी बढ़ी। भले वह एक थाउजेंड्स ऑफ एन इंच है, बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ी सी भी थिकनेस बढ़ना बहुत बड़ी प्राप्ति है। उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली जब ये रिसर्च मैंने देखी, तो कि आमतौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कम होती जाती है। अगर मेडिटेशन का अभ्यास करके हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस को बढ़ा सके तो एजिंग प्रोसेस को हम स्टॉप कर सकेंगे।
1: अच्छा,
2: बुढ़ापा नहीं आएगा,
1: बॉडी का एजिंग प्रोसेस।
2: हाँ, बॉडी का एजिंग
0: वंडरफुल। एंटी एजिंग
2: तो हार्मफुल है,
1: एज को रोकने के। ये जो पुराना कहा जाता था कि ऋषि मुनि जो थे वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं, तो वो यही मेडिटेशन मस्ट हैव बीन द
2: रीज़न। इसी का संबंध कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी के साथ भी है, क्योंकि हम क्रिएटिव कार्य कैसे करते हैं कि ब्रेन सर्किट्स क्रिएट करता है, और अगर थिकनेस बढ़ी तो ब्रेन ज्यादा सर्किट्स क्रिएट कर सकेगा,
1: ज्यादा जगह होगी।
2: हाँ, उसमें सर्किट्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स से जुड़ते हैं और सर्किट्स क्रिएट होते हैं, तो ब्रेन ज्यादा सर्किट क्रिएट कर सकेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ साथ कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा। क्योंकि वो जो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, भले आत्मा यूज करती है परंतु ब्रेन तो एक साधन है, वह साधन पावरफुल हुआ तो आत्मा भी उसका उपयोग सही ढंग से कर सकेगी।
1: नहीं तो ये साधन पावरफुल तब हुआ जब वो जो उसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस बढ़ने शुरू हुई, क्योंकि हमने अगर मेडिटेशन में बैठे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए। एक्चुअली हो क्या रहा होगा
2: कि आत्मा ब्रेन से डिटैच हुई, पहले अटैच हो रही थी, उस पर स्ट्रेस दे रही थी, फोर्स कर रही थी, तो ज्यादा ही न्यूरॉन्स पर इफेक्ट होती थी और न्यूरॉन्स मर रहे थे, परंतु अब जब आत्मा डिटैच हुई तो ब्रेन को भी रेस्ट मिला। और जब ब्रेन को रेस्ट मिला तो जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे थे वो डैमेज होना कम हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ी, एवरेज नेटवर्क। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो कैसे एनर्जी को फील करते हैं, ऐसे ब्रेन को भी एनर्जी मिली और न्यूरॉन्स भी बढ़ गए।
1: तो आत्मा अपने स्वरूप में अगर आई तो उसमें ब्रेन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कम
2: करती है। हाँ, उसको जो प्रेशर डाल रही थी वो प्रेशर भी कम हुआ।
1: ये पूरी श्रृंखला में हमने जिंदगी की एक्चुअली ऐसी ऐसी कलाएं सीख रहे हैं जो शायद अनवेयर थे। अगर हम अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों के साथ मेडिटेशन के प्रयोग करना शुरू करते हैं, कौन से वो थॉट्स हम उनके साथ दें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद वो उतना ज्ञान को अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं अभी जैसे आपने कहा कि राजयोग में ज्ञान के बिना मेडिटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चों के साथ किस तरह से ज्ञान

0: कराएं कि वो मेडिटेशन में बैठ पाए?
1: सबसे पहले अपने साथ करें, यू नो, बिकॉज द मिनट पेरेंट्स विल लिसन टू दिस, वो अपने बच्चों को कहेंगे आप मेडिटेशन करो ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाए, ताकि आप पढ़ेंगे, ताकि आपके नंबर अच्छे हो जाए. नहीं, कोई बच्चा वो नहीं करेगा जब तक हम नहीं कर रहे हैं. तो पहले हमें उसको करना है और हमें उसका एक्सपीरियंस करना है और हमारा 100% उसके प्रति कन्विक्शन अगर होगा, जो हम कर रहे हैं इट्स ऑटोमेटिकली इन द हाउस, वो घर का एक कल्चर बन जाता है. और जो हमें लगता है कई बार कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बहुत सारे लेबल्स लगते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हम ज्यादा होते जाते हैं. एक बच्चे के लिए सोल कॉन्शियस होना इट्स क्वाइट नेचुरल. तो इसलिए बच्चों के साथ अगर आप ये छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस इट एंड रिलेट टू इट फास्टर समटाइम्स देन द एल्डर्स. तो जो हमने सीखा, इट्स नॉट डिफरेंट बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, जो हम कर रहे हैं वो उनके साथ भी करना है. अगर उनके साथ हम 2-3 मिनट भी ये करें, पीसफुल सोल कनेक्टिंग टू दी ओशन ऑफ पीस, और वो तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बच्चे बहुत प्यार से इसको करते हैं. एंड फिर उनको ये सिखाएं कि हमेशा पढ़ने से पहले 2-3 मिनट ये करके फिर पढ़ने बैठें, इट विल हैव अ वंडरफुल इफेक्ट. एंड क्योंकि वो मेडिटेशन ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके थॉट्स फोकस्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे. कॉन्सेंट्रेशन क्यों टूट रही है? मेरा डिस्ट्रैक्शन है ना किसी न किसी और बात की तरफ, कोई और चीज मेरे मन में है, किसी से बात करने को मन कर रहा है, खेलने का मन. दीज डिस्ट्रैक्शंस विल स्टॉप ग्रेजुअली, कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम ईजियर फॉर द चिल्ड्रन. तो इसलिए मेडिटेशन छोटे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा.
2: हमने जो ब्रेन की थिकनेस की बात की ना, और दो छोटी छोटी स्टडी से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे भी लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी. हमने पहले चर्चा की थी ब्रेन में 900 केमिकल्स हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन. तो ये रिसर्च की गई कि जो मेडिटेटर्स थे और लोग, और एक केमिकल है सी रिक्लोपाइड, ये केमिकल को इंजेक्ट किया गया और फिर वो ब्रेन के रिसेप्टर पर कितना चिपकता है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं. अगर वो कम बाइंड हो रहा है तो ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है.
0: ओके.
2: एक से करीब 6 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है. तो ये देखा नॉन मेडिटेटर्स और मेडिटेटर्स में कि करीब 60% ज्यादा डोपामाइन रिलीज हुआ जो मेडिटेशन कर रहे थे उनमें. सी रिक्लोपाइड था वो करीब 6-7% कम हुआ, उसका मतलब इट इज ऑलमोस्ट 60% मोर. ये भी एक बहुत ही प्रेरणादायक रिसर्च है.
0: डोपामाइन इज अ गुड केमिकल,
2: वेरी गुड केमिकल एक्चुअली. वो जो दवाइयां भी लेते हैं ना डिप्रेशन में आदि, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं हो सकता है, कि यहां तो आप मेडिटेशन करते हो डायरेक्टली डोपामाइन को रिलीज कर रहे हो. और एक बात है आईजी एंटीबॉडीज, जो हमारी लार में आईजी एंटीबॉडीज होती है, कि वो जितनी ज्यादा हो तो आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, आपकी जो इम्यून कैपेसिटी है वो अच्छी होती है. तो ये भी देखा कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आईजी एंटीबॉडीज करीब डबल होती है जो नहीं कर रहे उनकी कंपैरिजन में, जो भी प्रूव करता है कि हमारा रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है.
0: डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन, आज अभी हमने बच्चों से जुड़ी हुई बात तो की, कई बार लोग कहते हैं कि हम किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन के वो तरीके हैं ध्यान का, ध्यान करते हैं, तो क्या उस फिलॉसफी को मानते हुए जीवन की राजयोग अपना सकते हैं?
2: बिल्कुल अपना सकते हैं, क्योंकि उल्टा मैं तो समझता हूँ कि जो ऑलरेडी कुछ फिलोसॉफी को समझ रहे हैं वो राजयोग को जल्दी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ आवश्यकता यह है कि फिर सही नॉलेज को भी समझे, या तो फोकस को समझे. जैसे कि आत्मा की बात तो सब करते हैं, आप देखेंगे बचपन से हमको आत्मा की बात बताई गई है, लेकिन हमारे मन में राजयोग से पहले मेरे में क्या था आपको बताता हूँ, यही था कि ये शरीर इम्पोर्टेंट है, आत्मा जैसी कोई चीज है इसमें. किंतु राजयोग के बाद ये क्लियर हुआ कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर गौण है. आगे चलते चलते तो ये हुआ कि भी आत्मा ही सब कुछ है. आत्मा ठीक हो गई, उसकी अवेयरनेस अगर सारा दिन रही तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा. तो बस जो लोग और रियल चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं,

0: वह शायद इस बात को और जल्दी समझ जाएंगे। इस बात को समझ ले और फिर अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो वह भी अभ्यास कर सकते हैं, उल्टा और गहराई में जा सकते हैं।
1: क्योंकि आपने जो बात कही कि इट्स अ टेक्निक, यू नो, प्रॉपर सही लाइफस्टाइल अपनाने की टेक्निक है। आपने एक और भी बात कही थी कि कॉरपोरेट्स में भी राजयोग मेडिटेशन के अब ये एस्पेक्ट लिए जा रहे हैं, वो कैसे इनकॉर्पोरेट? बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, वो चाहेंगे कि किस तरह से शुरू करें, बिकॉज इनिशिएट नहीं कर पाते। अब समझ में आ रही है, अपना भी अनुभव किया, लोगों ने इंडिविजुअल किया, मास लेवल पे करना चाहते हैं।
2: कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर वो कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम पहले सीधा मेडिटेशन नहीं कराते, मतलब बेसिक थोड़ा मिनट एक्सपीरियंस कराते, बट वी आर नॉट शेयरिंग द राजयोग फिलोसफी एकदम से, बिकॉज शायद पूरी जो टीम है दे आर नॉट रेडी फॉर इट या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन हर एक टीम मेंबर को स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, इमोशन मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, इनके ऊपर तो जरूर चाहिए। अब आज दिन तक बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई इन बातों के ऊपर, लेकिन इन किसी भी वर्कशॉप्स का एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं था, एक कॉन्शियसनेस लेवल पर फाउंडेशन नहीं था। ज्यादातर बातें बाह्य हुआ करती थी। आज हम सुनते हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं तो उसमें कहते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चाहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो करा रहा है वर्कशॉप उसका अपना एक्सपीरियंस ही वो है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो होगा ही, तो वो औरों को भी क्या कहेगा। अब जब बाकी सुन रहे हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो वो कहेंगे हाँ राइट, थोड़ा तो है। फिर थोड़ा और ज्यादा कब हो जाता है उसका तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल पर उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज एब्सोल्यूटली अननेसेसरी, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हरेक का अपना अनुभव है। और सिर्फ बहने आश्रम में रह रही है वो नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हुए भाई बहन कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं। अब जब वो अपने अनुभव से और स्पिरिचुअल फाउंडेशन से सभी टीम के साथ शेयर करते हैं, बिकम्स इजियर फॉर देम टू वर्क ऑन इट। तो कॉर्पोरेट्स में इस तरह की वर्कशॉप्स होती, फिर उनमें से जिनको उसमें और इंटरेस्ट आता, देन वी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन विद देम इन द वर्कशॉप। कई ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिटेशन रूम्स खुल चुके हैं और सभी इम्प्लॉयज जिनको भी इंटरेस्ट हो वो हर रोज ऑफिस में आने से पहले और ऑफिस से जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन रूम में जाकर बैठते हैं। कई जेल्स के अंदर मेडिटेशन रूम्स खुले हैं, कई स्कूल्स के अंदर खुले हैं, छोटे छोटे साइलेंस रूम कह सकते हैं उसको, एक्सपीरियंस रूम कह सकते हैं, समवेयर वे यू कैन अनवाइंड, रिलैक्स, फोकस एंड चैनलाइज। सो स्कूल्स में हम वैल्यूज पर वर्कशॉप्स करते हैं एंड रिलेशनशिप्स, टीचर्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप स्कूल्स में होती है, बट ऑन अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। तो धीरे धीरे मेडिटेशन उसमें इंट्रोड्यूस होता।
1: एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी बात आपने कही है, उसको मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा कि जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज हमें आती है, वेरी कॉन्फिडेंटली वी से इट इज अननेसेसरी। स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, यू नो, ये सारी चीजें जिन्हें अभी तक हमने नेचुरल कहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन के लिए चाहिए था, बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा गुस्सा, हेल्दी गुस्सा, पॉजिटिव गुस्सा, यू नो, पॉजिटिव एंगर, पॉजिटिव ईगो, यू नो, ये सारी चीजें आप बहुत लोग बोलते हैं, चाहे राजयोग का ही अभ्यास जो कर रहे हैं। कि अच्छा, आपने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, नहीं, जरूरत ही नहीं है, लेकिन है तो सी। और वो जो हमें सिखा रहे हैं, चाहे कोई सिस्टर ही बता रही है या कोई भी, उनमें भी तो कई बार दिखता है, यू नो। सो देन वी सी व्हाट
2: विद द कॉन्शियसनेस। नाउ सी, एक है कि परफेक्ट हेल्थ पॉसिबल है, ठीक है। वंस मेरी कॉन्शियसनेस में ये फिट हुआ विद अंडरस्टैंडिंग, with looking at someone who has achieved it and with a little bit of my experience ke perfect health possible hai, then I will start working towards it. Lekin mera goal kya rahega full time? Perfect health, which doesn't mean maine ek din mein perfect health achieve karni hai, but my goal is perfect health. To mera jo effort aayega na uske andar, it will be of a different level.
1: I'll not give leverage.
2: Yes. Lekin if I say kabhi kabhi bimar hona तो नेचुरल है, परफेक्ट हेल्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं अपने आप को बहुत लिबर्टी दे देती हूँ गलत चीजें खाने की, पीने की, जस्ट बाय सेइंग कि कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है। अब जो अगर मैंने अपने आप को कहा कभी कभी बीमार होना नेचुरल है, तो वो कभी कभी की जो फ्रीक्वेंसी है

0: बहुत बढ़ते जाते हैं। आज हम ब्रह्मा कुमारीज में अपनी दादीज को देखते हैं। दे आर 85-90+, हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर 9 लाख पीपल एंड वी आर सीइंग देम एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री इन एवरी सिचुएशन। कौन सी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई होगी, जहां 9 लाख लोग हैं, 25,000 सिस्टर्स हैं। आज एक घर में एक बेटी हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। जहां 25,000 बहनें हैं, 9 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिचुएशंस आएंगे, वी हैव सीन देम एब्सोल्युटली स्टेबल एंड देन व्हेन वी लुक एट देम एंड वी से यस दिस इज पॉसिबल। फिर हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कहां पहले थे, कहां अभी हम पहुंच रहे हैं एंड देन वी आर वेरी क्लियर कि यस वी विल ऑल्सो रीच देयर। बट वो कन्विक्शन के साथ हम करते हैं तो फिर एफर्ट बहुत जेन्युइन और फुल हार्टेड एफर्ट होता है। वी आर नॉट एबल टू गिव लिबर्टी टू आवरसेल्फ्स। अब इसमें अगर थोड़ा स्ट्रेस हो भी गया, गुस्सा आ भी गया, आई इमीडिएटली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड गेट माई सेल्फ बैक टू द फाउंडेशन। लेकिन अगर मैंने कहा होता कि थोड़ा थोड़ा तो ओके है, तो हर टाइम होगा तो हम कहेंगे थोड़ा थोड़ा तो ओके है, थोड़ा थोड़ा करते करते संस्कार पक्का हो गया। जब कहा जीरो पर लेकर आना है तो थोड़ा थोड़े को खत्म किया तो संस्कार भी फिनिश हो जाता है। सो द होल पर्सपेक्टिव विल चेंज।
1: इज इट पॉसिबल टू लीड अ परफेक्ट लाइफ द वे वी आर टॉकिंग?
2: जैसे शिवानी बेन ने समझाया कि अगर वो गोल होगा और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो करते करते एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, और गोल नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी।
1: कई बार क्या होता है कि उसका ही स्ट्रेस, मतलब खासकर मैं इसी की बात नहीं कर रही, जिंदगी में अगर हम स्पिरिचुअल कोई फिलॉसफी को लेते हैं, कई बार हम उस स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि वी हैव टू डू इट परफेक्टली। तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर करता है, लोगों से दूर करता है। उससे कैसे बचें? आज हम लाइफ की स्किल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे एस्पेक्ट्स जानते
0: हैं। वो तब होता है जब हमारा सारा फोकस बाहर की चीजों पर है, मुझे बाहर सब कुछ ऐसे ऐसे करना है, चाहे वो रिचुअल्स को लेकर है, चाहे वो कोई भी अपने जीवन की प्रिंसिपल्स को लेकर है। इट इज वेरी गुड अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अटेंशन और यू नो स्ट्रिक्टली चलना, लेकिन अगर मेरा अटेंशन अंदर नहीं है तो कई बार मैं अपने बाहर के प्रिंसिपल्स पर स्ट्रिक्टली चलने के लिए गुस्सा भी कर सकती हूँ, किसी को डांट भी सकती हूँ, इरिटेट भी हो सकती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही, देन आई हैव लॉस्ट द फोकस एनीवेज। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है वो अंदर है, कि अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर कांस्टेंट अटेंशन रखना है, तो फिर ये बातें टेंशन नहीं क्रिएट करेंगी। यू विल ओनली डू इट विद कांस्टेंट अटेंशन इनसाइड एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस, फोर्सफुल नहीं है। अगर बाहर से अंदर की तरफ परिवर्तन लाना होता तब हम कुछ फोर्स कर सकते हैं, ये तो एक नेचुरल धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि कब परिवर्तन हो रहा है। वी डोंट इवन कम टू नो, जब सिचुएशन आती है कोई
1: तब पता चलता।
0: अच्छा पहले अगर हम होते तो वी वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे, टुडे वी हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली।
2: और एक बात ये भी होती है, फाउंडर जो है वह क्या बताते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी एक लाइट लाइफ लीड की, जो भाई बहन थे बिल्कुल बाबा रिलैक्स होते थे, खेलते खेलते सिखाए। दादी प्रकाशमणि जी को हमने देखा एकदम लाइट थे, अंत तक बिल्कुल लाइट थे। तो जब उनमें लाइटनेस है तो जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें भी लाइटनेस आ जाती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं आती।
1: लीडर पे बहुत डिपेंड करता है, जो आपका जो जैसे चाहे वो घर का बड़ा हो, परिवार के बड़े हों या फिर ऑफिस के ऑर्गेनाइजेशन के हों, कहीं के भी हों। शिवानी, डॉक्टर पटेल हर बार की तरह हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। वो स्किल्स अब तो मैं कहूंगी कि भूले हुए थे, लेकिन काफी समय से भूले हुए थे, काफी जन्म से भूले हुए थे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन में हम देख ही नहीं पा रहे थे। अब इसको देख रहे हैं तो नेचुरल लग रही है। थैंक यू सो मच। अब मेडिटेशन के महत्व को समझा, खासकर इस नई जीवन शैली में अगर हम नींव मेडिटेशन से रखते हैं, योग से रखते हैं, खुद अपने आप को पहचानने से रखते हैं, फिर देखें धीरे धीरे, क्योंकि आज हमने उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी देख लिए, जान लिया, हम अवेयर हैं अब कि हमारी बॉडी पर, हमारे माइंड पर क्या असर पड़ रहा है। अब इसको देखना शुरू करें। अभी तक रिश्तों को देखा था, अभी तक इनफैक्ट बाहर की चीजों को देखा था कि मेडिटेशन से क्या इफेक्ट हो रहा है। अब अपनी बॉडी के हर एस्पेक्ट, हर अंग को देख पाएंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत

शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं, ठीक है। चाहे वो हमारी साइकोसोमेटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, द बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत।
3: रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आप सुन रहे कार्यक्रम यशस्वी भारत। भारत का जो गौरव है वो देश और दुनिया तक फैला है, लेकिन दोस्तों भारत का गौरव फैलाने वाले कौन है? कुछ ऐसे भारतीय जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कलाओं को ऐसा निखारा, ऐसा उन्होंने उभारा कि भारत ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में उन्होंने अपना साथ साथ देश का नाम रोशन किया।
4: एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने जीवन को खुद संवारा, जिन्होंने अपने ही नहीं बल्कि कई जीवन को संवारा, जिन्होंने आप अगर लाइफ स्टोरी सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक व्यक्ति अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता, अपना क्या लाखों जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और उनकी इंस्पायरिंग बेहद बहुत मुझे लगता है महिलाओं को जरूर सुननी चाहिए ये कहानी। हमारे साथ जी हाँ पद्मश्री उषा चौमा जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की, जो अपनी कहानी हम उनके मुंह से सुनेंगे, तो बेहद लकी हैं हम। उषा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी बहुत खुशी हो रही है और बहुत मुझे अच्छा भी लगा यहाँ पर आई मैं कर्मचारी कन्याकुमारी की धरती पर, तो मुझे इतना सुकून मिला और इतनी खुशी हो रही है कि मेरी जिंदगी में शायद मुझे कभी ऐसी खुशी नहीं मिली होगी। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 7 साल की थी, मेला ढोने के लिए जाती थी मम्मी के साथ, तो बस मेला ढो रही थी। फिर मेरी 10 साल की थी, तो मेरी 10 साल की उम्र मेरी शादी हुई बड़े वाली दीदी के साथ, तो 4 साल के बाद मेरा गौना किया, तो वहाँ पर तो मम्मी के साथ मुझे मेला ढोने का काम करने को मिला। जो ससुराल में आई अलवर में, तो माँ मेरी सासू माँ के साथ काम करने को मिला मेला ढोने, तो मेरी जिंदगी में कोई बदला नहीं। सिर्फ हम लोगों को क्या था, घर बदला, काम तो वही था, तो वही काम में कर रही थी। जैसे कि उनके घर काम करती थी तो वो लोग ऊपर से पानी पिलाना, ऊपर से खाना देना, बासा हुआ खाना देते थे वो लोग, ऊपर से पैसे फेंक के देना, ऐसा उन लोगों का व्यवहार था। लेकिन बस उसी जिंदगी में जी रहे थे, तो पता ना हम लोगों को किस तरह से भाग्य बदला। और डॉक्टर पाठक जी हमारे अलवर में आए
4: जी,
5: तो उन्होंने हम लोगों से पूछा कि आप ये काम क्यों करते हो। अब देखिए हम लोगों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी काम चला रहा था मेला ढूंढने का, तो वही काम हम कर रहे थे
4: जी।
5: तो फिर उन्होंने कहा कोई अच्छा काम करने के लिए दूं तो क्या करोगे तुम। अब देखिए मैम इतना गंदा काम कोई करना नहीं चाहता, जिसे सबको नफरत होती है और घिनौना होती
4: जी।
5: तो हम लोगों ने वो काम छोड़ा, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, अचार पापड़ जवे कोटन की बत्तियां जूट बैग पार्लर का काम सिलाई कढ़ाई सब सीखा। तो जिससे कि हम लोग सामान बनाने लगे, तो हमने डॉक्टर पाठक जी से कहा कि सर सामान तो हम बनाएंगे लेकिन इसको खरीदेगा कौन
4: जी।
5: क्योंकि हमारे वहाँ पर बहुत छोटे छोटे अलवर में राजस्थान में, तो उन्होंने कहा सामान मैं खरीदूंगा आप बनाओ तो सही। देखिए आज वही सामान जो हम बना रहे हैं वो तो आज तक खरीद रहे हैं सुलभ, तो लेकिन जिनों के घर में शौचालय कभी साफ करती थी 2003 से पहले, आज वही लोग जो मेरा सामान बना होया खरीद के खा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उसी गिलास में मुझे वो पानी पिलाते हैं, उसी चेयर पे वो मुझे बिठाते जैसे स्वयं बैठते हैं। लेकिन आज मुझे उन्होंने डॉक्टर पाठक जी के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया।

0: कि हमारे गांधी जी हैं। मैंने गांधी जी नहीं देखे, मैंने सिर्फ में देखा गांधी जी, और मैं ये कहती हूँ वही हमारे भगवान है, वही हमारे बाबा है जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली। तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने देखा ना तो कोई ऊंच नीच, यहाँ पर बिल्कुल इतना बड़ा मतलब एक संस्था है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल एक साथ रह रहे। लेडीजों का सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि लेडीज सबसे आगे है, मतलब लेडीजों के हाथ में सारा पावर है यहाँ पर
1: जी।
0: तो बिल्कुल सारी जगह में ये कहती हूँ कि ये नहीं कि भाई हम लोग यहीं पर ये अपना पावर जमा सकते हैं, हम कहती हूँ लेडीज हर जगह अपना पावर जमा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा और इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने देखो कल की आई हूँ यहाँ पर, मैंने अभी तक मेरे बच्चों से बात नहीं की, मुझे यहाँ पर आके इतनी शांति मिल रही है, क्या बताऊँ, इतनी खुशी हो रही है मुझे। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही इज्जत और सम्मान दिया है उन्होंने मुझे, इज्जत सम्मान हर जगह से मिला है
1: जी।
0: लेकिन जो मुझे आज यहाँ पर मिला है
1: जी,
0: यहाँ ब्रह्म कुमारी में, तो मुझे यहाँ का जैसा सम्मान शायद मुझे नहीं मिला होगा और मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
1: हमें बहुत खुशी है उषा जी आज आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप एक एग्जांपल हैं
0: जी,
1: कि कैसे बदलाव।
0: हाँ, रोल मॉडल हूँ मैम, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी, क्योंकि हम लोगों से पहले जब मैं काम करती थी तो आपको पता लोग अच्छी तरह से नहीं बात करते थे, भंगी क्या के बोलना उनका, जमादारनी मेहतरानी इस तरह से कहेगा। अब देखिए मैं, हम भी तो इंसान थे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आज के डॉक्टर पाठक की वजह से, सुलभ इंटरनेशनल की वजह से हम लोगों को इस काम से मुक्ति मिली
1: जी,
0: और आज आपके सामने है कि हर जगह से हम लोगों को सम्मान मिल रहा है
1: जी।
0: तो बड़ी खुशी हुई मुझे, लेकिन मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून मिला मुझे। वो मुझे थोड़ा बोलने के स्टेज में मौका नहीं मिला, कभी फिर कभी आऊंगी, बाबा की कृपा बनी रहेगी तो फिर कभी आऊंगी यहाँ पर और तब स्टेज पे चढ़ तब बताऊंगी कि मुझे कितना अच्छा और कितनी खुशी हो रही मुझे यहाँ पर।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है ये रेडियो के माध्यम से भी बहुत लोग जान पाएंगे उषा जी।
0: जी मैम।
1: वैसे तो आपका नाम सभी जानते हैं
0: जी,
1: आपके बारे में पढ़ा है जाना है, लेकिन आपके जीवन से बहुत सारे गांव में लोग हैं जो अभी आपको सुनेंगे या सुन रहे हैं इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर से मैं?
0: देखिए महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, हम लोग क्या समझते कि बस अपना घर का ही काम करना, हमको अपने बच्चों की पालन पोषण करना, पति की सेवा करनी बस। अब वो नहीं ये समझते कि बाहर जब निकलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो पति के भरोसे रहती है कि पति मुझे ला के देगा और उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेडीज पति के बराबर है, बल्कि पति से दो कदम आगे हैं
1: जी।
0: तो हम क्यों ना, मतलब ये थोड़ा ना कि पति के पीछे आएंगे, पति के आगे एक रुपए दो रुपए क्या लगेगा, आप पसार आएंगे। हमें खुद ना इतना हुनर है लेडीजों में कि खूब कुछ भी काम कर सकती है
1: जी,
0: बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लेडीजों से कहना चाहूंगी कि प्लीज बाहर निकले कुछ देखें, जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलते तो कुछ हम लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग बाहर निकलते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखिए विदेशों में देखिए लेडीज तक कंपनी चला रही है, एरोप्लेन चलाती है, गाड़ी चलाती, तो अपने यहाँ क्यों नहीं, अपने राजस्थान और इंडिया में क्यों नहीं, वहाँ पर इतनी साफ सफाई रहती है। अब मैंने यहाँ पर देखा कन्याकुमारी, यहाँ पर काफी साफ सफाई
1: जी,
0: और ऐसी जैसे कि हम लोग पहले शौचालय काम करते थे तो डॉक्टर पाठक जी ने हर जगह पर शौचालय बनवा दिए वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे तो आपको पता है कहीं भी मतलब
1: जी, जी, जी।
0: बैठ जा सकते, लेकिन लेडीज को तो बहुत प्रॉब्लम होती है
1: जी।
0: उन्होंने हर जगह पर पक्के शौचालय बनवाए तो लेडीज अच्छे से अपने इज्जत से इस्तेमाल करती है, जैसे कि आपको पता शाम को अगर उन्हें परेशानी हो जाए तो जैसे सोचती है कि सूरज छुपे तब हम जाए, अगर दोपहर में पेट खराब हो जाए तो झाड़ियों के नीचे बैठना पड़ता है, गड्ढों में बैठना पड़ता है उनको, और शाम को वो कहते हैं शाम को भगवान, सुबह सुबह चार बजे से पहले उनको उठना पड़ता है या पाँच बजे छह बजे से पहले, मतलब पिता के आदमी हमें कोई नहीं देखे
1: जी।
0: तो डॉक्टर पाठक जी ने हम लोगों की इतनी अच्छी जिंदगी बदली है कि हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और सभी लेडीज से अपने घर में, अब तो शौचालय सबके घर में देखिए। हाँ, तो मैं तो यही चाहती हूँ हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए, जो अपने देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं गांधी जी के बाद, जिन्होंने शौच और सफाई की बात की है, और वहाँ डॉक्टर पाठक तो कम से कम 50-60 वर्षों से इस कार्य में लगे कि हर जगह पर साफ सफाई रहनी चाहिए, हर जगह पर शौचालय बनने चाहिए और लेडीजों के आगे रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं को दिक्कत ज्यादा होती है पुरुषों से, तो जरूरी है कि महिलाएं भी एकजुट हों, वो भी कई बदलाव ला सकते हैं जैसे आप लेकर आ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उषा जी आप क्या कर रहे हैं, जब ये बदलाव आपके जीवन में आया तो आपने कैसे सोचा कि आपको

0: दूसरों के जीवन के लिए भी कुछ करना है।
1: मैंने बस यही सोचा कि मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे मुझे और काम करने को मिले लेकिन ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। जितने मुझे भी वहाँ पर विरोध किया गया अलवर में, ये नहीं करूँ तो और क्या करोगे, क्या महारानी बनोगी तुम?
0: अच्छा,
1: तो मैंने कहा चाहे महारानी ना बनूँ पर ये काम नहीं करूँगी मैं, मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम, क्योंकि ये काम से मुझे बहुत अपमान मिला। एक तो देखिए उनके शौचालय साफ कर रहे हूँ और उस ऊपर से उनका उठपटांग बोलना, तो मैम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को तो क्या पहले मजबूरी थी
0: जी।
1: लेकिन बस मैंने यही ठाना मन में कि बिल्कुल नहीं करूँगी और अब ना ही किसी को करने दूंगी ये काम।
0: ये आपने ठान लिया?
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं करने दूंगी। और खासतौर से लड़कियों को ये कहना चाहूँ कि पढ़े वो, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ते लिखते नहीं है जब तक कुछ नहीं जानते, लेकिन पढ़ना लिखना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर तो सभी लड़कियाँ लेडीज से पढ़ी हुई हैं, लेकिन खासतौर से गांवों की बात बता रही हूँ आपको, क्योंकि गांवों में नहीं पढ़ती, थोड़ी सी लड़कियाँ सियानी होती है तो उसे घर बैठा लेते हैं। तो मैं चाहूंगी लड़कियाँ भी अच्छे से पढ़े लिखे, क्योंकि लड़कियाँ तो दो दो घर संभालते हैं
0: जी,
1: उनकी शादी हो जाती है तो दूसरा घर भी संभालती है
0: जी।
1: तो मैं चाहती हूँ कि अच्छे से लड़कियाँ पढ़े लिखे और लेडीज से आगे बढ़े, क्योंकि लेडीजों में बहुत ताकत है, अगर एक साथ रहें
0: जी
1: तो बिल्कुल जैसे कहते हैं बंद मुट्ठी
0: जी,
1: तो बुनू बहुत ताकत है, बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री मिलेगा, मैं सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे पद्मश्री से सम्मानित करा जाएगा भारत सरकार
0: जी।
1: लेकिन भारत सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक मेला ढोने वाले के लिए इतना उन्होंने सोचा और इस लायक समझा मुझे कि मुझे पद्मश्री से सम्मान कराया उन्होंने, और उनकी वजह से देखिए मुझे हर जगह पर सम्मान मिल रहा
0: जी। तो मैं तो आपकी मेहनत है उषा जी, आपका डेडिकेशन
1: जी मैम, तो मैं तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे राष्ट्रपति जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे बुलाया और इतना बड़ा सम्मान दिया। तो आज मैं यहाँ पर भी आई तो कन्याकुमारी में आकर मुझे बहुत ही ब्रह्मचारी कन्याकुमारी में बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिला और यहाँ भी मुझे सम्मान मिला। और यहाँ पर तो मैंने ऐसा बिल्कुल देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब भेदभाव हो, कोई छुआछूत हो, उसी गिलास में पानी पी रहे वहाँ पर और उसी गिलास हम लोग पी रहे, यहाँ पर कुछ ऐसा है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर।
0: तब एक ईश्वर की संतान है, कैसा भेदभाव?
1: बिल्कुल, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि शायद मैंने एक कर्म करा होगा लेकिन मैंने कभी फल की इच्छा नहीं की, लेकिन मैंने जो कर्म किया ईश्वर जाने
0: जी।
1: तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान सबके ऊपर अपना हाथ बनाए रखे तो सब में शक्ति दे।
0: उषा जी, आप जो आपने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट हैं, तो ये आपने सफर कैसे तय किया, कैसे बस आपने काम छोड़ा फिर आपको, आपने शुरुआत की, आपने बताया कि बहुत कुछ सिखाया गया, तो ये प्रेसिडेंट के पद तक आप कैसे पहुंचे, वो कैसा सफर था आपका?
1: ये मैम ये कैसा था, हम तो वही काम कर रहे थे मेला ढोने का
0: जी।
1: तो जैसे कि हमने वो काम छोड़ा तो उन्होंने कहा कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं सुलभ का, क्योंकि हम भारत का राष्ट्रपति तो बनाना नहीं चाहेंगे क्योंकि इतना पावर नहीं है हमारे हाथ में। उन्होंने कहा गांधी जी का सपना है कि एक स्केवेंजर महिला भारत की राष्ट्रपति होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर पाठक जी ने कि मेरे हाथ में इतना पावर तो नहीं है कि तुम राष्ट्रपति बना सको, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ मैं सुलभ का प्रेसिडेंट तो तुम्हें बना ही सकता हूँ। तो बहुत सारी लेडीज थी, हम 115 तो हमारे अलवर में लेडीज है जो मेरे नीचे काम कर रही है वो, और 250 से 300 लेडीज है और एक जगह से है टॉक से, तो सब मेरे नीचे। तो सबसे पूछा था कि हम एक लेडीज को प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे, तो सबने कहा मुझे तो पता भी नहीं था मैम, तो उन्होंने मेरा नाम लिया कि उषा जी को बनाना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे अरे मैम कांग्रेचुलेशन, मैंने किस बात की, अरे आपको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा, मैंने कहा मुझे क्या पता भाई प्रेसिडेंट का मतलब, क्योंकि पहले मैं तो मेलड होती थी, सुलभ में 2003 से मैंने काम छोड़ा। तो फिर उन्होंने कहा अरे तुम बहुत बड़े पद पे जा रही हो, मैं कोई बात नहीं। तो पत्रकार वगैरह मुझे पूछने लगे कि मैम अब क्या करोगे इस समझते इस चीज के लिए
0: जी।
1: कि भाई तुम्हें जो बनाया गया प्रेसिडेंट इस चीज को मानते हो समझते हो, मैंने कहा भाई उनके साथ चलाऊंगी देखूंगी बैठूंगी तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्रेसिडेंट का मतलब मैम यही है कि कोई भी लेडीज है
0: जी।
1: हमारे समाज की मैं कह रही हूँ इस टाइम, तो जैसे मैं सभी लेडीज को कहना चाहती हूँ ना कि मेरी समाज के लिए, क्योंकि खासतौर से हम लोगों के समाज की लेडीज मेला ढोने का काम करते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि जब से मुझे प्रेसिडेंट सोलह ने बनाया तो बस मैं यही मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ये काम नहीं कर लूँ मेला ढोने का
0: जी।
1: मुझे बहुत ही गंदा लगता है ये काम, अरे वो बहुत कुछ सीखना चाहती हैं और जानती भी हैं, अचार बनाती हैं, देख लीजिए वहाँ पर पापड़ बनाती हैं, चाय बनाती हैं, सब लोग खरीद के खा रहे हैं,
0: कितने टैलेंट है,
1: अपने पैरों पे खड़ी हैं, उन्हें अब एक रोजगार मिल गया
0: जी।
1: क्योंकि सुलभ में हम लोगों को दो जिंदगी जी ली है हम लोगों ने
0: जी।
1: जैसे कि मेला ढो रहे थे तो मैं यही

तो बिल्कुल नरक ऐसा ही होगा, और जब से सुलभ में आए हम लोग तो ये कहते हैं बिल्कुल मैं स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही हो। तो मैं कहती हूँ मुझे तो स्वर्ग भी जाने की जरूरत नहीं, बस भगवान भोलेनाथ कृष्ण जी, क्योंकि मैंने यहीं पर देख लिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों को वहाँ यहाँ पर ऐसा कहा गया कि भाई तुम कौन सी बिरादरी में जाना चाहते हो, तो मैंने कहा हम लोगों को पंडित ही बनाया उन्होंने। तो उन्होंने कहा तुम तो माता पंडित तो मंत्री बोलते हो, उच्चारण करते हो। मैंने कहा बिल्कुल, तो थोड़ा समय तो मैं बोल देती हूँ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल एक अलग ही मूड में चले गए थे और बिल्कुल ईश्वर को याद कर रहे हैं, जो शब्द हैं उनके मतलब भी समझे तो हमें बराबरी समझ में आ जाती है, क्योंकि हम सब ईश्वर के
1: संतान।
0: उषा जी, मैं बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम भारत की उन्नति की बात करते हैं और जब तक भेदभाव है तब तक उन्नति नहीं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप और कोई ऐसी बात कहना चाहें, क्योंकि आप है, जो आप में बदलाव आया, जो आप लेके आए, बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हम सभी के लिए। तो आप तो भारत के लिए क्या सपना देखते हैं, अपने देश के लिए क्या सपना देखते हैं?
1: बस भारत के लिए मैं यही सपना देखती हूँ कि भारत हमारा बहुत आगे जा सकता है, ऐसा नहीं है और जा भी रहा है। क्योंकि हम लोग पहले ये जानते थे कि हमारा मतलब विदेश ही आगे जा सकता, विदेश के लोग, क्योंकि हम लोगों में क्या गुरता भारत में, क्योंकि हमारा भारत बहुत सी चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बहुत सी चीज है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, तो हम बिल्कुल अपने भारत को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे कि कितनी, आप देखिए अपने इंडिया में कितना मतलब माहौल ऐसा था कि कोई भी चीज खा के और डाल दिया
0: जी,
1: कोई मतलब लेडीजों की इज्जत नहीं थी
0: जी।
1: जैसे कि अपने यहाँ पर विदेशों में देखिए सब कुछ लेडीजें करती हैं और वहाँ पर साफ सफाई बहुत है, लेकिन अपने यहाँ पर देखिए अब जब से नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए अपने देश में, खूब अच्छे से साफ सफाई यहाँ पर भी हो रही है और अपना भारत भी बहुत आगे जा रहा है, और लेडीजों को भी खासतौर से वो भी सम्मान दिला रहे हैं। जब लेडीजों को सम्मान मिलता है तो लेडीजों का हौसला बढ़ जाता है, तो वो सोचती है कि आज मुझे मिला है तो दूसरी बहन को मैं दिलाऊं। तो जब एक लेडीज निकल के आती है, मैं मेरी बस्ती में सदस्य निकल के आई अलवर में, तो देखिए कभी मेरे समाज को कभी नहीं मिला था पद्मश्री, तो आज वो है, मेरा इतना इज्जत और सम्मान करते हर जगह पर, मुझे बुलाते, जो भी कुछ भी वहाँ पर होता पहले मुझे याद करते, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं, मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं डॉक्टर पाठक जी को धन्यवाद देती हूँ, वही हमारे बाबा, वही हमारे गांधी जी और वही हमारे भगवान, क्योंकि मैंने तो गांधी जी इतनी उम्र मेरी नहीं है कि मैंने देखे, लेकिन डॉक्टर पाठक जी मैंने देखा जो भी देखा।
0: लेकिन उषा जी मुश्किल तो हुआ होगा, चैलेंज तो आया होगा, इतना आसान तो चेंज नहीं होता।
1: मैं बहुत मुश्किल से चेंज आ रहा है, जैसे कि 2003 से मैंने छोड़ा तो जो शौचालय कच्चे थे दूसरी लेडीज ने पकड़ लिया,

0: सिरिंज छोड़े तो तीसरी पकड़े। फिर मैं डॉक्टर पाटिल जी से कहा कि सर हम लोगों की जिंदगी में तो कोई बदलाव कभी आएगा ही नहीं और नहीं हम बदलेंगे, क्योंकि मैंने छोड़ा तो दूसरे दिन पकड़ लिए वो तो। तो डॉक्टर पाटिल जी ने क्या करा, जो जड़ फैली हुई थी वही उन्होंने काट दी, हर जगह पर उन्होंने शौचालय बनवा दी पक्के। तो ना तो कच्चे शौचालय है न ही उन्हें साफ करते है उन्होंने। और हम वहाँ पर संस्था में जुड़े हुए सुलभ इंटरनेशनल में। तो 2003 से मैंने छोड़ा, फिर 2006 में दूसरी लीडरशिप छोड़ा, फिर 2009 में तीसरी ने छोड़ा। तो हम लोगों ने काम छोड़ दिया, आप इज्जत और सम्मान की जिंदगी जी रहे और आपके सामने यहाँ पर भी आए हम लोग, हर जगह पर सम्मान पा रहे, तो बहुत खुशी होती है कि हम लोगों को, मुझे तो मैं मेला ढोने वाले के लिए कल तक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज की मुझे सब इज्जत और सम्मान की नजर से देखते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं उनके लिए यही कहती हूँ, डॉक्टर पाठक जी के लिए, कि देखिए उनकी जिन्होंने उनको जन्म दिया है, मैं उनको भी सब सब नमन करती हूँ। उनको जन्म दिया इतने मतलब महान एक के सपुत्र है उनके, जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी बदली।
1: हम भी उन्हें इस मंच के द्वारा बहुत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इतने जीवन पर,
0: क्योंकि मैम देखिए ना तो वो हमारे अलवर के रहने वाले थे न ही हमारे समाज के थे, वो दूसरी बिरादरी के है, पंडित है वो। आज तो मैं पंडित खुद ही, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें कहा कौन सी बिरादरी में जाना चाहते, लेकिन आज मैंने यहाँ पर आके देखा
1: जी
0: ब्रह्मचारी कन्या में, कन्या तो यहाँ पर मुझे कन्याकुमारी में, तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इतना अच्छा लगा कि मैं कह नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हम सभी परिवार हैं एक, और जब मिलते हैं सीखने को मिलता है। एंड आपको हम स्पेशली बहुत धन्यवाद देते हैं अफशा जी, क्योंकि जो आपने बातें कही यहाँ गांव-गांव तक जाएंगी। बहुत सी महिलाएं हैं जो लगता है कि हमारे जीवन में शायद कभी बदलाव नहीं आएगा, हमारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन वो जब ये सुनेंगी तो उन्हें समझ में जरूर आएगा कि किस्मत में ये नहीं लिखा।
0: हमारी किस्मत खुद बदलने वाले हैं,
1: खुद बदल सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाना।
0: हाँ, बस लेडीजों को थोड़ा सा घर में से बाहर निकलना, उसके बाद बहुत सी कुछ जान सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, एंड आपको आगे का भी कार्यक्रम है तो मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगी, लेकिन आपका बहुत हृदय से आभार, आप यहाँ आए हमारे साथ अपने अपनी कहानी शेयर की, बहुत बहुत
0: धन्यवाद। ओम शांति।
1: ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और उषा जी की कहानी आप आगे भी एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़िए। रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए।

0: और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: 90.4 FM रेडियो मधुबन के सभी श्रोता साथियों को आरजे शांतनु का बहुत बहुत नमस्कार। आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम और आज के हमारे इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अनूठी हस्ती को हम लेकर के आए हैं आपके समक्ष। किसी भी जीवन का जो नींव है उसके बीज से होता है, चाहे वो एक वृक्ष हो चाहे वो इंसान, उस बीज की क्षमता, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता पे निर्भर करता है उसका पूरा जीवन। लेकिन बीज

0: पे ध्यान लोगों का कम ही जाता है। आज की हमारी जो अतिथि हैं, उनका सारा ध्यान, उनका सारा श्रम केवल बीज की गुणवत्ता पर है और इसलिए भारत देश में उन्हें बीज माता के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राहीबाई सोमा पोपेरे जी की, जिनको भारत सरकार ने सन 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया और हाल ही में 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। बीबीसी के 100 सशक्त महिलाओं में उनका नाम आता है। आज हमारे स्टूडियो में राहीबाई जी हमारे साथ हैं और हम सबका ये बहुत बहुत सौभाग्य है। राहीबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: राहीबाई, तुमचा हमारे स्टूडियो में खूब खूब स्वागत है। मेरी मराठी ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा, बट हमारी तरफ से दिल की शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: तो जतिन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े। हमारे श्रोताओं के लिए आज सच में बहुत ही भाग्यशाली दिन है कि हम राहीबाई जैसे इतने महान हस्ती के साथ, उनके अनुभवों के साथ जुड़ रहे हैं और एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं जिस विषय पे कई लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात है, स्पिरिट से जुड़े हुए लोगों का भी ध्यान कम जाता है। राहीबाई जी एक महिला कृषक है और कृषि क्षेत्र से भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि केवल कृषि करना, फसल उगाना, उत्पादन लाना, लोगों को खिलाना, यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कृषि करने का सबसे पहला फाउंडेशन, जो आधार है, वो है बीज। उस बीज की गुणवत्ता, वो बीज की शक्ति, उस बीज में कितनी उत्पादन क्षमता है, वो निर्भर करता है बीज के गुणों पे। लेकिन बीज पे ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है, लेकिन ध्यान उस व्यक्ति का गया जिस व्यक्ति ने कृषि के प्राण को समझा, जिसने समझा कि कृषि का जो प्राण है, जो आधार है, वो उसके बीज से है, और वो व्यक्ति है हमारी राहीबाई जी। आई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि पहला सवाल मैं आपसे यही करूं कि सब लोग किसानी कर रहे हैं, सब लोग खेती कर रहे हैं, आपका ध्यान बीज संरक्षण पे कैसे गया?
2: प्रश्न विचार लाई की खूप सारे लोक शेती करतात, खूप साऱ्या लोकांकडे शेती आहे, परंतु बिया हे जे मूळ आधार आहे वेगवेगळ्या पिकांचा किंवा शेतीचा, त्याच्यावरतीच तुमचं लक्ष कसं गेलं?
3: माझं लक्ष त्याच्यावर असं गेलं का हे शेतीतून आता खूप दुर्मळ होत चाललं होतं, हे भेटतच नव्हतं। आणि मग माझं एक स्वतःच्या अनुभवातून माझ्या पण शेतामध्ये खूप काही नवीन नवीन वाण केले होते, पण त्याच्यापासून माझ्या घरामध्ये थोडे आजार मला दिसत होते। मग त्याच्यामुळे मी माझ्याच बांधव उभारून हा एक अभ्यास केला आणि बांधव उभारून विचार केला का आपण पहिले काय शेतीमध्ये पीक घेत होतो, आता काय पीक घेतोय, पहिलं कोणतं बी पेरीत होतं, आता कोणतं बी पेरीतोय, पहिलं आपल्या ताटामध्ये कोणतं अन्न खायला येत होतं, आता कोणता येतोय। म्हणजे हा मी फक्त माझ्या बांधव उभारून मी अभ्यास केला आणि मी माझ्या घरातलं बंद करायला लागले। तर मला काही दिवस बंद करताना पण काही दिवस मला घरातून विरोध झाला आणि नंतर मग विरोध झाला काही दिवस मी गप्प बसले, मग परत माझं कुटुंब ऐकायला लागलं, माझ्याच घरात एक अनुभव घेऊन मग तिथून परत मी जुन्याकडे वळले आणि जुन्याकडे वळून मग हे बरंच माझ्या पुरतं करत होते, मी बरंच सांगत होते लोकांना, पण त्यावेळेस माझं कोणी ऐकत नव्हतं, मला खूप हसत होते, खूप नाव ठेवित होते, पण मी माझं काम एक सुरूच ठेवलं होतं हे करायचं हे।
2: ठीक है, उन्होंने जो बताया कि ये पुराने जो बीज है या ट्रेडिशनल सीड है उसकी ओर मैं जाने का एक ही रीजन था। मेरे भी घर में केमिकल फार्मिंग या हाइब्रिड सीड लाए गए मेरे बच्चों की ओर से और उन्होंने जो खेती शुरू की वो विद केमिकल और हाइब्रिड सीड, तो उससे यील्ड तो बढ़ा लेकिन घर में अलग अलग बीमारियां आने लगी, तो उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया राहीबाई जी ने, और उसके बाद उनको लगा कि मेरा ओल्ड इज गोल्ड कहा है, मेरा पुराना बीज कहा है, उसको फिर से लाना पड़ेगा और खेती में फिर से बदलाव करना पड़ेगा। तब जाके उनको स्पार्क मिला कि नहीं, मुझे मेरा जो भी पुराना है वो फिर से खोज निकालना है, जहां भी रखा है उसको निकालना है, और वहां से वो क्रांति शुरू हुई और एक एक बीज जो पुराने थे उनको जोड़ना शुरू हो गया और करीबन 53 क्रॉप्स के 116 वराइटीज अभी उनके जीन बैंक में उन्होंने कंजर्व करके रखी है, वो भी ट्रेडिशनली। जैसे कि उन्होंने कई सारे बीज मटके में, कई सारे बीज बाम्बू के बास्केट में कवर

0: करके रखे, तो बहुत सिंपल टेक्निक से।
1: इसका मतलब जिस बीज की जैसी आवश्यकता है उसको उस हिसाब से पालना मिल रही है और उसको उस हिसाब से हम केयर कर रहे हैं ताकि वो बीज जो है आगे चल करके और भी फसल दे। इसमें मेरे को एक चीज ये समझना था कि जब हमारे पास बीज आता है, एक तो होता है जो हम सीड शॉप से खरीद के लाते हैं या जो हमको दुकानों में मिलता है वो खरीद के लाते हैं, वो तो हमें पता है कि ये हाइब्रिड है, जीएमओ है और जैसा भी है। दूसरा होता है कि कई लोग वहां से नहीं खरीदते, अपने दोस्तों से ले लेते हैं। मैं भी कृषक हूँ, आप भी कृषक है, मैं आपके पास गया और आपके पास से कुछ मैंने ले लिया। अभी मुझे उसकी पहचान ही नहीं है कि ये जीएमओ वाला है, हाइब्रिड है और ये ओरिजिनल है, ये पुरातन वाला है, जो सबसे शुद्ध है, देसी है, वो है। तो क्या क्या पद्धति है? जरूर उनके पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज होगी, आपकी कुछ ऐसी सभ्यताएं हैं, कुछ ऐसी संस्कृति में ऐसा होगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो बीज है ये ओरिजिनल बीज है, ये जो है ये मिलावटी बीज है। तो आप उसको कैसे पहचानते हैं?
0: राही भाई, त्यांचा प्रश्न आहे की हायब्रिड बियाणं किंवा जेनेटिकली मॉडिफाई केलेलं बियाणं आणि आपलं गावरान बियाणं याच्यातला फरक तुम्ही कसा जाणता? ते ओरिजिनल बियाणं हे तर तुम्ही कसं ओळख? हा महत्वाचा प्रश्न आहे त्यांचा।
2: हे बियाणं, हे बियाणं जे देशी बियाणं आहे म्हणजे ओरिजिनल म्हणजे देशी बियाणं, हे बरोबर मला ओळखता येतं। कसं ओळखता येतं? का मी लहानपणापासून ते वाढीते, ते लावीते, त्याच्यामध्ये काम करते आणि मग मला असं वाटतं की आईला किती बाळ झाले तरी ते आईला ओळखू येतात। मग हे बी मी त्याला लहान मुलांसारखा जीवला येते, मला बरोबर सगळं एक ना एक बी, मला मी लिहिता वाचता येत नाही, मला पुस्तकावरचं काय अभ्यास नाही, पण बी पाहिल्या पाहिल्या मला लगेच लक्षात येतं का हे बी हा झ्यावडे का हा वाले का हा पावटे का हा कागल दोडक हे सगळं काय रातबाज्या सगळं मला एक ना एक बी मला बघितल्यावर लगेच ओळखायला येत। कसं ओळखायला? तो अनुभवातून ओळखायला येतं, कारण एक अनुभव मी त्याच्यामध्ये पहिल्यापासून लावते, उगवते, लोकांना देते। मग मला असं वाटतं का ते मी बाळ माझे स्वतःचे बाळ म्हणूनच मी त्यांचे नावं पण मी ठेवते आणि नावं पण मला पटकन ओळखता येतात। मग हायब्रिड बियाणं कोणतं, गावठी बियाणं कोणतं, मला लगेच ओळखायला येतं, फक्त बघून ओळखायला येतं।
0: इन्होने काफी अहम चीजें बताई। सबसे अहम चीज उन्होंने बताई कि माँ को कितने भी बच्चे हो उनका कैरेक्टर, उनको पहचानना माँ का काम होता है। और मैं तो सीड मदर हूँ, बीज की माता हूँ, तो मैं ये ट्रेडिशनली सीखी हूँ कि ओरिजिनल सीड कैसे पहचाने जाते हैं, उसका रंग है या उसका साइज है या उसका जो कैरेक्टर होता है जो इनके माइंड में फिक्स है, तो ये बचपन से सीखे आई है तो उसकी पहचान वो आराम से कर सकती है। और दूसरी एक चीज है, ओरिजिनल और शुद्ध जो बी है, बीज है, वो तैयार करने के लिए इनके पास बहुत सारी माताजी और उन्होंने बनाई है, करीबन 3000 वुमेन्स उनके साथ जुड़ी हुई है इस मूवमेंट में, तो उनको भी ये ट्रेनिंग दिया गया है कि ओरिजिनल कैसे पहचानना है, क्वालिटी सीड को कैसे ग्रेडिंग करना है, और ये मैन्युअली करती है अभी। अभी आगे जाके मशीनरीज और उसको ग्रेडिंग का मशीन आएगा, लेकिन अभी मैन्युअली करती है और ये सभी लोगों को ट्रेडिशनल नॉलेज उन्होंने दे रखा है।
1: तो जहां तक मैंने समझा और मैं समझता हूँ, हमारे श्रोताओं ने भी पक्का समझ लिया होगा कि कहते हुए ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो अनुभव एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है हमारे पास जिससे सामने आने वाले किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जरूर किया जा सकता है। अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं, अनुभव में अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और जब वो बोल रही थी तब मुझे भी इस चीज समझ में आ रहा था कि वो कह रही कि माँ के लिए बच्चों को पहचानना मुश्किल नहीं होता, लेकिन माँ कैसे पहचान सकती बच्चों को, क्योंकि एक दिल का नाता होता है, एक रिश्ता होता है। तो राही भाई जी और राही भाई जी के साथ कार्य करने वाली जो 3000 हमारी माताएं हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने दिल से जोड़ा है खुद को कृषि से, केवल बुद्धि से नहीं जोड़ा कि हमें भाई किसानी करना है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, वो तो होगा ही, लेकिन जो उन्होंने मुख्य प्राण जिस चीज पे रखा है, अपना जो लक्ष्य रखा वो ये कि हमको हृदय से करना है उस चीज को, दिल से करना है। और जहाँ दिल जुड़ जाता है वहां पर अंदर ही अंदर आपको अनुभव होगा कि ये राइट है, ये नहीं है, अंदर ही अंदर व्यक्ति को समझ में आएगा। जतिन जी, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा क्योंकि आपने पढ़ाई की है इस विषय की और इन माताओं ने कोई पढ़ाई नहीं।

0: लेकिन जब आप अपने फील्ड से निकल के इनके साथ आए और इनके साथ जुड़े, आप चाहते तो किसी कॉर्पोरेट के साथ जुड़ सकते थे, जुड़ करके खूब लाखों पैसा कमा सकते थे, आप अपने पढ़ाई का ऐसा इस्तेमाल कर सकते थे जिससे कि आप बहुत बहुत बहुत धन कमा सकते थे, लेकिन आपने चुना कि आप भोली भाली हमारे गांव की कृषक माताओं के साथ जुड़े, उनके अनुभव के साथ जुड़े। तो क्या था आपका निर्णय, क्यों आपने ये डिसीजन लिया?
1: एक्चुअली मैं शुक्रगुजार हूँ बायफ ऑर्गेनाइजेशन का, डॉक्टर मनीभाई देसाई जी का, और जिन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लायक समझा। तो मैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं भी बाकी लोगों जैसा ही थॉट था मेरा कि कुछ कमाई हो जाए, अच्छी जिंदगी जी जाए। लेकिन जैसे मेरी पोस्टिंग जवाहर जो इलाका है, ट्राइबल जोन है महाराष्ट्र का, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में तब वो आता था, तो वहां मेरी पोस्टिंग हुई। और वो जवाहर इतना ट्राइबल एरिया है कि जिस समय मेरी 1995 में वहां पोस्टिंग की गई, तो मैंने देखा कि दो टाइम का खाना नहीं है मेरे देशवासियों को, इसलिए बच्चे मर रहे मेरे सामने। और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरा नॉलेज किसी कारपोरेट को दो या दूसरे देश को दो और वहां पैसा कमाऊ, उसके बजाय ये सही रहेगा कि मैं मेरे देशवासियों की सेवा करूं, जो बच्चे मर रहे हैं उनके लिए कुछ अनाज पैदा करने की एक नई तकनीक उनको दूं और उनका जीवन अच्छा बना लूं। तब से मैं ये मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूं और लास्ट 26 ईयर से मैं इस मूवमेंट को आगे चलाता आ रहा हूं। और मुझे खुशी है कि करीबन अभी तक मेरे सर्विस प्लान में मैंने 1.5 लाख तक के परिवार, जो गरीब परिवार ट्राइबल परिवार है, उनको अच्छी जिंदगी दी, क्वालिटी ऑफ लाइफ दी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड दिया। और इसके लिए बायब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काफी सपोर्ट किया और उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ आज भी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई सारे कॉल्स मुझे आज भी आते हैं, मैं इंडिया के बाहर जाके भी रह सकता हूँ, विश्व का सबसे अच्छा देश नीदरलैंड में मुझे अच्छे कॉल्स थे, प्रोफेसर बनने का चांस था, लेकिन मुझे ये सब चीजें दिल में नहीं आई, मेरे जहन में नहीं आई कि मैं मेरे देश को छोड़ के, मेरे गरीब लोगों को, किसानों को छोड़ के बाहर देश में जाऊं और मेरा परिवार बस, ये पूरा मेरा परिवार ही है, देश मेरा परिवार है, जैसे कि राही भाई है उस तरह मेरे पास करीबन 30-40,000 वुमेन्स होगी, उनका नेटवर्क होगा और उनके साथ मैं डे टू डे काम करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य।
0: तो जैसा कि आपने बताया, मुझे लगता है आपने त्याग नहीं किया, आपने भाग्य जमा किया, अपने साथ साथ लाखों लोगों का भाग्य बनाए, और इसलिए आपके पास बहुत दुआएं हैं और ये दुआएं जो है आपको आगे से आगे बढ़ा रही है, हर एक के दिल में बसा रही है। लोग आते हैं, बड़ा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं फिर चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई याद नहीं रखता, लेकिन उसे जरूर वो लोग कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके दिल में जगह बसाई होती है। आपने लोगों के दिल में जगह बसाई जतिन जी, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस बात की।
1: थैंक यू।
0: और जैसे आपने बताया ना कि मैं अपने देश के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, तो आप देश के बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और राही भाई जी छोटे छोटे बीज के लिए कर रहे हैं, जिन बीज से फिर देश का भाग्य, देश की नियति जुड़ी हुई है। मुझे एक और सवाल राही भाई जी से ये पूछना था कि राही भाई जी एक पुरातन पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं कृषि में, उनके बच्चे या उनके आसपास में जो दूसरे कृषक हैं वो रासायनिक पद्धति या कहो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कृषि करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पैसा जल्दी चाहिए, अधिक चाहिए। तो क्या कभी उनको ऐसा नहीं आया मन में कि मैं भी कुछ कर लूं ऐसा, मेरे को थोड़ा लॉस हो रहा है, या क्या था उनका अनुभव इस विषय में?
1: राय मौशी, त्यांचा प्रश्न असा है कि तुम्ही तर देशी बियाणं वापरून शेती करताय, परंतु आजूबाजूला असे शेतकरी आहे की जे रासायनिक शेती करतात, हायब्रिड बियाणं वापरून शेती करतात, तुमचं बघून ह्या लोकांना असं वाटलं नाही का आपण पण बदललं पाहिजे? ज्या पद्धतीने राईबाईंचं नाव झालंय किंवा ज्या पद्धतीने राईबाईंनी काम उभं केलंय त्यांचं अनुकरण झालं पाहिजे ना, असं बाकी लोकांना वाटतंय का? आणि वाटत असेल तर ते किती मोठ्या प्रमाणावर आहे?
2: नाही वाटत, आता लोक आता जुन्याकडे वळलेत, लोक बरेच लोक जुन्याकडे वळले, सेंद्रियकडे वळले, कारण राईबाई सांगतच होती त्यांना, पण राईबाईचं खरं नव्हतं, पण आता कोरोनानी बरंच काय शिकवलं, कारण जे गावठी खात होते, खेड्यापाडीने जे लोक राहत होते त्यांना कोरोना झालीच नाही, आणि शहरामध्ये सगळे घरात बसावले, सगळे घराच्या बाहेर पडायचं नाही, पण माझा शेतकरी बंधू कोणीच घरात

0: ठिकठिकाणी लोकांना पण सांगते आणि आता बऱ्यापैकी लोक जुन्याकडे वळले तर माझ तुम्ही आम्ही सगळ्यांनी मिळून जर हे केलं तर 100% सगळे लोक जुन्याकडे वळतील. पण हे सगळ्यांनी तुम्ही आम्ही मिळून केलं पाहिजे. आणि हे जे आर आहे जे आपल्या ताटामध्ये 20 खातोय हे 20 जर नाहीच केलं तर माझं एक स्वप्न पुरं होईल का आपलं काम कुठंतरी जगामध्ये गेलं. आणि याच्यासाठी माझ्या बरोबर एक बाईक संस्था खंबीरपणे उभी आहे. आता मी तर नाही शिकलेले, माझी तळमळ भरपूर होती जगापासून जायची, पण खरं बाईक संस्था एक मला गुरु ज्ञान भेटलं आणि त्याने आज माझं काम बाई जगासमोर नेलंय हा एक माझा मोठा अभिमान आहे. आणि त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देते का त्यांचे आज मी माझ्याच घरात बसलेला असते पण आज मला लोकांना याच्या माध्यमातून सांगता येतं बोलता येतं. मी जरी नाही शिकलेली तरी त्या बियाचं एक ना एक बियाचं वैशिष्ट्य मी सांगेन. आमचं बी एक बी जर एक वर्ष पिकलं तर ते 3 वर्ष पेरता येतं. तसं हायब्रिड बी दरवर्षी घ्यायचं दरवर्षी पेरायचं आणि मातीच्या मटक्यामध्ये राखेत घालून ते 10 वर्षापासून खाण्यासाठी राहतं पण पेरणीसाठी सुद्धा 3 वर्ष चालत. हे मी माझ्या हातानं जेवढं केलेलं आहे तेवढं मी सांगत असते. आणि हे कमी पाणी येणारे वाणीत ना हे हवे येणारे जे गाव डीसी बी आहे कमी पाणी हवे येणारे वाणी. तसं हायब्रिड बी आहे त्याला खत औषध दिल्याशिवाय ते काहीच येऊ शकणार. मग हेच मी शेतकऱ्यांना सांगते ते याच्यासाठी तुम्ही आमच्या सगळे श्रीमंत सगळ्यांनी मिळून केलं तर आपली पुढची पिढी खरोखर चांगली घडल. आणि पुढची पिढीला जर डीसी खायला भेटलं 20 मुक्त अन्न खाल्लं तर आपली पुढची पिढी सुद्धा समाजामध्ये काहीतरी चांगलं काम करेल. आणि ह्या पुढच्या पिढीसाठी तुम्ही आम्ही सगळं काम केलं पाहिजे आणि तुम्ही आम्ही सांभाळून ठेवलं पाहिजे.
1: बहुत ही अहम मुद्दे उन्होंने उठाए है. जैसे कि उन्होंने बताया कि रिप्लिकेशन तो हो रहा है. मेरा जो मॉडल है जो देसी सीड है यो बहुत सारे किसानों तक बहुत सारे गांव में जा पहुंचा है. लेकिन इस मूवमेंट को बड़ा करने के लिए सभी लोगों का सहयोग सभी समाज का सहयोग उसमें होना चाहिए. और उन्होंने ये भी बताया कि बायब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे काफी सपोर्ट किया. नहीं तो मैं मेरे गाँव में ही रहती, मेरा नॉलेज मेरे ही पास रहता. लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉलेज को पूरे भारतवर्ष में लेके जाने के लिए बायफ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी सपोर्ट मुझे किया है. और 2-3 चीजें उन्होंने बहुत बढ़िया बताई, जैसे कि हर एक के प्लेट में केमिकल फ्री फूड आना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड आना चाहिए. और भी एक बहुत मुद्दा उन्होंने अहम बताया कि न्यूट्री गार्डन जिसको हम किचन गार्डन कहते हैं, हर एक घर के पास किचन गार्डन डेवलप करना उनका एक सपना है और उसके लिए वो लास्ट 25 ईयर्स से प्रयास कर रही है. और ये न्यूट्री गार्डन का भी एक अलग सा मॉडल उन्होंने बनाया है जिसको कई सारे लोग IIT पवई से भी प्रोफेसर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब लोग आके वहाँ वो सीखते हैं वो मॉडल. तो रिप्लिकेशन तो हो रहा है लेकिन उसको गतिमान बनाने के लिए सबका सहयोग चाहिए, ये उनका अपील.
2: और साथ में मैंने ये भी समझा कि उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि हमारा अगर हम कोशिश करके हमारे सामने वाली पीढ़ी को प्लेट पे विषमुक्त भोजन करा सकते हैं तो वो स्वस्थ होगा. और जब वो स्वस्थ होगा वो समझेगा कि भाई क्या मेहनत की जा रही है. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो ये प्रयास है आपके इस प्रयास में ही हमारे जनरेशन के लिए आशीर्वाद छिपा हुआ है. और आपके इस आशीर्वाद से मैं समझता हूँ हमारे जो यंग जनरेशन है, जो युवा साथी है, जो बच्चे हैं, वो जरूर इंटरेस्ट लेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसको वो समझे, सीखना चाहे तो सीखे और इस पद्धति को आगे बढ़ाए. मैं समझता हूँ भारत में जो ये पुरातन पद्धति है, जो शाश्वत खेती का जो तरीका है हमारे पास, वो बहुत ही शक्तिशाली, उसमें इतनी शक्ति है कि वो ना केवल किसान का पेट भर रही है, ना केवल वो कई लोगों का पेट भर रही है, लेकिन वो जमीन की भी स्वास्थ्य का ख्याल रखती है. जो हमारी पुरातन सभ्यता के अनुसार जो कृषि हम कर रहे हैं उसमें जमीन का स्वास्थ्य, पर्यावरण का स्वास्थ्य, जैव विविधता, ये सब कुछ उसमें समाया हुआ होता है. और इस वजह से वो जो है अहिंसक खेती है और उस खेती का इससे जो परिणाम है वो दुआओं से भरा हुआ है.
3: जब भी किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनके अनुभवों को सुनते हैं, समय का पता ही नहीं चलता. आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है. राही जी के अनुभव को सुनते हुए मुझे तो पता नहीं चला कि कब समय की सीमा आ गई. मुझे लगता है एक और एपिसोड में हमें और आपको मौका मिलेगा राही भाई जी के साथ, जतिन जी के साथ, उनके अनुभव को सुनने का, जानने का और सीखने का. तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप हमारे साथ हमारे अगले एपिसोड

0: हर मुस्कान बोलो
1: बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बोलो बच्चा है महान जग में बच्चा है महान बच्चे में है भगवान।
2: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने दे।

0: है, जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं दीपक केंकरे। हंसी के फायदे के बारे में जानकारी लेंगे। हमें मालूम है जब भी हम लखनऊ स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहां लिखा रहता है बड़े अक्षरों में, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। यह वाक्य पढ़ते ही यात्रियों के चेहरे पर सहज मुस्कुराहट आ जाती है। इस वाक्य में लखनऊ की जिंदा दिली, खुश मिजाजी का दर्शन होता है। हम अभी कुछ बड़े वैज्ञानिकों के बारे में देखते हैं, वो उस हंसी के बारे में क्या बोलते हैं। जैसा कि स्वेट मार्टन बोलता है, हंसी जीवन का प्रभात है, यह शीतकाल की मधुर धूप है तो ग्रीष्म की तपती दोपहरी में सघन छाया है। इससे आत्मा खिल उठती है, इससे स्वयं तो आनंद पाते ही हैं, दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। निराशा और चिंता का अचूक इलाज है और दुख के लिए रामबाण है। ये बहुत बढ़िया स्वेट मार्टिन में लिखा है। अभी हम थैंकर नामक विचारक के बारे में पढ़ते हैं। प्रसन्नता ऐसी पोशाक है जो हर समाज सोसाइटी में हर मौसम में पहन जा सकती है। मनुष्य की आत्मा की असंतुष्टि शारीरिक स्वास्थ्य और वृद्धि की स्थिरता नापने का एक ही थर्मामीटर है, चेहरे पर खिली प्रसन्नता। ओशो बोलते हैं, गंभीरता से बड़ी कोई बीमारी नहीं और हंसी से बड़ा कोई आनंद नहीं। बर्नार्ड शॉ लिखते हैं, हंसी की सुंदर पृष्ठभूमि पर ही जवानी के प्रसून खिलते हैं। जवानी को तरोताजा बनाए रखने के लिए भी आपको हंसिए। डॉक्टर बनारसी लाल चतुर्वेदी ने लिखा है, यदि संसार के लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम हो तो हास्य के हमारे स्वास्थ्य पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, और फिर आधी से अधिक डॉक्टरों के पास कुछ काम नहीं रह जाएगा। शेक्सपियर भी इसके बारे में कुछ बोलते हैं, प्रसन्नचित आदमी अधिक जीता है, दुखी चिंतातुर और उदास मुख वाला सभी को ऐसा मायूस लगता है जैसे कि मौत की खबर लाया हो। स्पार्टर का प्रसिद्ध नेता साइकर गल का स्पष्ट मत था कि हास्य में हमारी पाचन शक्ति को भी बढ़ाने का अद्भुत गुण होता है, इसलिए उसने अपने भोजनालय में हास्य देवता की एक सुंदर मूर्ति स्थापित कर रखी थी। लंदन के लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन गोमेस का कथन है कि मानसिक तनाव को दूर करने के लिए हंसी सर्वोत्तम साधन है। मानसिक तनाव से थकान, व्यग्रता, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये शिकायतें आती हैं। इसी से सिर दर्द, कमर दर्द, अल्सर और बदहजमी हो जाती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए औषधि खाने से बेहतर है कि समस्या को समझा जाए और उसके समाधान के बारे में सोचा जाए। इस अवस्था में 3 मिनट में गपशप और हंसी की सभा आपकी परेशानी दूर कर दे सकती है। ऐसे ही श्यामलाल मुंशी ने कहा कि हंसी जीवन की स्वच्छता का आधार है, जीवन की प्राणवायु है, हृदय का सौंदर्य है, संबंधों को परिष्कृत करने वाली शुद्ध ऊर्जा है। हंसी लाल ओठों पर खिला हुआ ताजगी से भरा हुआ फूल है जिसका अद्भुत सौंदर्य समूचे वातावरण में रहस्य और मस्ती के लाखों रंग दिखाई देते हैं। तो हमने देखा इन सब महारथियों का राय हंसी के बारे में, जो हमें बहुत उत्तेजित करता है कि हम हंसमुख रहें। और वैसे ब्रॉड टॉपिक पर अगर गुण देखें, उसके फायदे देखें, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ये, बुद्धिमानी के लिए भी अच्छा टॉनिक है, हंसने वाले बच्चे अच्छे बुद्धि में रहते हैं, तनाव से राहत मिलती है, अच्छी नींद आती है, जीवन बढ़ता है, दर्द से छुटकारा मिलता है, इम्यून सिस्टम भी सुधरता है, हंसने से टेंशन और डिप्रेशन तनाव कम होता है, यह नेचुरल पेन किलर भी काम करता है। उसमें पाया गया है कि 10% अधिक दर्द का सामना भी कर सकते हैं। हंसी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, रक्त संचार बढ़ाता है और पाचन शक्ति भी बढ़ाती है। जोरदार हंसी से कसरत का काम भी करती है, जैसा मांसपेशियों की, छाती, फेफड़े, दिल की भी अच्छी कसरत होती है। शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, उसमें ज्यादा एंटीबॉडी डेवलप होती है और ब्लड सेल्स की

0: पीढ़ी भी बढ़ती है। खूबसूरत चेहरा पाने के लिए यह एक अच्छा व्यायाम है। हंसी से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हंसी से सकारात्मक सोच का भी विकास होता है, हंसने से हमारे मूड में तेजी से बदलाव आता है और हमारे आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी आती है। हंसने से न केवल हम खुश होते हैं बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी हम खुशनुमा बना देते हैं। इसमें रिश्ते भी सुधर जाते हैं। शोध के अनुसार हंसने वाले लोगों में डायबिटीज का स्तर भी कम हो जाता है, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद है। मुस्कुराहट से चेहरे की दर्जनों नसों का व्यायाम भी हो जाता है। लगातार मुस्कुराते रहने चेहरे पर झुर्रियां भी नहीं पड़ती हैं। तो आइए हम सब संकल्प करें कि हम हंसेंगे, जरूर हंसेंगे तथा दूसरों को भी हंसाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। शुक्रिया, आपको ये अच्छा लगा और फायदेमंद होगा ये उम्मीद रखता हूँ। नमस्कार, मैं दीपक केंकरे।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
3: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पाहू ऐकलं का? हो आमचा रेडिओ पुणेरी, हो आमचा रेडिओ पुणेरी.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विथ ब्रह्मकुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: बीइंग ब्लिस में आपका स्वागत है.
2: थैंक यू.
1: ये जो बात हो रही थी शराब की, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, अपनी थॉट्स से ही हमें शराब और वरदान मिलता है, जो लास्ट टाइम आपसे आपकी बात हो रही थी. तो मेरी डिस्कशन हो रही थी एक पुलिस मैन से, उससे मतलब काफी सीनियर पोस्ट, कुछ पिक्चर के बारे में बात करनी थी. तो वो आए मुझसे मिलने, तो मुझसे कहने लगे मैं वापस जेल जा रहा हूं. तो मैंने कहा आप जेल में क्यों है? बोले मैं पेरोल पे आया हूं. तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने अंडरवर्ल्ड के लोगों को उस एरिया में मारा था कि मुझ पर कुछ फ्रेम हो गया, कि गलत मार दिया, जानबूझ के मार दिया, कि आपने प्लांट किया इस आदमी को और फ्रेमिंग की, तो अभी मैं केस लड़ रहा हूं कोर्ट में. तो उन्होंने बातचीत करते करते बोले पता नहीं कौन देवी देवता नाराज है, पता नहीं मुझे किसका श्राप लगा. तो मैंने बड़ी एक थॉट आई आपकी बात करने के, आपसे बात करने के बाद. मैंने उनसे कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जितने लोगों को मारा एनकाउंटर में, तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो लोग आपको मारना चाहते थे? तो बोला 100%. उन्होंने तो कई पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा, उन्होंने तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मारा है. तो मैंने बोला आपको सेफ्टी किसने दी? जेल ने. तो आप जेल को शराब समझोगे या जेल में आप सिक्योर्ड हैं? मैंने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी, सेफ्टी दी, तो आज आप जिंदा हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ आज मेरे घर आए हैं.
2: लेकिन इसमें भी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जो आपने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी,
1: जिन्होंने भाई उनकी लैंग्वेज में कहा ना,
2: नहीं क्योंकि ये लैंग्वेज को ही चेक करना है, ये लैंग्वेज को ही अब चेक करना है. कहीं एक बार हम कहते हैं देवी देवताओं ने हमें श्राप दिया, फिर अगर उसी बात को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी जैसे निकल कर आई कि आपके साथ जो हुआ वो एक्चुअली आपके लिए यूजफुल था, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, आपकी लाइफ इतनी सुंदर, मतलब ठीक है आप घर से अलग हैं लेकिन प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं, अपने परिवार के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट में हैं और यहां से भी रिलीज होकर सब ठीक हो जाएगा. लेकिन ये भी क्यों हुआ? अब इसमें भी अगर हम कह दें क्योंकि देवी देवताएं हमारे से खुश हैं या भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया, तो एक में एक रूल और दूसरे में दूसरे रूल नहीं यूज हो पाएगा. जो हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, और सिर्फ इस जीवन में नहीं अनेक जन्मों में, तो हमने श्रेष्ठ कर्म भी किए, कुछ थोड़े से दूसरे कर्म भी किए, ये एक कॉम्बिनेशन की तरह हमेशा हमारे सामने आएंगे. इट विल नेवर बी, लाइफ विल नेवर बी ब्लैक एंड व्हाइट कि अभी सारे अच्छे वाले कर्मों का फल है, अभी ये अच्छे कर्मों का फल साइड पे हुआ, अभी ये सारे मेरे गलत कर्मों का फल आ रहा है. नहीं, इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस. एंड इसीलिए आप देखो

0: की है हमारे लिए। अच्छा, कोई किसी के आने से कुछ अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। बच्चा पैदा हुआ, कुछ डिफरेंट अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। नहीं, मेरे श्रेष्ठ कर्म भी थे। मेरे श्रेष्ठ कर्म नहीं हो तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। किसी और के श्रेष्ठ कर्म की वजह से मेरे साथ अच्छा हो, ये नहीं हो सकता।
1: अगर मेरा बच्चा जो अभी पैदा होने वाला या हो गया, वो भी अपने कर्म लेके तो आया ना, तो उसके कर्म भी तो मुझे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, मुझ पर असर करेंगे ना।
0: उसके कर्म उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे।
1: उसको जो दुआएं लेके कैरी फॉरवर्ड करके पिछले जन्म से अच्छे अच्छे दुआएं, अच्छे अच्छे कर्म लेके आया, घर में जब वो अच्छे काम करेगा तो खुशियां फैलाएगा ना।
0: वो अच्छे कर्म लेकर ऐसी, जैसे कि हम पांच लोग एक घर में रह रहे हैं, हमारी अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, अपने कर्म है, अपने संस्कार है। अब दरवाजा खुलता है, एक सिक्स्थ मेंबर एंटर करता है, ऐसा ही है ना। एक बच्चा पैदा हुआ मतलब एक और आत्मा हमारे घर में आई, वो भी अपने संस्कार, अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आ रही है। अब सपोज ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आ रही है, सपोज कोई संत आ जाए आपके घर, संत है, महात्मा है, कोई डिवाइन सोल है, वो आपके घर आई, दिव्य संस्कार लेकर आई, श्रेष्ठ कर्म लेकर आई, वो उसके कर्म है और उसके संस्कार है। लेकिन हुआ क्या, उसकी एनर्जी फील्ड जब हमारे घर आएगी, जैसे कोई महात्मा हमारे घर आ जाए, तो वो एनर्जी फील्ड वाइब्रेट होगी, वो वाइब्रेशंस हमें भी मिलेंगी। अगर हम उन वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, मतलब उनका अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस पॉजिटिव को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, उसको लेकर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज करता हूँ, तो मेरे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे, तब मेरे भाग्य में परिवर्तन आएगा। उनके आने से सिर्फ मेरा भाग्य बदल जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य।
1: और मैं, मुझे किसी ने समझो कुंडली वाले ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत सुख लाएगी, बच्चा होगा वो बहुत सुख लाएगा, और वो नहीं लाया तो फिर मैं उनको ब्लेम करूंगा।
0: इसीलिए ना, बिकॉज
1: एक्सपेक्टेशन इतनी हैवी हो गई ना।
0: सी, प्रिडिक्शन क्या करती है, वो ऑलरेडी बताती है कि 10 साल बाद ये आने वाला है, 5 साल बाद और ये होगा, ये होगा, ये आत्मा आपके अब आपकी शादी होगी, सपोज कहा कि आपकी शादी होगी तो ऐसा होगा। शादी होगी मीन्स एक नया कार्मिक अकाउंट जो आपका पास्ट का है, वो नया वाला कार्मिक अकाउंट फिर से आपके लाइफ में आएगा। सपोज पहले पिछली बार आपका वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर था उस आत्मा के साथ, यू हैड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, आपने सपोज उस आत्मा के लिए कुछ बहुत किया था उस जन्म में। अब जैसे ही वो आत्मा आपके कॉन्टेक्ट में आएगी, क्योंकि आपने किया था, जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि जिसके साथ वो कार्मिक अकाउंट था, वो कार्मिक अकाउंट फिर से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो स्टार्ट हुआ है, वो आत्मा इंस्ट्रूमेंट बनती है आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने के लिए, लेकिन वो क्रिएशन आपकी ही है। और इसी तरह ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर हमने किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, किसी को बहुत दुख दिया था, आज उस आत्मा से शादी हो जाए, या आज वो आत्मा मेरे घर बच्चा बनकर आए, तो फिर वो वाला कार्मिक अकाउंट भी तो आ रहा है ना। सो वे क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को साइड पे रख के और बोला वो आया तो सुख आया, वो आया तो दुख आया, वो आया तो प्रॉब्लम आ गई, ये आया तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब मेरा क्या फिर उसके अंदर। इसीलिए इसको जो हमने कहा ना, इंटेंशन और अटेंशन, ये अटेंशन रखना होगा कि जीवन में होने वाली हर चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ना कि ये अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी, अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी, तो जैसे ही फिर कुछ प्रॉब्लम भी आती है, वो भी भगवान की मर्जी।
1: क्रिकेट जब चलता रहता है, अगर वाइफ और मैं देखते तो मैं बोलता हूँ अभी 0 पे आउट हो जाए, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, क्या क्या आप बातें करते हो, अभी देखो आउट हो जाएगा, प्लीज मत बोलो, आप मत बोलो। मेरे यहाँ बोलने से वो लंदन में खेल रहा है।
0: बट फिर इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है ना। अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे चलने से और ये सब बातें बोलने से, फिर ऐसे बोली हुई बातें जीवन की हर चीज में भी वही हो गई। सपोज बच्चा निकला घर से कुछ करने के लिए अपने काम पर, सपोज आपने निकलने से पहले बोल दिया मुझे डाउट है आज ये काम ठीक होगा, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि ये तुम्हें ये वाली मीटिंग के लिए इस तरह से नहीं जाओ,

0: ये डील तुम्हारे लिए ठीक, लेट्स से, एंड बहुत अच्छे इंटेंशन ना, ऐसे कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, बहुत अच्छे इंटेंशन, मुझे नहीं लगता कि आपको ये डील करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी. गुड एडवाइस, प्योर इंटेंशन सेड विद द राइट एनर्जी. लेट्स से एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, सब परफेक्ट था. अब बच्चा गया मीटिंग में, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इट डिडंट वर्क आउट, वापस आए कहेंगे सुबह जा रहा था ना, आपने बोला ना ये काम नहीं होगा, देखो नहीं हुआ. एंड इमिजिएटली द ब्लेम विल गो समवेयर एल्स. एंड तब सारा दिन एक दूसरे को बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, सब अच्छा बोलो, राइट, सब अच्छा सोचो, वो भी राइट, लेकिन वो तब तक नहीं वर्क करेगा जब तक जिसका वो कर्म और जिसका भाग्य है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लियर नहीं होगा.
1: बोलने वाला भी तो चेंज कर सकता है ना, जो आपके लिए भला है वो होगा, जो अच्छा है होगा, आपके लिए अच्छा है तो आपके फेवर में होगा, अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं होगा.
0: जो बोल रहा है वो तो अपने बोल पर ध्यान रख सकता है, वो उसका पार्ट है, इम्पोर्टेंट है जो ले रहा है उस बात को, उसको रियलाइज करना होगा कि किसी के बोलने से, किसी के सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के भी बोलने से या सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है. कोई संत आत्मा महात्मा भी मुझे ब्लेस कर देना कि ये आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो, मेरा ये काम हो जाए, काम हो जाएगा, हाँ वो ब्लेसिंग देंगे,
1: भला होगा,
0: नहीं जो भी, यू नो, बिकॉज आजकल बहुत सारा कुछ है कि इनके पास जाओ प्लीज मेरा ये काम हो जाए, उनके पास जाओ प्लीज, एंड वो बस इतना बोल भी देंगे अगर कि हाँ आपका बच्चा होगा या आपका ये काम होगा, अगले साल तक आपका बेटा होगा, बोल दिया, जिसने बोला उसने एक थॉट क्रिएट की, एंड पावरफुल आत्मा है तो उनकी थॉट बहुत पावरफुल
1: मैनिफेस्ट होगी.
0: नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगी.
1: आपकी पावरफुल थॉट मेरी थॉट को चेंज कर सकती है और मेरी थॉट फिर मैनिफेस्ट हो सकती है ना?
0: उसके लिए आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा. लेकिन मैं आपके लिए, नहीं पावर नहीं आ गई,
1: मैं बोलता हूँ कि शिवानी बहन ने मुझे बोल दिया तो मुझे उनकी पावरफुल थॉट मुझे मिली और मेरी थॉट कॉन्फिडेंस से पावरफुल होगी कि अब हो गई होगा.
0: होगा तब जब कंप्लीट वो थॉट अब आपकी है. हाँ? और पावर वो आपकी, सी बहुत
1: इम्पोर्टेंट दिया ना,
0: नहीं इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होगा मेरे आसपास के सबकी पावर भी कुछ नहीं कर सकेगी. अगर एक घर में एक बच्चा कमजोर है इमोशनली, नेगेटिव सोचता है, उस परिवार के सारे लोग भी उसके लिए अच्छा सोच ले, सारे संत महात्माएं भी उसके लिए अच्छा सोच ले, तो भी भाग्य नहीं बदलेगा. ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग उसके आसपास बैठकर सोचें और बोलें इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा, ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होगा. इट विल नॉट हैपन जब तक वो आत्मा जो वो कर्म जिसका है उसका भाग्य नहीं बदलेगा, जब तक वो अपने कर्म को नहीं बदलेगी. ये पावर
1: थॉट उसके कर्म को नहीं, उसकी थॉट को नहीं बदलती,
0: थॉट को नहीं बदलेगी. अगेन वी सॉ वो थॉट थॉट को बदलेगी, मतलब पावर किसको दे दी मैंने, अगर मैं बोलूं आप मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करो मेरा काम हो जाता है.
1: ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं अपने बच्चे को समझाऊं बेटा ऐसा सोचो, आपके ऐसे सोचने से, अच्छा सोचने से आपका ये सब बदल जाएगा, ये सब बातों में मत जाओ, तो मैंने एक पावर दिया ना,
0: आपने एक पावरफुल थॉट दी,
1: तो उसको अपने मेरे थॉट से उसके थॉट, उसने चिंतन किया, फिर उसकी थॉट में चेंजेस आए, जो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है यही तो कर रहा है.
0: तो वही जैसे आपने कहा उसकी थॉट में चेंजेस आ गए,
1: वही तो कह रहा हूँ मैं.
0: तो फिर किया किसने सारा काम?
1: उसी ने किया, लेकिन मैंने ट्रिगर दिया, जैसे आपने बोले जिग्सॉ पजल है,
0: राइट,
1: सिर्फ भगवान थोड़ा सा बोला इशारा, बाप ने बोला ए इधर कर दे या बी का मुंह उधर कर दे,
0: राइट,
1: इतना ही बोला ना.
0: बिल्कुल. और लेकिन जब उसने बोला क्या मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया? लेट से साइड पे पेरेंट बैठ कर बोले ऐसे कर दे, मैं बोलू मैंने ऐसे करना है, जब तक मैं रिसीव नहीं करूं तो सारे देने वाले भी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं.
1: वो तो है,
0: इसीलिए अपना एंटीना रिसीविंग पावर, सी भगवान से भी मांग रहे हैं, महात्माओं से भी मांग रहे हैं, बड़ों से भी मांग रहे हैं, सबसे लेना बहुत अच्छा है, लेकिन लेने वाले को लेने का पात्र भी बनना पड़ेगा ना, सिर्फ मांगने से नहीं हो जाएगा.

0: इसे कहते हैं पात्र। देने वाला है वो पात्र और लेने वाला पात्र, सब दे रहे हैं लेकिन लेने वाला पात्र ही तैयार नहीं। तैयार मीन्स वो चाहता है कि मुझे सबकी दुआएं मिले, लेकिन खुद के थॉट्स को नहीं चेंज करेगा तो वो लेने वाले पात्र ने रिसीव नहीं किया। तो इसलिए सारा दिन में ये इक्वेशंस अगर क्लियर होंगी, मेरा कार्मिक अकाउंट मेरी डेस्टिनी, मेरे थॉट्स मेरी डेस्टिनी, सबकी गुड विशेस मुझे एक एनर्जी दे रही हैं, मैं इस एनर्जी को लू और अपनी थॉट्स को चेंज करूं, फाइनली जो मेरे साथ होगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आएगी। जो मेरे साथ होगा बहुत अच्छा भी, वो भी मेरे कर्म से, और कुछ अगर थोड़ा या नहीं करना वो पावर मेरे पास थी। तो ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, लेट मी ओपन माई माइंड एंड वो सारी ब्लेसिंग्स लू और अपनी थॉट्स को चेंज करूं। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, अपने एंटीना को बंद कर दो, नहीं कंज्यूम करनी किसी की एनर्जी, अपनी एक थॉट को ले लो और फोकस करके अपने कार्य पे चलो। दूसरों के बारे में सोचना, चिंतन करना जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, मैं अपने एंटीना को खोल देता हूं। अब इन सारी चीजों में जो रिसीव करने वाला है, मतलब सपोज मैं, मेरी अपनी स्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्थिति सिर्फ उस बात में नहीं, ओवरऑल स्थिति आपकी। सपोज आप कोई काम के लिए जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैंने आपके लिए नेगेटिव सोच दिया, पता नहीं कैसे होगा इनका काम, या आई होप इनकी ये डील आज, इतना भी गंदा सोच लिया कि इनको ये डील ना मिले आज। अब आपकी एनर्जी फील्ड कैसी है, ओवरऑल एनर्जी फील्ड, नॉट अभी की मन की स्थिति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज आप इस डील को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये तो होना ही है, मतलब ये तो दिस इज द बेस्ट फॉर मी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी एनर्जी फील्ड, जनरली आपका पैटर्न एनर्जी फील्ड वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत कई भी नफरत भी है किसी के लिए, हर्ट भी है, मतलब इफ द एनर्जी फील्ड इज मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। लेकिन इस बात को लेकर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव थॉट आप पर प्रभाव डालेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑरा क्या है। अब अगर आपको चाहिए कि मेरी ये नेगेटिव थॉट आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, तो आपको सिर्फ इस बात में पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी फील्ड को स्ट्रांग करना है, तब आपके ऊपर आसपास की वाइब्रेशंस, जिनको आप लेना चाहेंगे उनको आप लेंगे, जिनको नहीं लेना चाहेंगे उनको आप स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि इट विल द पावर विल बी विद यू। अगर इसीलिए क्यों स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हेल्प करता है, जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अच्छा सोचे, श्रेष्ठ कर्म करे, दुआएं सारा दिन उस आत्मा को मिले, ऐसी आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील, ओवरऑल हेल्थ, नॉट अभी 5 मिनट की हेल्थ, उस आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील्ड जब पॉजिटिव और पावरफुल होगी, तब फिर उस आत्मा के लिए अगर कोई बुरी नजर, कोई गलत थॉट, कोई ईर्ष्या, कोई कुछ बात, तो वो उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर हमारी ओवरऑल एनर्जी फील्ड पावरफुल है, मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं, तब बाहर का परिवर्तन, बाहर का प्रभाव, यहां तक कि ग्रहों का प्रभाव भी, हम कहते हैं ना ग्रह इस टाइम ऐसे है, ग्रह मतलब वो ग्रह मेरे किसी संस्कार पर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अगर मैंने अपने संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर दिया है तो फिर इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो फोकस सेट करें, फोकस इज अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन करना, जो कहते हैं ना डिटॉक्सिफाई, तो सारा जो पकड़ा हुआ है नेगेटिव है इसको क्लीन करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, विल बिकम फियरलेस, हमें फिर किसी से नहीं डरना है।
1: तो ये फियरलेस कैसे बनना है, ओवरऑल एनर्जी को कैसे सुधारना है और कैसे इम्प्रूव करना है, ये अगले एपिसोड में आपसे बात करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू। नमस्कार।
2: एवरीथिंग गुड दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ एंड ऑल्सो थिंग्स विच डोंट सीम राइट, All of them are a consequence of our karma.

0: response to the challenge now will be our right karma in the present, and this reduces the suffering. God is the ocean of knowledge, love, and power. Connection with God gives us the knowledge and power to do the right karma in the present and to also face the return of past karma in the right way now. If we have an overall positive energy field created because of our right thinking patterns, then the soul is powerful. A powerful soul will be able to absorb the blessings created for it and reject the negative thoughts created for it.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: माधवी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई, तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी।

0: अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर राइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेजें?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लोगों का सफर आरजी सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। जी हाँ, आज के इस खाबो का सफर को सजाने के लिए हमारे साथ पूजा है, जिनको हम पहले भी सुन चुके हैं। और पूजा ने आज 1950s एंड 60s की बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन, वो भी डी अक्षर से शुरू होने वाले सारे गाने उनके पास है। तो हम एक एक करके उनसे गाने सुनेंगे, डी अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने। जी हाँ, आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा और यादें रह जाएगी कि आज का जो एपिसोड है लाजवाब एपिसोड था, और इसमें गाने जो थे वो कलेक्शन जो डी अक्षर वाला था वो भी लाजवाब। जैसे कि दिल अपना प्रीत पराई, दिल बेकरार सा है, धीरे धीरे मचल के आ, दिल जो न कह सके, ऐसे खूबसूरत गाने जो है पूजा के पास कलेक्शन में है और मैं एक एक करके उनसे सुनना चाहूंगा। पूजा, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके लिए चार लाइनें। दोस्ती जिंदगी में रोशनी कर देती है, हर खुशी को दोगुनी कर देती है, कभी झूम के बरसती है बंजर दिल पे, कभी अमावस को चांदनी कर देती है। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। मैं हूं आपका हम सफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पूजा से जानते हैं आज का कलेक्शन में सबसे पहला कौन सा गीत वो सुनाने वाली है। पूजा, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम।
2: नमस्ते, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे फिर से अपने शो में इन्वाइट किया। तो आज का जो मेरा पहला गाना है वो है धीरे से आजा अखियन में निधिया। इस गाने में अखियन में निधिया मतलब ये लोरी से रिलेटेड सॉन्ग है। इसके लिए मैं अपने फीलिंग्स बताती हूँ। इस गाने में

महबूब के लिए गाती है और बोल, जैसे कि मैं एक शायरी बोलती हूँ इसके लिए। दिल की बात होठों तक आते आते रह गई, दिल की बात होठों तक आते आते रह गई, कुछ तो था तेरी निगाहों में जो हमसे कहते कहते।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद दिलाया है और राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा हुआ ये गीत, लता मंगेशकर का गाया, श्री रामचंद्र का संगीत और बहुत ही प्यारा सा फिल्म अलबेला 1951 का ये खूबसूरत नगमा अभी हमारे श्रोताओं के लिए कार्यक्रम के शुरुआत में।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 एफएम पर। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा। ओल्ड मेलोडीज का आप एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हारी खुशी से ही नहीं, गम से भी रिश्ता है हमारा। ये जो तुम्हारी जिंदगी है वो एक हिस्सा है हमारा। ए दोस्त, तुमसे लफ्जों का ही नहीं, रूह का भी रिश्ता है हमारा। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर। चलिए पूजा, फिर से एक बार आपका स्वागत है। गाना कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
1: तो सर, आगे का जो मेरा नेक्स्ट गाना है वो है दिल अपना प्रीत पराई। दिल तो हमेशा अपना होता है, पर हमेशा हम प्रीत जो है वो हमेशा दूसरे से करते हैं। जैसे कि चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। इसीलिए दिल तो खुद लगा लेते हैं, पर प्रीत हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है जीना।

पिक्चराइज किया गया था ये फिल्म, और खास मीना कुमारी उनके साथ थी। इनकी जोड़ी जो है इस फिल्म में बड़ा ही लोगों को पसंद आया था। और जिस गीत का जिक्र आपने किया, इसे शैलेंद्र साहब ने लिखा था, लता मंगेशकर ने गाया था, शंकर जयकिशन साहब ने इसे संगीत से संवारा था। दिल अपना और प्रीत पराया 1960 का ये टाइटल सॉन्ग अब आपके लिए पूजा की ओर से। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर भी कोई रिश्ता खास नहीं होता। आपकी दोस्ती ऐसी है कि दूरियों का एहसास नहीं होता। आप सुने हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर। पूजा, अब कौन सा एक गाना आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
2: अब जो मेरा गाना है वो है दिल एक मंदिर। इस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया है, जिनकी मैं बहुत ही श्रद्धा और दिल से पूजा करती हूँ। वो मेरे लिए एक मंदिर में रखे भगवान के समान है। मैं हमेशा सोचती हूँ उनसे थोड़ा बहुत उनके जैसा गा सकूँ। वो मेरे लिए बहुत ही

है, जैसे कि आईना आज फिर रिश्वत लेता पकड़ा गया, दिल में दर्द था और चेहरा हंसता हुआ पकड़ा गया। इसी गाने में दिल एक मंदिर, हम इसकी तुलना माँ से भी कर सकते हैं। सच्चा प्यार करना है तो माँ से करो, इस मोहब्बत में कभी बेवफाई नहीं होती। जो हमारी माँ होती हैं, आप उन्हें भी भगवान का दर्जा दे सकते हैं। उनका जो दिल होता है एक मंदिर की तरह पवित्र होता है। तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगी, पर जो माँ होती है वो बहुत बड़ी होती है, और कुछ नहीं।

ओके दिल एक मंदिर है टाइटल सॉन्ग आपने सुनाया, बहुत ही प्यारा सा गीत है और आपने भी अच्छा गुनगुनाया इसे। हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुरी ने गाया था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत दिल एक मंदिर 1963 का हिट फिल्म और हिट गाना अभी आपके लिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बुंदी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। महफिल में न सही तन्हाई में तो याद करोगे, कभी तो उस खुदा से फरियाद करोगे। न मिला है न मिलेगा हमारे जैसा दोस्त, कभी तो इस बात पे नाज करोगे। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। वहां पे खूबसूरत गाना का आपने आनंद उठाया, दिल एक मंदिर है। ये गाना अपने आप आपके दिल के दस्तक को छू जाता है। इसका जो पहले वाला लाइन है वही आपको बहुत आकर्षित करता है और पूरा गाना आपके दिल और जहन में जब भी सुनेंगे आप दिल से सुनते रह जाओगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, आप कौन सा गीत आपके पिटारे में है?
1: अब जो मेरा गाना है सर वो है दिल जलता है तो जलने दे। दिल जलता है, दिल तो तभी जलता है जब किसी की याद आती है। तो इसे मैं छोटे से ही शब्दों में बताती हूँ। मेरे पास इसके लिए बहुत ही अच्छी शायरी है, आप लोग समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक फूल का दर्द उसकी झुकी डाली समझती है, बाग की बात बाग का माली ही समझता है। ये किस तरह की रात बनाई है दुनिया वालों ने, दिए का दिल जलता है और लोग रोशनी समझते हैं। दिल जलता है तो जलने दे, दिल

0: दिल जलता है तो जलने दे, दिल जलता है तो जलने दे।
1: अरे ये तो खतरनाक गाना आपने सुनाया, दिल जलता है तो जलने दो। चलिए इस गाने का भी आनंद उठाते हैं। ये सीतापुरी साहब का लिखा हुआ गीत है, मुकेश जी ने गाया था और अनिल विश्वास ने इसे संगीत से संवारा था। और 1945 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पहली नजर। तो आइए इस गीत का लुत्फ उठाते हैं। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: एक हसीन पल की जरूरत है हमें, बीते हुए कल की जरूरत है हमें। सारा जमाना रूठ गया हमसे, जो कभी न रूठे ऐसे दोस्त की जरूरत है हमें। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खबरों का सफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूजा, बहुत ही प्यारी प्यारी गीत का कलेक्शन आपके पास है, अब कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को आप सुनाने वाले हैं?
2: जो मेरा गाना है वो है दिल बेकरार सा है। तो मैं इस गाने की फीलिंग्स बताते हुए कहूंगी कि जो हमारा दिल होता है सब में से किसी एक के लिए हमेशा बेकरार होता है, और हमेशा ये सोचता है हमारा दिल कि जिनके लिए हमारा दिल बेकरार है वो हमेशा हमारे सामने हो, पर जब वो हमारे सामने आते हैं तो धड़कनें बढ़ जाती है और कुछ बोला नहीं जाता। और दिल तो बेकरार होता ही है, साथ में मन भी बेकरार हो जाता है। जैसे ना पूछ दिल की हकीकत मगर ये कहता है कि वो बेकरार रहे जिसने बेकरार किया।

ओके, बहुत ही प्यारा सा गीत है, दिल बेकरार सा है। जी हाँ, ये मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा लता जी की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म इशारा 1964 का ये गाना है। तो आइए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर, खाबो का सफर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो बूंदी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। जी हाँ पूजा, अब कौन सा एक गाना आप सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को?
2: जब कोई ख्याल दिल से टकराता है, दिल ना चाहकर भी खामोश रह जाता है। कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है, कोई बिना कुछ कहे भी सब कुछ बोल जाता है।

ओके पूजा, बहुत ही प्यारा सा गीत, ये भी आपके कलेक्शन में है, मुझे बड़ी खुशी हो रहा है। 1966 का ये बहुत ही प्यारा सा मूवी था अनुपमा, नाम भी सुनकर लोगों ने इसे बहुत बार देखा और जैसा नाम था वैसे ही इस फिल्म को बनाया गया था। और जो गीत आपने कहा धीरे धीरे मचल, ये जो गाना है कैफी आजमी ने लिखा था और लता मंगेशकर जी ने इसे गाया था, हेमंत दा ने इसे संगीत से सवारा था। आप सुना है रेडियो पुणे की आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आया है, इसलिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आप सुना रहे हैं। अब आगे चलिए, कौन सा गीत आपके पिटारे में है जरा बताइए हमें।
1: जैसे कि फर्क बहुत है तेरी याद में और तेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालातों से। कहते हैं जिनके दिल बहुत अच्छे होते हैं अक्सर उन्हीं की किस्मत खराब होती है। जैसे कि हम दिल तो लगा लेते हैं पर जब रिश्ता टूटता है तो हमें उनकी बहुत याद आती है, तो उसमें उन्हीं का जिक्र करते हुए आशा जी ने गाया है ये गाना कि दिल धड़कने का सबक याद आया। सर अब जो मेरा गाना है उस गाने की बोल है दिल धड़कने का सबक याद आया। इस गाने को आशा भोसले जी ने अपनी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में गाया है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा सा उनके जैसा गा लूं। इसमें उन्होंने दिल की धड़कने की बात की है, उन्होंने ये बताया है, अपनी फीलिंग जताई है इस गाने में कि जब दिल धड़कता है किसी के लिए और वो हमसे रूठ जाता है या फिर रिश्ता टूट जाता है तो हमें उसकी कितनी याद आती है और फिर हमारे लाइफ में वो एक सबक बन जाता है, तो उसी को लेकर उन्होंने ये गाना गाया है। दिल धड़कने

ओके, दिल धड़कने का सबब याद आ गया। नाजीर काजमी का ये लिखा हुआ गीत है, आशा भोसले जी ने इसे गाया था, गुलाम अली साहब ने इसे संगीत से संवारा था और ये फिल्म था मिर्जा ये गजल। आशा भोसले का ये खूबसूरत नगमा अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूं बहुत ही प्यारा सा रेडियो प्रोग्राम जिसका नाम आप जानते हैं खाबों का सफर। दोस्ती की जुदाई का गम करना, दोस्ती की जुदाई का गम करना, दूर रह के भी दोस्ती कम मत करना। अगर मिलाए जिंदगी किसी मोड़ पे तो हमें देखकर आंखें बंद मत करना। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। आइए आगे बढ़ते हैं। पूजा, अब आपके पिटारे में कौन सा एक नया गीत है?
2: अब जो आगे मेरा गाना है वो है दिल जो भी कहेगा। ये गाना भी बहुत ही अच्छा है और दिल के बारे में बोला गया कि हमारा जो दिल होता है वो कितना सच्चा होता है, हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते पे जाए, दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिल जो भी कहता है सच्चे दिल से कहता है और हर हालात में दिल हमेशा हमारा साथ देता है, चाहे कुछ भी हो जाए हर परिस्थिति में। जैसे कि मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, तूने देखा ही नहीं, आंखों में कुछ और भी है। गुलजार जी ने बहुत ही अच्छे से विचार बोले हैं। ये जो पंक्ति थी गुलजार जी की थी। और आगे थोड़ा सा और बोल देती हूँ। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे तो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी समझ सके।

0: तो है।
1: ओके, साहिर निदानवी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना है दिल जो भी कहेगा, मुकेश जी का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत दिल ही तो है, 1963 का ये पॉपुलर गाना आपके लिए। अभी खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: कुछ रिश्ते खुदा बनाते हैं, कुछ रिश्ते लोग बनाते हैं, कुछ लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ता निभाते हैं, शायद वही दोस्त कहलाते हैं। पूजा आपके लिए चार लाइनें थी, आप सुना है रेडियो हुनरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। मुझे लगता है कि हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हैं और एक आखिरी गाना पूजा आपके पिटारे में कौन सा है बताइए।
1: सर अब जो मेरा गाना है वो है दिल जो ना कह सके। मतलब कभी कभी ऐसा होता है हमारे दिल में कुछ और होता है, हम बताना चाहते हैं किसी और को, पर हम कई बार ऐसा होता है कि हम कह नहीं पाते, जैसे कि अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि बोलते वक्त नर्वस हो जाता है, या फिर अगर दिल की बात हो रही है फिर तो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर हम जिससे प्यार करते हैं अगर वो हमारे सामने हो तो फिर तो बोल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि हम तो पागल हैं, शौके शायरी के नाम पर ही दिल की बात कह जाते हैं। मतलब शायरी या लफ्जों में हम अपने दिल की बात तो कह जाते हैं, लेकिन अगर उसे जुबान पे लानी होती है तो हम नहीं कह पाते। जैसे कि कई इंसान गीता पर हाथ रख कर भी सच नहीं कह पाते। अगर बचपन के नजरिए से देखा जाए तो बचपन के वो दिन भी क्या खूब थे, ना दोस्ती का मतलब पता था और ना मतलब की दोस्ती थी। मतलब आजकल तो दोस्ती में भी मतलब ढूंढने लगे हैं लोग, दोस्ती सिर्फ तभी करते हैं जब कुछ मतलब हो, पर ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं जो अच्छे दोस्त हैं।

ओके दिन जो न कह सके। मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ ये खूबसूरत नगमा है, लता मंगेशकर का गाया हुआ है और रोशन साहब ने इसे संगीत से संवारा है। फिल्म थी भीगी रात 1965 का ये खूबसूरत नगमा आपके लिए। एंड पूजा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने जो कलेक्शन हमें सुनाया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं का दिल भी खुश हो गया होगा। तो चलिए चार लाइनें आपके लिए। हर याद में उसकी याद होती है, मेरी आंखों को उसकी तलाश होती है, कितनी खूबसूरत चीज है दोस्ती, दिल धड़कने में भी उसकी आवाज होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत और इसी के साथ हम चाहेंगे इजाजत, मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक बार फिर से पूजा।

0: क्यों? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर इसी तरह कुछ अच्छे अच्छे कलेक्शन को लेकर आपके साथ होंगे और सफर को खुशनुमा बनाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: थैंक यू सर।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो

0: प्रिंसिपल के बेड के सामने मेरा पैर लग गया टेबल से, तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखी, उठा, मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूँ? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी, और अगर हम क्षमा कर देंगे तो वो रियलाइज कैसे करेंगे, और अगर वो रियलाइज नहीं करेंगे वो उसी गलती को दोबारा करेंगे। ये सब चीजें सोचकर हम उस बात को, उस घाव को, उस दर्द को पकड़ते रहते हैं। जितना हम किसी भी घाव को पकड़ के रखेंगे और हम कहेंगे मैं इसको ठीक नहीं करने वाला हूं, सपोज पांव पे चोट लगी, दीक्षित जी ने हथौड़ा लिया, जोर से मारा, चोट लग गई, फिजिकल घाव लग गया, और मैंने कहा इस घाव को मैं जीवन भर भरने नहीं दूंगे, ये कहा, तो फिर उस घाव के पांव को लेकर चलते गए जीवन में। कई और लोग मिलेंगे जो हथौड़ा मारेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी, जितनी और जोर से लगेगी दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दे या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज को भरना है ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई, चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है, लेकिन तुरंत क्या करेंगे?

0: सोचकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है, क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है, अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहां कुछ गिरा, यहां कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीजें गिरती गई गिरती गई गिरती गई, लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप सभी विद्यार्थी मित्र बिल्कुल अच्छे स्वस्थ और हेल्दी वेल्दी हैप्पी होंगे और कुशल मंगल के साथ साथ। आइए कार्यक्रम के आज जो है टाइटल बताऊं तो बड़ा अखुश हो जाएंगे आप। आज हम लोग बातें करेंगे खास पायलट बनने का सपना। जी हाँ, आपका आज बात करेंगे पायलट का करियर। जी हाँ, पायलट का करियर एक रोमांचक और विशेष सम्मान और उच्च वेतन वाला होगा। इसके लिए विशेष शिक्षा, कौशल और अनुशासन की आवश्यकता होती है। भारत में पायलट की औसत सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख प्रति महीने में शुरू हो गई है। प्रति महीने से शुरू होकर 7 से 10 लाख तक पहुंच सकती है और ऐसा सुंदर वेतन पाने के लिए, ऐसा सम्मान पाने के लिए कड़ी मेहनत तो लगेगी। तो आइए आज हम इसके लिए शिक्षा, कौशल, वेतन और सफल पायलटों की कहानियां आपको सुनाने वाले हैं। तो दिल ताम के बैठिए और कागज कलम साथ में रखिए ताकि आपको कोई बात अच्छी लगी या किसी की कहानी अच्छी लगी या कोई स्किल जो हम बता रहे हैं वो अच्छा लगा तो आप नोट करके उस पर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और अपना करियर पायलट बनने का सपना को पूरा करें, है ना। साथियों चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत से और आशा करूंगा आप बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को विधिवत और सुंदर तरीके से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट करेंगे। इन्हीं शुभ आशा के साथ लीजिए आपके नाम ये गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज का हमारा विशेष जीवन कौशल इस कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं पायलट बनने का सपना। अगर मैं बात करूं आसमान में उड़ते जहाज को देखकर हर किसी का मन कहता है कि काश मैं भी इसे चला पाता। पायलट बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक सपना है, अनुशासन, मेहनत और जुनून का संगम है। आज हम बात करेंगे पायलट बनने के सफर की, शिक्षा से लेकर कौशल तक, वेतन से लेकर सफलता की कहानियों तक। साथियों, उड़ान भरने वाले पायलट को देखकर हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन इतना आसान है भी नहीं। लेकिन अगर आप जुनून और मेहनत और अनुशासन का पालन करेंगे तो ये सपना साकार भी हो सकता है। क्योंकि पायलट बनने के लिए मेन है प्रेजेंस ऑफ माइंड और आप पूर्व तैयारी और जब नीचे उतरते हैं उसके बाद की तैयारी, सारी चीजें इकट्ठी आपको जो है ध्यान में रखनी पड़ती है। और बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं उसमें आपकी कम्युनिकेशन, टेक्निकल संबंधित चीजों का बहुत जरूरी है। इन

करता गया। जब हम इन सभी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस के अनुसार अनुशासन में लाते हैं तो ये चीजें संभव हो पाती है आसानी से उड़ान भरने, यात्रियों को ले जाने और वापस ले आने की। तो आइए आज के इस पूरे एपिसोड में पायलट बनने के लिए किन किन बातों का आवश्यक है वो बातें हम समझेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा और परीक्षण की बात करें, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 12वीं पास होना जरूरी है। गणित और भौतिकी के साथ विज्ञान स्ट्रीम होना बहुत ही बेहतर माना गया है। कंप्यूटर और अंग्रेजी का ज्ञान, क्योंकि सभी तकनीकी और संचार अंग्रेजी में होते हैं, इसीलिए आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए और साथ में अंग्रेजी का ज्ञान भी और अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए। फ्लाइंग स्कूल DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मान्यता प्राप्त संस्था से CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस प्राप्त करना होगा। परीक्षण अवधि लगभग 18 से 24 महीने की होती है। लागत की बात करें, इसमें एजुकेशन या इन सारी चीजों की जो खर्च है पढ़ाई और टेक्निक सीखने का 30 से 40 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है। अंदाजन है कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं समय सीमा को देखते हुए। तो ये रहा कुछ खास बातें शिक्षण और परीक्षण की बातें आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। आइए हम लोग अब बात करते हैं स्किल्स के बारे में, कौशल के बारे में। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर शिक्षा और टेक्निकल चीजों के साथ साथ आवश्यक स्किल होना बहुत जरूरी, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी बात करते हैं। तेज निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि तेज निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड का खेल होता है। तो आपने डिसीजन सही लिया तो आप बहुत लोगों की जान और माल की बचत कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए तेज निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर एज ए पायलट होना ही चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि उड़ान के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है, तकनीकी खराबी आ सकती है या यात्रियों की स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे समय में पायलट को सेकंडों में सही निर्णय लेना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि इंजन में समस्या आ जाए तो पायलट को तुरंत वैकल्पिक हवाई अड्डे पर उतरने का

समय पर उड़ान भरना, नियमों का पालन करना और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अगर हम देखिए, यदि मौसम खराब है तो पायलट को नियमों के अनुसार उड़ान स्थगित करनी पड़ सकती है, चाहे यात्रियों को असुविधा क्यों न हो या मुश्किल का सामना क्यों न करना पड़े। कैसे विकसित करें इस कला को, तो ट्रेनिंग के दौरान सख्त नियमों का पालन और नियमित मेडिकल चेकअप से अनुशासन की आदत बन जाती है। तीसरी बात आती है शारीरिक और मानसिक फिटनेस। अब आप सोचेंगे कि ये भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्यों जरूरी है इसके बारे में समझ लेते हैं। लंबी उड़ानों में थकान, समय का अंतर और दबाव का सामना करना पड़ता है, पायलट को हमेशा सतर्क और स्वस्थ रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 10 या 12 घंटे की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में पायलट को लगातार ध्यान केंद्रित रखना होता है। अब इस बात को कैसे विकसित करें, ये तो वह प्रैक्टिस से आएगा, है ना? कैसे विकसित करें, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ध्यान, मेडिटेशन और योग की मदद से ये संभव हो सकता है। अब बात करते हैं एक और विशेष इम्पोर्टेंट बात पर, टीम वर्क और संचार कौशल। ये क्यों जरूरी है, पायलट अकेले काम नहीं करता, उसको पायलट, केबिन क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लगातार संवाद करना होता है। उदाहरण के तौर पे टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पायलट और को पायलट के बीच तालमेल बेहद महत्वपूर्ण होता है और इन चीजों को विकसित करने के लिए हमें समूह अभ्यास, स्टिमुलेटर ट्रेनिंग और वास्तविक उड़ानों में टीम वर्क का अनुभव से ये चीजें संभव हो पाती है। आखिरी और विशेष महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं तो तकनीकी ज्ञान और नेविगेशन की समझ होनी चाहिए। क्यों जरूरी है, आधुनिक विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस होते हैं, पायलट को इंजन, नेविगेशन सिस्टम, मौसम रडार और ऑटो पायलट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जीपीएस और रडार सिस्टम की मदद से पायलट को सही मार्ग चुनना होता है, खासकर जब जो देखने की क्षमता कम हो जाती है, दुष्क्षमता कम होती है, दिखाई कम देता है। अब इसे भी विकसित करने के लिए लगातार तकनीकी अपडेट सीखना, नए सॉफ्टवेयर और उपकरणों पर परीक्षण लेना, तो ये पांच चीजें थी जिसके बारे में हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये पांच बातें आपके लिए, तेज निर्णय लेने की क्षमता, उच्च स्तर का अनुशासन और जिम्मेवारी, तीसरी शारीरिक और मानसिक फिटनेस, चौथा टीम और संचार कौशल, पांचवा तकनीकी ज्ञान और नेविगेशन की समझ होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कहा जाता है पायलट बनने के लिए केवल उड़ान भरना ही नहीं बल्कि तेज निर्णय क्षमता, अनुशासन, फिटनेस, टीम वर्क और तकनीकी ज्ञान का संतुलन जरूरी है। यही कौशल एक साधारण पायलट को महान पायलट बना देते हैं। तो आई समझ में बात आपके? तो चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं विशेष जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है सैलरी, वेतन कितना मिलेगा। अब देखिए, नए पायलट फर्स्ट ऑफिसर की बात करें तो शुरुआती स्तर पर आपको 1.5 से 3 लाख हर महीने वेतन मिलता है। ये वेतन एयरलाइन और अनुभव पर निर्भर करता है, कम भी ज्यादा भी हो सकता है। अनुभवी कैप्टन के लिए बताया जाता है सैलरी 7 से 10 साल के अनुभव के बाद पायलट कैप्टन बन जाता है और इस पर वेतन हो जाता है आपका 7 से 10 लाख हर महीने तक पहुंच जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर, इंटरनेशनल रूट्स पर अगर आप अपनी उड़ान भरते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वेतन और भत्ते अधिक होते हैं। औसतन 9 लाख या उससे अधिक मासिक वेतन मिलता है। साथ ही विदेशी भत्ते और अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती है, तो है ना कमाल की बात। इसके साथ ही करियर ग्रोथ पाथ का भी यहाँ पर विशेष महत्व है। पायलट का करियर एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे कि आप फर्स्ट ऑफिसर नए पायलट के रूप में अगर ज्वाइन करते हैं तो परीक्षण पूरा करने के बाद पायलट को पायलट के रूप में काम करता है, को पायलट के रूप में, और फिर बाद में पायलट बनता है। यहाँ अनुभव और उड़ान घंटे, फ्लाइंग हावर्स जमा करना जरूरी होता है।

दूसरा सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, कुछ वर्षों के अनुभव और पर्याप्त उड़ान घंटे पूरे करने के बाद पदोन्नति मिलती है और इस स्तर पर पायलट को अधिक जिम्मेवारी दी जाती है और उसको कुछ अधिक वेतन भी मिलता है। फिर तीसरी मुख्य बात है कैप्टन, मुख्य पायलट जिनको कहा जाता है। विमान की पूरी कमान कैप्टन के हाथ में होती है। यात्रियों की सुरक्षा, उड़ान का संचालन और टीम का नेतृत्व कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। ट्रेनिंग कैप्टन भी एक अलग तरह का पार्ट होता है। अनुभवी कैप्टन को ट्रेनिंग कैप्टन बनाया जाता है। वे नए पायलटों को ट्रेनिंग करते हैं और सिमुलेटर ट्रेनिंग में मार्गदर्शन भी करता है। अतिरिक्त लाभ की अगर बात करें तो यहाँ पर फ्री या डिस्काउंट एयर ट्रैवल होता है आपका। हाउसिंग और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होती है। विदेश पत्ते और बोनस भी मिलता है। प्रतिष्ठा और सम्मान भी प्राप्त हो जाता है। तो ये विशेष रूप से बातें थी जो आपसे संबंधित है। तो ये चीजें हमने आपको बताई है और भारत में ऐसे एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ तो रही है। आने वाले वर्षों में पायलटों की मांग और तेजी से बढ़ सकती है। करियर ग्राफ का रास्ता साफ है, फर्स्ट ऑफिसर से ट्रेनिंग कैप्टन तक, और हर स्तर पर लेख वेतन और जिम्मेवारी बढ़ती जाती है। तो ये रहा कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखने वाली, जो आपकी जरूरी चीजें के साथ होनी चाहिए ये जानकारी आपके लिए, इसलिए हमने ये जानकारी आपको दी। तो आशा करूंगा कि आप सभी को ये जानकारी सुनकर पायलट बनने का अपना सपना को आप तराशना शुरू कर देंगे। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहां पायलट बनने के बारे में हमने बातें की, उन बातों को मैंने आप तक पहुंचाया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कुछ और जानकारी चाहिए तो आप जरूर हमें फोन कर सकते हैं 94-14-15-14-15 इस नंबर पर, और फिर बात कर सकते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वॉन्ट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ पुनेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा आनंद लुटा आणि तुम्ही आरजे कैलास सोबत आहात। श्रोते हो, आजच्या शो मधल्या गुड मनीचे या शीर्षकाखालील पुढच्या एका रचनेकडे वळूया, जी आपल्याला पाठवलेली आहे सौ सुरेखा पघारे मॅडम यांनी नाशिक येथून। सौ सुरेखा पघारे मॅडम लिहित आहेत नाशिक येथून, असेही एकदा व्हावे मौनाचे अर्थ कळावे, असेही एकदा व्हावे मौनाचे अर्थ कळावे, शब्दा वाचून संवाद होता निस्वार्थी नाते जुळावे। वा, शब्दा वाचून संवाद होता निस्वार्थी नाते जुळावे, असेही एकदा व्हावे वेदनांना समजून घ्यावे।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने

0: आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं, जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल

0: हाँ ये तो है, याद है वो AR रहमान का गीत माँ तुझे सलाम।
1: अरे वो किसे याद नहीं रहेगा।
2: हम उसे भारत माँ के सम्मान में गाते हैं, अगर पूरी पृथ्वी को ध्यान में रख के गाएं तो सोचो सोचो।
3: अरे हाँ उसका मतलब तो और भी विशाल हो जाएगा।
4: हाँ जब कहते हैं ना यहाँ वहाँ सारा जग देख लिया है, तो मतलब यहाँ वहाँ सारा ब्रह्मांड देख लिया है इसका मतलब हो जाएगा और हमारी पृथ्वी जैसा कोई नहीं मायने निकलेगा।
5: वाह क्या कल्पना की है।
6: बातें तो बड़ी गहरी कर रहे हो, टॉपिक से हटो नहीं, काम बताओ काम जो तुम आराम से कर सकते हो जिससे माँ की या पिताजी की घर पर सेवा हो।
0: माँ की सेवा, माँ की सेवा, पापा की सेवा। हाँ अपनी चीजों का ध्यान रखकर, किताबें पेंसिल पेन सही स्थान पर रखकर ताकि वे गुमे ना।
6: बिल्कुल ठीक, घूमना है क्या, किसी भी चीज का अपने स्थान पर ना होना और क्या।
7: अपना स्कूल का काम पूरा रखकर ताकि किसी टीचर को कोई शिकायत ना हो और मम्मी या पापा तक हमारी तारीफें ही पहुँचे।
8: अभी क्या तुम्हारी शरारतों की शिकायतें पहुँचती हैं।
7: जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस काम बता रहा हूँ।
2: घर में साफ सफाई रख कर, जैसे फल के छिलके इधर उधर न फेंक कर, और
3: हाँ हाँ ठीक है टॉफी के रेफर इधर उधर न फेंक कर।
5: मैं तो डस्टिंग भी कर सकती हूँ।
8: मैं भी।
6: अरे फिर शुरू हो गए बकरी की तरह मैं करने।
5: अपना खाना पूरा खाकर वेस्ट ना करके।
0: मैं बाहर से धुले कपड़े उठाकर ला सकता हूँ उनके सूख जाने के बाद।
7: मैं तो कई छोटे छोटे कपड़े तह भी लगा सकता हूँ, बस मम्मी की साड़ी नहीं, उसे लपेटते लपेटते तो मैं गिर ही जाऊँ।
6: जरा सोचो तुम्हारी मम्मी जब बाहर से कपड़े उठाने जाए तो क्या देखें कि किसी ने उन्हें उठाकर तह भी लगा दिया है, सोचो कैसा लगेगा उन्हें।
8: मेरी मम्मी तो बहुत खुश हो जाएगी।
2: मेरी भी,
3: मेरी भी,
4: मेरी भी।
6: फिर
5: दीदी मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कितने ही तरीके हैं जिनसे हम अपनी मम्मी की मदद कर सकते हैं।
0: हम जितना अपना काम खुद करेंगे उतनी ही उनकी मदद होगी।
6: सिर्फ अपना काम ही नहीं, अपना खत्म करने के बाद घर के उन सदस्यों का भी जो या तो बहुत छोटे हैं या तो बहुत बड़े और दूसरों की मदद पर आश्रित हैं।
7: जैसे मेरा छोटा भाई, मैं उसे खाना खिला सकता हूँ, पढ़ाई में मदद कर सकता हूँ।
8: पर वो तो भी बहुत छोटा है।
7: मेरा मतलब है जब वो स्कूल में आ जाए।
3: और मेरे दादा दादी उनकी टांगे दबा सकता हूँ, उन्हें कभी चप्पल या चश्मा नहीं मिल रहा हूँ तो ढूंढ के दे सकता हूँ।
5: तो दीदी क्या सेवा यही कुछ है, ये तो बहुत सरल है।
6: सेवा के बहुत रूप हैं, शब्द बड़ा है पर यह सरल तरीकों से भी हो सकता है किसी से। जैसे कोई उदास बैठा हो तो प्यार से बोलकर उसका दिल हिला देना भी एक सेवा है।
0: ऐसे तो किसी का उत्साह बढ़ाना भी सेवा है।
6: हाँ जिस किसी काम से किसी की मदद हो जाए या भला हो वही सेवा है।
7: कई लोगों को मैंने देखा है कि गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं तो अपने साथ ठंडी पानी की बोतलें रख लेते हैं और रिक्शे वालों को या और सड़क पर काम करने वाले लोगों को देते हैं।
8: दीदी उस दिन मम्मी अखबार में से पढ़कर बता रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी सेवा शुरू कर दी है कि अगर किसी के घर में जैसे किसी की शादी के दौरान खाना बच गया हो तो वे उसे वहाँ से लाकर गरीब लोगों तक पहुँचा देते हैं।
3: हाँ और कुछ संस्थाएं होटलों से बचा हुआ अच्छा खाना लेकर गरीबों में बांटते, वो भी ठीक है।
6: और क्या होटलों में तो कितना ही खाना बच जाता होगा, पर ये सब तो बड़ी संस्थाओं के काम है, बात उसकी करो जो तुम अपने हाथों से कर सकते हो।
5: दीदी हम अपने घर के आसपास के पशु पक्षियों का भी तो ध्यान रख सकते हैं।

0: हाँ, अपने घर की छत पर बाजरे के दाने और पानी का तसला रख सकते हैं, या पास की गौशाला में आटा या जो भी उन्हें चाहिए दे सकते हैं। कुछ लोग तो सड़क के कुत्तों को भी पालतू बना लेते हैं और वे फिर उनके घरों की रखवाली भी करते हैं।
1: मेरी दादी कहती है, सेवा से
2: मेवा मिलता है।

गुलाब जूही खेत की गुलाब जूही चंपक बन।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मित्रांशिवाय आयुष्य अपूर्णच, हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
1: करायचं.
0: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं.
2: लकडी की काठी, काठी पे घोडा,
0: मनात पीठ वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकतं. त्याचसोबत
3: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,
0: जुन्या गाण्यांचा तोच सुगंध, तीच नशा,
1: पहला नशा, पहला खुमार.
0: घेऊन येत आहे आपल्यासाठी पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणे आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियाँ बांटो. आपके साथ आरजे संजय. दोस्तों, 21 मई का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है. इसी दिन 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम हमले में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी. यह हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन द्वारा किया गया था. राजीव गांधी के समेत 15 लोग मारे गए, 43 लोग घायल हुए. यह घटना भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक आतंकवादी हमला माना जाता है. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है. इसी कारण भारत सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया. सरकारी संस्थानों और विद्यालय में शपथ दिलाई गई, हम आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे. तो दोस्तों, आज हम राजीव गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता रहेगा. आइए हम सब मिलकर शांति, प्रेम और एकता का मार्ग अपनाइए. तो चलो सुनते हैं इसी के साथ एक सुंदर सा गीत.

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 12 मार्च 1993 की उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस दिन मुंबई शहर में एक के बाद एक कई स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके हुए, चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लोग भय और असुरक्षा से घिर गए। इन धमाकों में सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ठहर गया और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस घटना का उद्देश्य समाज में भय और अस्थिरता फैलाना था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया और लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया। 12 मार्च हमेशा याद दिलाता है कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2001 की उस घटना की जिसने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। उस दिन संसद भवन परिसर में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 5 हमलावर नकली पहचान पत्र और वाहन स्टिकर का उपयोग कर परिसर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन भवन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए हमलावरों को रोक दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और सभी हमलावर मारे गए। ये हमला लोकतंत्र पर सीधा आघात था और देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी साबित हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर संगीत।

में डाल दिया। उस दिन मुंबई शहर के कई प्रमुख स्थानों पर एक के बाद एक हमले हुए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरा होटल में लंबी मुठभेड़ चली। कैफे में निर्दोष लोग निशाना बने। धार्मिक क्षेत्र पर बंधक संकट पैदा हुआ और विले पार्ले में टैक्सी में विस्फोट हुआ। चारों ओर गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और अफरा तफरी का माहौल। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और लंबी लड़ाई के बाद हमलावरों को परास्त किया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक सुंदर गीत।

उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। एक वाहन में विस्फोटक भरकर टकरा गया था और चारों ओर धमाके की गूंज फैल गई। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। ये घटना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। पूरे समाज में शोक और आक्रोश का माहौल था। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।

प्रिय श्रोताओं, इन घटनाओं की स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि हिंसा और आतंक का कोई स्थान नहीं है। हमें मिलकर शांति का दीप जलाना है, प्रेम का संदेश फैलाना है और एकता की शक्ति को बनाए रखना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। प्रिय दोस्तों, रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से इन सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते।

0: गई।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है। और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे, अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर। उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में खुद को मैनेज करने का एक पूरा एहसास हमें पता चला।

0: पता चला कि टेक्निक क्या है, खुद की पहचान भी हुई। और अगर पिछली कड़ी को देखें तो परमात्मा के साथ एक बहुत खूबसूरत रिश्ता, एक ऐसी आत्मा के साथ, क्योंकि मैं आत्मा हूं, एक ऐसी आत्मा के साथ जो कि प्रेम का सागर है, शक्ति का सागर है, प्योरिटी का सागर है, और उसकी वाइब्रेशंस हमेशा मुझ तक पॉजिटिव पहुंच रही हैं। उसके साथ जब रिश्ता जुड़ा तो मैं खुद एम्पावर होती गई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इस श्रृंखला में आगे देखते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट में और कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको देखना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सुश्री शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सुश्री शिवानी। अगर पूरी श्रृंखला को मैं एक बार फिर पीछे मुड़कर देखूं, बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं, एंड इनफैक्ट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि आपके ढेर सारे सवाल जो हमें कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कि हम आगे कहां बढ़े, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में?
1: I would just say that it's lovely to see ke how everyone has this pure desire to work on themselves. You know, aaj din tak jo hum blame auron par dal dete the, kahin na kahin har ek jo dekh raha hai usko ek bahut deep realization ho gayi hai, and an amazing sense of self confidence ke okay, it's still in my hand. So wo ek feeling jo hai wo bahut badi ek source of empowerment mil jati hai ke irrespective of kitna bhi problem bahar ho, still the solution to a large extent is in my hand. Aur jab ye ek realization hoti ke ye mere hath mein hai, chahe apna dhyan rakhna, chahe apne sambandhon ko parivartan karna aur chahe situations ko check karna, so this gives amazing realization. और हर एक के जो फोन आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर कि हर एक को कितना ये एक प्योर डिजायर है टू वर्क ऑन देमसेल्फ्स एंड देन टू सी द रिजल्ट्स, क्योंकि इतना हर एक, जैसे जस्ट यस्टरडे आई गॉट एन एसएमएस फ्रॉम अ सिस्टर एंड शी सेड टुडेज एपिसोड एंड वन प्रॉब्लम जो मेरे साथ सालों से थी वो कल सडनली ठीक हो गई।
0: ये बहुत हो रहा है, एक सूत्र, मतलब इनफैक्ट मेरे साथ हुआ, मेरे साथ होता है बार बार एपिसोड्स में, या लोगों के साथ होता है, एक सूत्र मिलता है और हमें लगता है कि अरे हल्के हो गए, यू नो, बेसिकली वी आर ऑल फीलिंग लाइट।
1: So this, I just realized from that, I said, look at the कि परमात्मा के ज्ञान में कितनी पावर है, कि इसीलिए कहा जाता है कि ये ज्ञान, यू नो, जीवन को कैसे परिवर्तन करता, कि एक पॉइंट से हमारे सालों के से जो हमने कोई बात पकड़ी हो वो ऐसे खत्म हो जाती है। जस्ट शोज द पावर ऑफ द ज्ञान बट ऑल्सो शोज द पावर ऑफ द सोल, कि हम आत्माओं में भी कितनी ताकत है,
0: एक सेकेंड हम हवा में उड़ा सकते हैं उस चीज को।
1: तो इसका मतलब अगेन इट प्रूव्स टू मी, टू ईच वन, कि एवरीथिंग इज इन माई हैंड। जहां हमने इतने सालों तक उस बात को पकड़ी होगी कि मेरे, ये तो मेरी गलती नहीं है, पर चेंज करने में वन थॉट एंड इट्स ओनली अबाउट When I create that thought.
0: अभी तक का जो मेरा बिलीफ सिस्टम जिंदगी हुए, मेरा ये रहा था कि वहां से मिल रहा है, मेरा बच्चे के कारण मुझे मिलेगा, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे ऑफिस, मेरी अचीवमेंट के कारण मुझे सक्सेस मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगी। ये रियलाइज हुआ कि इट इज ऑल इनसाइड, यू नो, यहां से मिलेगा। लेकिन यहां की भी अभी जर्नी जो थी वो उतनी स्ट्रांग नहीं हुई थी। तो एक तरफ तो बार बार मेरा वो जो बिलीफ सिस्टम, मेरे को जो आदत पड़ी हुई है यहां से खुशी लेने की, कि उनके आने से मुझे खुशी मिलेगी, और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अभी तक उतना नहीं टूट रहा है, और जो अंदर का रिश्ता मेरा अपने आप से जुड़ता हुआ जो है वो भी अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है।
1: एक्चुअली जो हम शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं वो अवेयरनेस शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं। रियलिटी तो पहले भी वही थी, रियलिटी चेंज नहीं हो रही है। जो हम कह रहे हैं कि मुझे खुशी औरों से नहीं मिलती, मुझे खुशी कुछ करने से नहीं मिलती, खुशी मेरी अपनी क्रिएशन है, ये कोई नई चीज आज होने नहीं वाली है। दिस वॉज ऑलवेज हैपनिंग इवन बिफोर हैंड, इट इज जस्ट दैट आई वॉज नॉट अवेयर। अब सडनली जैसे कि हमने अवेयरनेस आई तो हमें लगा ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर ही आती जा रही है, हर चीज मैंने करनी है, हर चेंज मैंने लाना है, हर खुशी मुझे, यू नो, समवेयर आई थिंक दैट बिकम्स अ लिटल
0: वेरी ट्रू, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो गई। कि अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि अरे मैं डिनर पे जाऊंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी, या मैं लोगों से मिलूंगी उससे मिलूंगी तो मुझे खुशी मिल जाएगी।
1: नहीं नहीं नहीं, बट सी अगेन, आप अपने आप को इन चीजों से कट ऑफ नहीं करेंगे, बिल्कुल
0: कट ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये कि उनसे खुशी मिलेगी को मैं देखना तो कम से कम शुरू करूंगी, कि अब मैं उसको तो देखती हूँ कि नहीं मेरे अंदर ये थॉट क्रिएट हुआ, मुझे मेरी खुशी, मुझे खुशी मिल रही थी, वो है गुड, वो नहीं भी होंगे तब भी मैं वो खुशी क्रिएट कर सकती।
1: एब्सोल्युटली, तो ये तो पहले भी हो रहा था, सिर्फ ये था कि वो है तो मैं खुशी क्रिएट कर रही थी।

0: वो नहीं है तो मैं दर्द क्रिएट कर रहे थे। वो तो पहले भी यही रहा था, सिर्फ ये था कि मुझे लगा था कि उनके आने से खुशी आ गई, बट इट वॉज एक्चुअली उनको मिलने से मैंने खुशी क्रिएट कर दी। नाउ द ओनली थिंग विद अवेयरनेस इज रियलाइजिंग कि आई एम क्रिएटिंग दर्द ऑल्सो, आई एम क्रिएटिंग। दूसरे ने मुझे दर्द नहीं दिया, दूसरे ने मुझे खुशी नहीं दी, आई एम क्रिएटिंग। तो वो करने से क्या होता है, कहीं ना कहीं ब्लेम गेम भी फिनिश हो जाता है और कहीं ना कहीं अपने आप को तुरंत फटाफट से राइट स्टेट ऑफ माइंड में फिर से लाना वो इजी हो जाता है। इट डजंट मीन हम बाहर नहीं जाएंगे, हम आउटिंग पे नहीं जाएंगे, हम लोगों से नहीं मिलेंगे या हम पार्टी नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे बट विद द राइट इंटेंशन कि ये सब क्यों हो रहा है। इट्स अ चेंज, इट्स नाइस टू मीट पीपल एंड व्हेन आई मीट पीपल नाउ इट इज विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग। वो करो, अब आप पार्टी में जाओ, डिनर पे जाओ, बट गो विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग योर वाइब्रेशंस। इट विल बी द सेम पार्टी, लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसमें, आप पार्टी में जाओ, हर एक से मिलो, लेकिन किसी के भी कमेंट से या किसी की भी कोई बात से आप डिस्टर्ब अगर नहीं हो। पहले भी हम जाते थे, कई बातें अच्छी हुआ करती थी, कई बातें कोई ऐसी हो जाती थी जो मैं अपसेट ही होकर वापस आ जाती थी, तो फिर वो डिनर ने खुशी दी, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे, नाउ आई गो आई मीट एवरीवन विद द अवेयरनेस ये सब बाहर है, ये अंदर है, मुझे क्या करना है, क्या लेना है और इसका साथ साथ ध्यान रखना है, इस अवेयरनेस के साथ अब इंटरेक्शन में आना है। तो ये नहीं है कि वैक्यूम नहीं होगा, लेकिन लीकेज बंद होने लगेगी। अभी लीकेज बहुत हो रही थी, देखो हम चार्जिंग बहुत कम कर पाते हैं सारा दिन में, सोल कॉन्शियस रहना दिस इज चार्जिंग, हम कितना कर पाते हैं, फिर सारा दिन वही बॉडी को, एटलीस्ट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो चार्जिंग इतनी सी होगी और डिप्लीशन इतना हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द डे
1: वही थका हुआ महसूस
0: कहीं भी नहीं। तो एक है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं, चार्ज करते हैं, बट इट विल नॉट हैपन लाइक दिस कि ओवरनाइट आप एकदम भरा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस हैं।
1: अच्छा, ये कि दोनों शिफ्ट बहुत बड़े हैं एक्चुअली, और दोनों को आप बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पाते हैं।
0: हमें बहुत इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि जो एफर्ट हम कर रहे हैं उसको एफर्ट नहीं कहें, लेकिन जो हम अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं उसको कभी टेंशन मत बनने देना। यू नो, कई बार परमात्मा भी हमें ये कहते हैं कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सारा अटेंशन तो यही हो रहा है कि टेंशन को फिनिश करना है, लेकिन कई बार अटेंशन रखने का टेंशन हो जाता है।
1: ओहो मुझसे ऐसा हो गया, उफ ये फिर हो गया ऐसे।
0: ट्रू, सो वो नहीं, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ एंड ट्राई कि जो परिवर्तन हम लाने की कोशिश कर रहे हैं दैट्स अगेन नॉट फ्रॉम आउटसाइड इन। हम ट्राई कर रहे हैं कि बाहर से कि मैं गुस्सा नहीं करूं, मैं ये नहीं करूं, विच इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कीप अटेंशन, क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं वापस वही ऑर्डिनरी तरह में चलते जाएंगे, ये हुआ गुस्सा किया, ऐसा हुआ गुस्सा किया एंड फिर से कहीं के वहीं पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ करते हुए ध्यान रखना है अपना सिर्फ, यू नो, लाइक जैसे हम कहें कि अगर आप जैसे एक माँ एक बच्चे को संभालती है, ठीक है, तो बच्चा जैसे एक पालने में है, क्रेडल में है और माँ पूरे घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ एज अ मदर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि आप घर का भी काम करते हैं
1: एंड यू नो कि व्हाट इज हैपनिंग,
0: बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, तो एक नजर बच्चे पर है। अब आप सारा काम कर रहे हैं लेकिन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द आई यू आर टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा थोड़ा भी रोना शुरू करता है आप एक मिनट निकालते हैं, इधर से हटते हैं, उसके पास जाते हैं, चुप कराते हैं, वापस आ जाते हैं। तो हम दोनों काम करते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते बच्चे को संभालना है तो मैं घर का कोई काम नहीं कर सकती, नहीं, बच्चे को भी संभालना है, घर को भी देखना है। इसी तरह यहाँ ये बच्चा है, सारा काम करना है हमें, बाहर सबसे मिलना है, इंटरेक्ट करना है, सोशलाइज भी करना है, सब कुछ करना है। एक नजर
1: अपने बच्चे पे, अपने पे रखनी है, हाँ,
0: कि ये कहीं भी थोड़ा सा रोने न लग जाए या अपसेट ना हो जाए या यू नो गुस्सा न करने लगे। सो जस्ट दैट लिटिल अटेंशन, नॉट दैट कि मुझे सिर्फ इसका ही ध्यान रखना है, मुझे और तो बाहर यू नो आई एम नॉट बीइंग एबल टू मैनेज बोथ, नो, आई एम गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ डूइंग दिस, कि टेकिंग केयर ऑफ दिस ओनली बाय कीपिंग अ प्रायोरिटी राइट।
1: लेट्स सी।

0: एग्जाम्पल कि मैं एक पार्टी में गई, ठीक है, एक अपने फ्रेंड सर्कल की पार्टी में गई, मैरिज पे कहीं पर भी गए, रिलेटिव्स के बीच में गए, वट एवर दे आर टॉकिंग, आई नाउ अंडरस्टैंड कि दैट्स नॉट यू नो लाइक वो उसका कोई लाभ नहीं है.
1: सी, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग आर्टिफिशियल, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग एक्सटर्नली, बी विद देम, बी अ पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. अपने आप को काटना नहीं उस ग्रुप से, लेकिन आप ये देखेंगे, यू विल एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली कि आप जो शेयर करेंगे उन्हीं के साथ उसी टॉपिक पर, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट
0: हो चुका होगा,
1: विच इज ओके. एनीवेज, जब चार लोग बात करते हैं किसी एक बात को लेकर भी, तो चार लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव ही होता है ना. सिर्फ ये है कि अब हमें लगेगा कि कहीं हमारा पर्सपेक्टिव सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू नो पीपल आर लुकिंग फॉर दैट पर्सपेक्टिव. अगर आज आप बोल रहे हो कि हम सबकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो यू विल फाइंड फोर पीपल टॉकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लम विद योर डिफरेंट पर्सपेक्टिव. You might start sharing the solution. And जो लोग वो चार लोग problem की बात कर भी रहे होंगे, अगर वो solution की तरफ भी देखते तो वो solution बाहर ढूंढ रहे हैं. अब हमें ज्ञान से समझ में आया कि solution तो बहुत easy है, मेरे पास है, तो मुझे उल्टा अपने friends से और लोगों से withdraw नहीं करना है, मुझे सबके साथ रहना है, लेकिन अपनी स्थिति और अपने पर्सपेक्टिव को मेंटेन करके. कई बार हम रह जाते हैं, या कई बार फिर हम स्ट्रांग नहीं है तो हम विड्रॉ कर लेते हैं. ईदर ऑफ देम इज नॉट गुड. बह जाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाद में लगेगा अरे मैंने क्या किया, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीजों में, मैं कहां कहां इन बातों में चली गई. और विड्रॉ हो गए, दैट्स ऑल्सो नॉट राइट.
0: इन्वॉल्वमेंट खत्म,
1: इन्वॉल्वमेंट नहीं. और अंदर से देन, क्योंकि हर एक आत्मा का पर्पज ऑफ लाइफ जो है वो है रिलेशनशिप, इंटरेक्शन. तो इसलिए हमें कचना नहीं है, विड्रॉ नहीं होना, सबके बीच रहना है. सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ध्यान रखना है कि मेरी स्थिति मेरे कंट्रोल में चल रही है कि नहीं.
0: अगर इसी में करते करते किसी रिलेटिव ने कुछ कह दिया जो कि मुझे कहीं हर्ट हुआ, या मेरे पर्सनल उस पर कहीं हुआ, आई गो इन टू दैट हर्ट, तो फिर मेरा वो जो ज्ञान जो ये सोल्यूशन में जहां तक जा पा रही थी वो नहीं हुई. ये जो मैं कह रही हूँ कि अभी आधी आधी जर्नी जो
1: कोई बात नहीं है, दिस इज द प्रोसेस. जैसे कोई बीमार होता है यू नो फिजिकली, तो हम बीमार से ठीक हो रहे हैं ना, यही तो हो रहा है. तो थोड़े से कमजोर भी हैं लेकिन ठीक भी तो हो रहे हैं. अब इस ये जो बीच का फेज आएगा, इनफैक्ट द होल द जर्नी विल गो ऑन. ये ऐसा भी नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कितने दिन में ये जर्नी पूरी होने वाली है. Every time you will find yourself at a different stage. आज हो सकता है आपको बड़ी ordinary बात से hurt हो जाए, दो महीने बाद आप उन्हीं लोगों को मिलेंगे, वो ordinary बातें आपको hurt नहीं करेंगी, लेकिन उस दिन कोई थोड़ी और बड़ी बात आपको hurt कर जाएगी, और चार साल के बाद उससे कई गुना कोई बहुत बड़ी बात आपको hurt करेगी. लेकिन the journey is going on and then we are reaching towards the stage where we will be pain free. लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में,
0: बार बार नहीं हो रही, अब छोटी छोटी बात नहीं हर्ट कर रही है,
1: तो उससे क्या होगा, पावर अक्यूमुलेट होती जाएगी. अभी अगर दिन में पांच बार हर्ट हो रहे हैं, तो दो महीने बाद आप पांच दिन में एक बार हर्ट होंगे, फिर साल बाद आप पांच महीने में एक बार हर्ट होंगे, एंड देन इट हो. सो दिस इज अ साइन ऑफ रिकवरिंग. तो रिकवरिंग इज नॉट विद इन अ फ्यू डेज और अ फ्यू मंथ्स, इट्स गोइंग ऑन. जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वी विल रीच अ स्टेज के नॉट एट ऑल. लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती जाती है, जिसके लिए दिन में पांच बार हर्ट होना नॉर्मल था, उसके लिए पांच दिन में एक बार हर्ट होना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. मतलब लीकेज कितनी कम हुई, कहा तो उससे क्या होता है, अभी तो मैं नॉर्मली हर्ट रहती हूँ, अभी मैं कभी कभी हर्ट होती हूँ, फिर धीरे धीरे मैं बहुत कम हर्ट होती हूँ. तो पावर, तो जितनी हर्ट की फ्रीक्वेंसी कम हुई, मतलब पावर अक्यूमुलेट हो रही थी. सो बट इफ आई से नहीं मुझे इसकी ही टेंशन हो रही है, देन तो इट इज लाइक सेइंग कि मुझे अपना इलाज ही नहीं कराना, आई डोंट वांट टू स्टार्ट मूविंग. तो ये फेज बीच में आएगा कि हम अटेंशन रख रहे हैं फिर भी हर्ट हो रहे हैं, फिर भी गुस्सा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट उससे हम पुराने बिलीफ सिस्टम में ना चले जाएं.
0: हाँ, और हम झूठ लगने लगते हैं, यू नो समवेयर वी स्टार्ट फीलिंग कि उफ, मैंने अब भी तूने सोल्यूशन दिया, यू नो, और अभी मैं हर्ट हो गई.
1: इट्स ओके. एंड अब हमें ये पता है कि अभी अगर मैं हर्ट हुई, मुझे ये पता है कि मैंने फटाफट अपने आप को ठीक करना है, बिकॉज वी नो नाउ कि अगर हर्ट भी हुए तो वो ही ध्यान रखना है. बच्चा रोने लग गया, पहले तो वो रो रहा है,

0: वो रो रोता ही जाता था।
1: हम अपना बाहर काम ही कर रहे हैं, अब वो रोने लग गया। लेट मी टेक आउट वन मिनट, अपने आप को फटाफट से ठीक करना, अपने साथ हार्श नहीं हो जाना कि तुमने गुस्सा क्यों किया। समझ तो आ गया था कि गुस्सा नहीं करना, समझ इज नॉट इनफ। एक है नॉलेज, दूसरी है पावर। एक है अब हमें सबको इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या राइट है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मा कमजोर है। तो एक कमजोर आत्मा अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, लेकिन वो कर पाएगी। लेकिन इस आत्मा को साथ साथ पावर भी चाहिए। तो उसलिए जहां आप सारा दिन इतना अटेंशन रख रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग में मेडिटेशन जरूर करें, ना अपने आप को भरें, चार्ज करें। जो हमने पिछले एपिसोड में भी बात की कि ये जो वैक्यूम है इसको परमात्मा भरता है, हम उससे वो शक्ति लेते हैं जिससे आई एम्पावर माई सेल्फ। नहीं तो क्या होगा, मेरी पावर तो बहुत कम है और मैं काम बहुत बड़ा कर रही हूँ। सडनली यू नो आई एम इन पेन बट आई एम सेइंग आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल नॉट गेट एंग्री, आई विल नॉट से एनीथिंग। तो कई बार वो पेन अंदर ही अंदर फिर मुझे
0: खाने लगते, वही जो बात है कि
1: वो मुझे रियलाइज नहीं होता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं गुस्सा तो अब नहीं कर रही, मैं किसी को बोल भी नहीं रही, तो नाउ आई शुड बी फीलिंग वेरी नाइस।
0: और उससे क्या हो गया, जहां मैंने जो मेरा नेचुरल प्रोसेस था अपने आप को एक्सप्रेस कर देने का, मैंने उसे रोकना शुरू किया, तो फिर वो जब निकलता है, और वो निकलता है फाइनली, क्योंकि जहां मैंने ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ sure. तो वो निकलता ही, एंड देन इट लीव्स मी विद नॉट अ वेरी गुड फीलिंग कि मैं आई फील यू नो समवेयर,
1: एंड अंदर कहीं ना कहीं वो जो ब्लिस की फीलिंग या जो हैप्पीनेस की फीलिंग है वो नहीं आएगी, क्योंकि हम बाहर, हमें लगता है कि मैं बाहर से नहीं कर रही तो अंदर आई शुड बी वेरी हैप्पी, बट दैट्स नॉट कमिंग बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग विद दैट सुप्रीम पावर। तो मेडिटेशन से पावर जेनरेट करना और सारा दिन में ध्यान रखना। ये भी नहीं है कि कई बार ये भी होता, मेडिटेशन तो कर ली, चार्ज भी कर लिया, लेकिन सारा दिन ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, तो जितना भरा
0: उतना,
1: यू नो इट्स लाइक अ बकेट, आपने उसको नल के नीचे रख तो दिया भरने के लिए, लेकिन नीचे छेद है, अब कितने दिन में वो बकेट भरेगी?
0: भरेगी नहीं,
1: भरेगी नहीं। और फिर उससे भी एक फ्रस्ट्रेशन बैठने लगता है कि रोज सुबह उठो, रोज मेडिटेशन करो, रोज ये सुनो भी, परिवर्तन कहाँ आ रहा है मेरे अंदर? तो परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो लीकेज है इसको नहीं बंद किया। तो इट्स अ वेरी वंडरफुल बैलेंस ऑफ बोथ द थिंग्स, नॉलेज भरे जिससे कि समझ मिलेगी, मेडिटेशन करे जिससे पावर आएगी, एंड सारा दिन में सिर्फ थोड़ा सा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार सब कुछ भर लिया है राइट, इट्स लाइक फिजिकल अगेन, आप राइट डाइट ले ले, एक्सरसाइज कर ले, और सारा दिन थोड़ा सा सिर्फ ध्यान रखें कि गलत खाना नहीं खाएं। इतना ही तो करना,
0: इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर रूटीन।
1: इतना ही तो करना है ना कि सारा दिन में आपने कुछ गलत चीज उठाकर नहीं खा ली, जहां खाई गलत चीज तो वहां वो इन्फेक्शन हिट कर देगी। तो इसलिए सेम चीज, ज्ञान, योग और सारा दिन थोड़ा सा अटेंशन कि मेरा डिप्लीशन ना हो, तो फिर वो भरना शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि भर भी रहे हैं और लीकेज को भी स्टॉप कर दिया। और अगर कभी हो जाए थोड़ा तो इट्स ओके, बिकॉज सबसे पहली बात है कि औरों को प्यार करने से पहले अपने को प्यार करना। अगर अपने आप से बहुत हार्श हो जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो औरों तक भी पहुंचेगी। तो बी नाइस विद योरसेल्फ, बी वेरी लवफुल टू योरसेल्फ, बट डोंट बी केयरलेस विद योरसेल्फ। दैट्स दैट बैलेंस। एक है गुस्सा करते गए, अपसेट होते गए, खुद को कहते गए कोई बात नहीं ना, आई एम ऑन द जर्नी, कोई बात नहीं, आई एम ऑन द जर्नी, नो, देन दैट इज केयरलेसनेस। किया, अपने आप से बैठे, फिर से रिवाइज किया, समझा, ओके नेक्स्ट टाइम केयरफुल, देन मूव ऑन, नो गिल्ट ऑफ द पास्ट।
0: अभी तक क्या होता था, एंग्री जब हम होते थे ना तो हमें गिल्ट याद आता कि हमने दूसरे को हर्ट किया, ये कभी भी नहीं याद रहा कि हमने अपने आप को हर्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: जिसने क्रिएट किया सबसे पहले तो वो हर्ट हुआ, और फिर उसके बाद अगर गिल्ट क्रिएट किया फिर और हर्ट हुआ। सपोज मैंने आपको गुस्सा कर दिया, तो पहले जैसे पेरेंट्स बच्चों में बहुत होता है, हस्बैंड में, मतलब पहले मैंने गुस्सा किया तब मैं हर्ट हुई, फिर आप तो चले गए, कोई बच्चा स्कूल चला गया, हस्बैंड, फिर उसके बाद मैं जो गिल्ट क्रिएट किया फिर मैं और हर्ट,
0: और वो इतना ज्यादा देर तक रहता है वो।
1: कई बार देखो बच्चे को तो भूल भी जाता है, वो चला जाता है स्कूल अपने फ्रेंड्स में, लेकिन मदर घर पे बैठ बैठ कर इतना

0: गिल्टी हो जाती है. सो रियलाइजेशन एंड गिल्ट में फर्क है. गिल्टी होने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, पश्चाताप करते गए, हाय मैंने क्यों किया, हाय मैं मेरे से नहीं होना चाहिए था. ये चर्न नहीं करते कि मुझे क्या करना है या मुझे आगे से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना.
1: एंड व्हाट वाज इट दैट ट्रिगर्ड, यू नो, दैट हैज हेल्प्ड मी नाउ, यू
0: नो, दैट इज रियलाइजेशन, दिस इज गिल्ट. तो गिल्ट इज डैमेजिंग, लेकिन रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. और रियलाइजेशन करने के लिए थोड़ा सा समय निकालकर उस पर रिफ्लेक्ट तो करना पड़ता है, लेकिन रिफ्लेक्ट इन द राइट पर्सपेक्टिव. रिफ्लेक्ट इन द सेंस, फिर से उस सिचुएशन को ले लो और अपने आप को उधर देखो, वेयर डिड आई गो रॉन्ग इन द रिस्पॉन्स, एंड इसकी जगह और कौन सा रिस्पॉन्स हो सकता था, कहां मैं अपने आप को भी और दूसरे को भी प्रोटेक्ट कर सकती थी. लेकिन गिल्ट वाली सिचुएशन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, उन्होंने गलती ही ऐसे की. इट इज अनदर विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी. रिजल्ट नथिंग. यू नो, कई बार बार बार बार बार सोचते रहते हैं और कहेंगे जब तक पास्ट के बारे में सोचेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे.
1: पास्ट जो है हमारे फ्यूचर को तय करता है.
0: रिवाइंड सब करते हैं, सीखा नहीं जाता हमसे उससे कुछ भी. रिवाइंड करके एक बार उस सिचुएशन को देख ले और अपने आप को देखे उसमें. रिफ्लेक्ट करने में भी इम्पोर्टेंट ये है कि किस पे रिफ्लेक्ट करना है. हम रिफ्लेक्ट सब पर भी कर रहे होते हैं जो जो उस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व है. नॉट एट ऑल, दे वर प्लेइंग देयर ओन रोल. रिफ्लेक्ट करना है, वेयर डिड आई डू समथिंग विच वेंट रॉन्ग एंड वॉट कैन I do to make it.
1: You know, that's more important than what can I do to make it better. Because what happens at times, I become so ashamed of myself. मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही होती है अगर मैं रिवाइंड करके उसको देख रही होती हूँ तो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ.
0: लेकिन this is relationship with the self. अगर किसी और से कोई गलती हो जाती है, हाँ, हम उनको क्या कहेंगे?
1: It's okay.
0: कोई बात नहीं. Move. Don't sit back with that. उठो, आप कर सकते हो. Because जब कोई गलती कर देता है वो पहले दर्द में चला जाता है, तो उसको अब चाहिए प्यार एंड कॉन्फिडेंस वापस खड़े होने के लिए. तो जो हम औरों को देते हैं वो खुद को देना है. इसलिए रिलेशनशिप विद द सेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है. कि कोई बात नहीं, चलते चलते ये सब विल कम एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट रुक कर अपने आप को प्यार से कि इट्स ओके, यू हैव डन वेरी वेल, पहले इतनी बार भी तो आपने नहीं किया, एक बार हो गया, नेवर माइंड, मूव, नेक्स्ट टाइम यू वोंट डू इट. यू नो दैट्स वे, दिस इज सेल्फ काउंसलिंग. अपने आप से प्यार, अपने आप को मोटिवेट. लेकिन अगर गिल्ट में चले गए तो खुद को डीमोटिवेट कर देंगे.
1: इट्स वेरी बैड, यू नो,
0: और फिर कहीं ना कहीं उस जर्नी को ही रोक देंगे. कि ये मेरे से नहीं होता, इससे तो गुस्सा करो, खत्म करो.
1: अच्छा, तो मैं पहले ही देखी, मैं गुस्से को एक्सेप्ट कर लूँ कि गुस्सा ठीक है, गुस्सा जेन्युइन है, गुस्सा नेचुरल है, इट्स ओके.
0: ट्रू. सो देन कहीं ना कहीं द ओनली थिंग इज, एक्सपेरिमेंट करने से पहले बहुत क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्या मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, एंड एम आई कन्विंस्ड. चेंज जहां बात आती है, चेंज तो कहते तीन चीजें चाहिए. वॉट टू चेंज, हाउ टू चेंज, एंड द वॉन्ट टू चेंज. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वॉट टू चेंज, क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, लेकिन क्या मुझे चेंज करना है,
1: क्या मैं चाहती
0: हूँ. वॉन्ट टू चेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. अभी क्या हुआ, वॉट टू चेंज मालूम है. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा नहीं करना, वॉट टू चेंज मालूम पड़ गया. हाउ टू चेंज वो भी मालूम पड़ गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. लेकिन डू आई रियली वॉन्ट टू चेंज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने सबकॉन्शियस में अभी तक भी वो पुराना बिलीफ तो नहीं पकड़ा हुआ, गुस्से से ही काम होगा, गुस्से से ही दूसरा सुधरेगा. तो जब तक वो बिलीफ नहीं हटेगा, सो दैट डीप डिजायर टू वॉन्ट टू चेंज डजंट कम. तो वो सेल्फ एनालिसिस हमें करना पड़ता है. और ये सेल्फ एनालिसिस भी मेडिटेशन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सारा दिन में अपने आप को देखते हैं तो एक ऊपर की लेयर पे देखते हैं, यू नो, कॉन्शियस माइंड पर, एंड उसमें बहुत सारी बातें आती हैं. लेकिन जब साइलेंस में बैठकर सुबह देखते हैं तो यू नो ये कॉन्शियस लेयर साइलेंट हो जाती है एंड सब कॉन्शियस में हमें आंसर्स मिलते हैं,
1: जो रियल में निकल कर आ रहा है
0: कि कहाँ कहाँ मेरे अभी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ मैं बार बार अभी भी फेल हो रही हूँ, कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे अपने ही प्रोग्रेस में, जो सक्सेस मुझे जीवन में चाहिए, वहां वो अभी भी रुकावट बन रही है. ये चीजें साइलेंस में, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छी पता चलते हैं. इसलिए उसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन या इंट्यूशन पावर. ये उस समय एक्टिवेट होता है, तो उसमें हमें ये आंसर्स मिलते हैं, व्हाट टू चेंज. फिर परमात्मा के ज्ञान से हाउ टू चेंज वो मिलता, एंड वॉन्ट

0: to change to her atma chahti hai, lekin deeply that also I have to check. This is kai bar lagta ha ha I want to change, lekin andar agar wo answer nikal raha nahi lekin galti to inki thi, so then I don't want to change, I still want you to change. The need for asking other people to change is a very deep belief. बहुत डीप है क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हमें आसपास अपने दूसरे लोग गलतियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं,
1: और
0: इसने गलती की, इसने गलती की, इसने गलती की, तो वो बहुत फोकस सब पर है. तो अभी भी वांट टू चेंज औरों का बहुत ज्यादा है कि इनको बदलने की जरूरत है. सो दीज आर थ्री क्वेश्चंस जो अपने साथ रखें एंड इसको मेडिटेशन में इस पर वर्क करें, आंसर्स निकल कर
1: ट्रू, और आंसर्स वही होंगे जो सही है, जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे. आज की इस पूरी बातचीत के लिए सुशील शिवानी, थैंक यू सो मच. फिलहाल आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, लेकिन उसका हम जो है अपेक्षा भी करते हैं कि आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0999334555, 0987 3666 555, 0999974555. हमारा ईमेल आईडी है om shanti studio@bkmail.org.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे which will not be according to the way I want them to be. Aaj sara din, awareness and checking. Kaun zyada powerful hai? Baatein, situations or me? Kiska prabhav kis par padta hai? आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

कंप्यूटर चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। चल, चल।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका स्वागत। अब हम समझ पा रहे हैं कि मेडिटेशन यानी योग, जिसके लिए हम कब से बात करते आ रहे हैं कि उसी से जीवन परिवर्तित होगा। मेडिटेशन जीवन के आखिरी पड़ाव में नहीं बल्कि शुरू में ही जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जीवन के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो सुधर जाएं। और अगर पिछली कड़ी याद हो आपको तो हमने देखा था मेडिटेशन का योग का फिजियोलॉजिकली या हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं उस पर क्या असर पड़ता है। साइंटिफिकली भी अब बातें हमारे सामने आ रही हैं। आज थोड़ा और बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का जब तक हिस्सा नहीं बनेगी, दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहेगी, तब तक हमें वो अनुभव वो प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए हमें ये जीवन मिला था। बात करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। आपसे बात शुरू करते हैं। श्रृंखला में बहुत सी बातें की, मेडिटेशन और योग, जिसका अगर हम कहें कि अवेकनिंग का की नींव रही है, राजयोग पे हर बार आपने जोर दिया है। और आई थिंक ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने कहा है कि जितनी छोटी उम्र से योग या मेडिटेशन की शुरुआत हो उतना अच्छा। पिछली कड़ी पे जाते हैं तो साइंटिफिकली भी अप्रूव हुआ। अभी भी हम इतना समझने के बाद योग को जीवन में, या अगर देखा जाए तो हर इंस्टीट्यूट में, क्यों नहीं इन्वॉल्व कर पा रहे, क्यों नहीं अपना पा रहे?
1: भले ये हर इंस्टीट्यूट में नहीं अपनाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसकी अवेयरनेस और इसकी इम्पोर्टेंस अब रियलाइज हो रही है। काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन कॉरपोरेट सेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज भी मेडिटेशन को अपने यू नो डेली रूटीन में लेकर आ रहे हैं। बट मेडिटेशन इज नॉट समथिंग विच कैन बी फोर्स्ड ऑन समवन। तो अगर कोई स्कूल के प्रिंसिपल या हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसको इन्फोर्स कर देता है, समटाइम्स पीपल जस्ट मूव अवे कि ये क्या है, हमें नहीं इसकी जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन हैज टू बी बाय चॉइस। कोई भी चीज वैसे भी आप किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये अंदर का काम है। बाहर का काम आप किसी पर फोर्स कर दो आप उनसे करवा सकते हो, मेडिटेशन आप कंपल्सरी नहीं करवा सकते। वो कोई बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन अंदर क्या चिंतन चल रहा है, अगर वो मेरी चॉइस से होगा, आई विल पुट इन माय बेस्ट इनटू इट।
0: अनदर थिंग आई वांट टू आस्क यू,
2: और एक बात जो होती है ना कि मैं क्यों नहीं कहूँ, क्योंकि लोग उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि धर्म नहीं है, ये वास्तव में बहुत ही पावरफुल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की साइंटिफिक टेक्निक है, तो सभी उसको अपनाएंगे।
0: वेरी ट्रू एक्चुअली। यही बात आज जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, जो बहुत बार मुझसे कहते हैं कि अपना प्रोग्राम में जो होते हैं तो हमें मेडिटेशन सीखना है, ज्ञान नहीं समझना, ज्ञान की बात नहीं या वो सारी चीजें जो है, मेडिटेशन सीखना है। आई वॉन्ट टू आस्क, मेडिटेशन बिना नॉलेज के, बिना अंडरस्टैंडिंग के राजयोग क्या संभव है?
1: राजयोग तो नॉलेज के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको थॉटलेसनेस एक्सपीरियंस करनी है और आपको लगता है वो हो सकती है, वो बिना ज्ञान के होगी। अगर आप कोई एक मंत्र का उच्चारण बार बार करते हैं, उसके लिए भी कोई ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में सोल कॉन्शियसनेस देन कनेक्टिंग टू द सुप्रीम पावर, ये उसके बिना नहीं होगी। विदाउट द नॉलेज आई एम अ सोल, क्वालिटीज ऑफ द सोल, हु इज द सुप्रीम पावर, उसके साथ मेरा क्या रिश्ता, ये सारा ज्ञान है। दिस इज लाइक दो लोगों के बीच में रिश्ता जोड़ना, वो तब तक नहीं हो सकेगा ना जब तक हम उन दो लोगों को जानते नहीं होंगे। हम चाह रहे हैं कि रिश्ता जुड़ जाए, प्राप्ति हो जाए, बिना ये जाने कि कौन वो दो एंटिटीज हैं जिनके बीच वो रिश्ता जुड़ रहा है। तो ज्ञान कोई रिलीजन नहीं है, ज्ञान उल्टा हमारे हर जो भी हम रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं उसको हमें अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। ज्ञान जो राजयोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जो ज्ञान मिलता है, व्हाट इज दैट, हु एम आई, एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट इट, एंड हु इज ही, एवरी रिलीजन इज टॉकिंग अबाउट इट, ओनली इट कम्स आउट नाउ इन अ वेरी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक वे। तो उसको अडॉप्ट करना और फिर उसको प्रैक्टिकल में लेके आना, वो इजी हो जाता है। रिलीजन हमारे जीवन का एक एस्पेक्ट हुआ करता है, लेकिन हमने कभी रिलीजन को जीवन के प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करता है, रिलीजन ने जो हमें सिखाया

0: को अपने जीवन में लेकर आना, ताकि वो रिलीजन का जो, इसे रिलीजन इज माइट कहा गया, तो वो रिलीजन की जो माइट है आज हम क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर रहे, हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए।
1: धर्म जो था वो धारण करने के लिए था।
0: एग्जैक्टली,
1: तो हमें धारण करने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए।
0: हमने तो धर्म के नाम पर ही हम एक दूसरे से उल्टा अलग हो गए, तो इसका मतलब हम अपनी धारणाओं से काफी दूर थे।
1: तो आते हैं मेडिटेशन के फिर कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पर। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं, बिकॉज हमारा बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जब मेडिटेशन में हम हैं, किस तरह से मेरे बॉडी के पार्ट्स पर और मेरे थॉट पैटर्न्स पर मेडिटेशन का प्रभाव पड़ता है।
2: जो फाउंडेशन हमने समझा था कि मेडिटेशन से सिंपैथेटिक अराउजल है वो कम होता है और पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम थोड़ी सी ओवर एक्टिवेट होती है, उससे बहुत सारे बेनिफिट,
1: वो बैलेंस होता है।
2: हाँ, बैलेंस हो जाता है। एक तो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट काफी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, पल्स रेट कम हो जाती है, जो सांस की गति है वो डीप और धीमी होती है। साथ साथ बहुत ही पावरफुल बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड की मात्रा काफी कम होती है, नींद के साथ तुलना करें तो करीब 3 से 4 गुना ज्यादा वह कम हो जाती है। और अच्छा सा बेनिफिट है कि जो ब्रेन वेव पैटर्न्स है वो अल्फा पैटर्न्स को हम मेंटेन कर सकते हैं, उससे भी स्लो जो थीटा पैटर्न है वह भी संभव है। हमने भी देखा कि बिगिनर्स में भी मेडिटेशन से अल्फा या थीटा पैटर्न को जब मेंटल एरिथमेटिक कर रहे हैं तब भी उसको मेंटेन कर सकते हैं,
1: एक्टिविटी करते हुए।
2: हाँ, और एक अच्छा बेनिफिट है जिसके हमने पहले डिस्कशन नहीं किया है, वह स्किन रेजिस्टेंस। क्योंकि जो ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्लो हो रहे हैं वो हमारे अणु अणु में फ्लो होते हैं, और स्किन में भी एक माइक्रो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है, और जब ब्रेन वेव्स रिलैक्स हुए तो माइक्रो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है वो भी स्लो डाउन होंगे, और वह कम हुए तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वह इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस से अपोजिट है, तो इसके कारण स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है।
1: ओके, स्किन रेजिस्टेंस मींस व्हाट?
2: स्किन एक्चुअली तो वह करंट है जो स्किन में फ्लो हो रहा है, वो करंट कम होता है, और आपने समझा भी होगा कि रेजिस्टेंस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अपोजिट होता है करंट से, जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ता है,
1: तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा।
2: कम हुआ
1: तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी लेस
2: भी कम होगी, साथ साथ आपकी जो कहेंगे कि अराउजल है वो भी कम होती है। आप देखना, जो लोग थोड़े नर्वस होते हैं उनके हाथों में पसीना आने लगता है,
1: एक्साइटमेंट लेवल्स जो है,
2: हाथ ठंडे होते हैं, हाथों में पसीना आता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस उनके बढ़ गए, जो ब्लड फ्लो है वो कम हुआ, और इसके कारण हाथों में पसीना आने लगा। तो जब मेडिटेशन करते हैं तब ब्लड फ्लो बढ़ता है कि जिसके कारण भी हाथ थोड़े से आपके वार्म होंगे, वो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग भी देता है।
1: अच्छा, इसके साथ ही क्या जो ब्रेन में जो चेंजेस की बात आपने कही थी, तो मेडिटेशन में ऐसा भी कुछ संभव है, खासकर कॉन्सेंट्रेशन की जो बात है? आजकल पेरेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है कि बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, तो उसमें मेडिटेशन की जो रिजल्ट है वो कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाना भी हो सकता है?
2: बढ़ाएगी। उससे पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूँ कि जिससे कॉन्सेंट्रेशन पर क्या प्रभाव है वो भी सिद्ध हो जाएगा। हाल ही में ये स्टडीज तो पहले भी हुई है, हम सब ने MRI सुना है, तो ऐसे ब्रेन का MRI कर सकते हैं। अभी ही लेटेस्ट आया है फंक्शनल MRI, कि पहले था वह था स्ट्रक्चरल MRI कि जो स्ट्रक्चर को मेजर करता है, फंक्शनल MRI जो कार्यवाही है ब्रेन की उस कार्यवाही को भी मेजर करता है। और बस एक साल पहले ही फंक्शनल MRI के द्वारा जो लोग मेडिटेशन कर रहे थे उनका फंक्शनल MRI किया गया, जो लोग नहीं कर रहे थे उनका भी किया और फॉलोअप किया गया काफी सालों तक, तो देखा कि जो मेडिटेशन करते थे उनके फंक्शनल MRI में जो ब्रेन की थिकनेस है, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कहते हैं, वह सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस भी बढ़ी, भले वह 1/1000 इंच है, बहुत कम है, लेकिन वो थोड़ी सी भी थिकनेस बढ़ना बहुत बड़ी प्राप्ति है। उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली जब ये रिसर्च मैंने देखी, तो कि आमतौर पर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस कम होती जाती है, अगर मेडिटेशन का अभ्यास करके हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की थिकनेस को बढ़ा सके तो एजिंग प्रोसेस को

0: क्रिएट कर सकेगा,
1: ज्यादा जगह होगी,
0: हाँ उसमें सर्किट्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि न्यूरॉन्स न्यूरॉन से जुड़ते हैं और सर्किट्स क्रिएट होते हैं, तो ब्रेन ज्यादा सर्किट क्रिएट कर सकेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ साथ कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि वो जो ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, भले आत्मा यूज करती है परंतु ब्रेन तो एक साधन है, वह साधन पावरफुल हुआ तो आत्मा भी उसका उपयोग सही ढंग से कर सकेगी।
1: नहीं तो ये साधन पावरफुल तब हुआ जब वो जो उसकी थिकनेस, उसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि हमने अगर मेडिटेशन में बैठे ऐसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए, एक्चुअली हो क्या रहा होगा
0: कि आत्मा ब्रेन से डिटैच हुई, पहले अटैच हो रही थी, उस पर स्ट्रेस दे रही थी, फोर्स कर रही थी, तो ज्यादा ही न्यूरॉन्स पर इफेक्ट होती थी और न्यूरॉन्स मर रहे थे, परंतु अब जब आत्मा डिटैच हुई तो ब्रेन को भी रेस्ट मिला, और जब ब्रेन को रेस्ट मिला तो जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे थे वो डैमेज होना कम हो गया, उसकी थिकनेस बढ़ी और रिजुवेनेट हुए। जैसे हम रेस्ट करते हैं तो कैसे एनर्जी को फील करते हैं, ऐसे ब्रेन को भी एनर्जी मिली और न्यूरॉन्स भी बढ़ गए।
1: तो आत्मा अपने स्वरूप में अगर आई तो उसने ब्रेन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कम
0: करती, हाँ उस पर जो प्रेशर डाल रही थी वो प्रेशर भी कम हुआ।
1: ये पूरी श्रृंखला में हमने जिंदगी की एक्चुअली ऐसी ऐसी कलाएं सीख रहे हैं जो शायद अनअवेयर थे। अगर हम अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों के साथ मेडिटेशन के प्रयोग करना शुरू करते हैं, कौन से वो थॉट्स हम उनके साथ दें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद वो उतना ज्ञान को अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत बार बोलते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि राजयोग में ज्ञान के बिना मेडिटेशन का कोई वैल्यू नहीं है, तो बच्चों के साथ किस तरह से ज्ञान लेकर आए कि वो मेडिटेशन में बैठ पाए।
2: सबसे पहले अपने साथ करें, यू नो, बिकॉज द मिनट पेरेंट्स विल लिसन टू दिस, वो अपने बच्चों को कहेंगे आप मेडिटेशन करो ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी हो जाए, ताकि आप पढ़ेंगे ताकि आपके नंबर अच्छे हो जाए। नहीं, कोई बच्चा वो नहीं करेगा जब तक हम नहीं कर रहे हैं, तो पहले हमें उसको करना है और हमें उसका एक्सपीरियंस करना है, और हमारा 100% उसके प्रति कन्विक्शन अगर होगा जो हम कर रहे हैं, इट्स ऑटोमेटिकली इन द हाउस, वो घर का एक कल्चर बन जाता है। और जो हमें लगता है कई बार कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बहुत सारे लेबल्स लगते जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस हम ज्यादा होते जाते हैं, एक बच्चे के लिए सोल कॉन्शियस होना इट्स क्वाइट नेचुरल। तो इसलिए बच्चों के साथ अगर आप ये छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल, दे आर एबल टू एक्सपीरियंस इट एंड रिलेट टू इट फास्टर समटाइम्स देन द एल्डर्स। तो जो हमने सीखा इट्स नॉट डिफरेंट बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, जो हम कर रहे हैं वो उनके साथ भी करना है। अगर उनके साथ हम 2-3 मिनट भी ये करें, पीसफुल सोल कनेक्टिंग टू दी ओशन ऑफ पीस, और वो तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, बच्चे बहुत प्यार से इसको करते हैं, एंड फिर उनको ये सिखाएं कि हमेशा पढ़ने से पहले 2-3 मिनट ये करके फिर पढ़ने बैठें, इट विल हैव अ वंडरफुल इफेक्ट। एंड क्योंकि वो मेडिटेशन ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं, उनके थॉट्स फोकस्ड होते जा रहे हैं, सेल्फ एस्टीम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्यों टूट रही है, मेरा डिस्ट्रैक्शन है ना किसी न किसी और बात की तरफ, कोई और चीज मेरे मन में है, किसी से बात करने को मन कर रहा है, खेलने का मन, दीज डिस्ट्रैक्शंस विल स्टॉप ग्रेजुअली, कॉन्सेंट्रेशन विल बिकम ईजियर फॉर द चिल्ड्रन। तो इसलिए मेडिटेशन छोटे बच्चों को बहुत हेल्प करेगा।
0: हमने जो ब्रेन की थिकनेस की बात की ना, और दो छोटी छोटी स्टडी से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जिससे भी लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। हमने पहले चर्चा की थी ब्रेन में 900 केमिकल्स हैं, उसमें से एक होता है डोपामाइन। तो ये रिसर्च की गई कि जो मेडिटेटर्स थे और लोग, और एक केमिकल है सी रिक्लोपाइन, ये केमिकल को इंजेक्ट किया गया और फिर वो ब्रेन के रिसेप्टर पर कितना चिपकता है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं। अगर वो कम बाइंड हो रहा है तो ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है।
1: ओके।
0: एक से करीब 6 गुना ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो रहा है। तो ये देखा नॉन मेडिटेटर्स और मेडिटेटर्स में कि करीब 60% ज्यादा डोपामाइन रिलीज हुआ जो मेडिटेशन कर रहे थे उनमें। सी रिक्लोपाइड था वो करीब 6-7% कम हुआ, उसका मतलब इट इज ऑलमोस्ट 60% मोर। ये भी एक बहुत ही प्रेरणादायक रिसर्च है।
1: दवाइयां इज अ गुड केमिकल,
0: वेरी गुड केमिकल एक्चुअली। वो जो दवाइयां भी लेते हैं ना डिप्रेशन में आदि, वो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली

0: हो सकता है कि यहां तो आप मेडिटेशन करते हो, डायरेक्टली डोपामाइन को रिलीज कर रहे हो। और एक बात है, आईजी एंटीबॉडीज जो हमारी लार में आईजी एंटीबॉडीज होती है, कि वो जितनी ज्यादा हो तो आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है, आपकी जो इम्यून कैपेसिटी है वो अच्छी होती है। तो ये भी देखा कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं उसमें आईजी एंटीबॉडीज करीब डबल होती है जो नहीं कर रहे उनकी कंपैरिजन में, जो भी प्रूव करता है कि हमारा रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और बात जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन, आज अभी हमने बच्चों से जुड़ी हुई बात तो की, कई बार लोग कहते हैं कि हम किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन के वो तरीके हैं, ध्यान का ध्यान करते हैं, तो क्या उस फिलॉसफी को मानते हुए जीवन की राजयोग अपना सकते हैं?
0: बिल्कुल अपना सकते हैं, क्योंकि उल्टा मैं तो समझता हूँ कि जो ऑलरेडी कुछ फिलॉसफी को समझ रहे हैं वो राजयोग को जल्दी समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दे आर डूइंग लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ आवश्यकता यह है कि फिर सही नॉलेज को भी समझे, या तो फोकस को समझे। जैसे भी आत्मा की बात तो सब करते हैं, आप देखेंगे बचपन से हमको आत्मा की बात बताई गई है, लेकिन हमारे मन में राजयोग से पहले मेरे में क्या था आपको बताता हूँ, यही था कि भी ये शरीर इम्पोर्टेंट है, आत्मा जैसी कोई चीज है इसमें। किंतु राजयोग के बाद ये क्लियर हुआ कि मैं आत्मा हूं, यह शरीर गौण है। आगे चलते चलते तो ये हुआ कि भी आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा ठीक हो गई, उसकी अवेयरनेस अगर सारा दिन रही तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी होगा। तो बस जो लोग और रियल चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वो शायद इस बात को और जल्दी समझ जाएंगे। इस बात को समझ ले और फिर अगर राजयोग का अभ्यास करने लगे तो वो भी अभ्यास कर सकते हैं, उल्टा और गहराई में जा सकते हैं।
1: क्योंकि आपने जो बात कही कि इट्स अ टेक्निक, यू नो, प्रॉपर सही लाइफस्टाइल अपनाने की टेक्निक है। आपने एक और भी बात कही थी कि कॉर्पोरेट्स में भी राजयोग मेडिटेशन के अब ये एस्पेक्ट लिए जा रहे हैं, वो कैसे इनकॉर्पोरेट? बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत कुछ जानना चाहेंगे, इंस्टीट्यूट्स के प्रिंसिपल्स देख रहे होंगे, टीचर्स देख रहे होंगे, वो चाहेंगे कि किस तरह से शुरू करें, बिकॉज इनिशिएट नहीं कर पाते। अब समझ में आ रही है, अपना भी अनुभव किया, लोगों ने इंडिविजुअल किया, मास लेवल पे करना चाहते हैं।
2: कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर वो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम पहले सीधा मेडिटेशन नहीं कराते, मतलब बेसिक थोड़ा मिनट एक्सपीरियंस कराते, बट वी आर नॉट शेयरिंग द राजयोग फिलोसफी एकदम से, बिकॉज शायद पूरी जो टीम है दे आर नॉट रेडी फॉर इट या दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। लेकिन हर एक टीम मेंबर को स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स, इमोशन मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट, लीडरशिप क्वालिटीज, इनके ऊपर तो जरूर चाहिए। अब आज दिन तक बहुत सारी वर्कशॉप्स हुई इन बातों के ऊपर, लेकिन इन किसी भी वर्कशॉप्स का एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं था, एक कॉन्शियसनेस लेवल पर फाउंडेशन नहीं था, ज्यादातर बातें बाह्य हुआ करती थी। आज हम सुनते हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स कराते हैं तो उसमें कहते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो नेचुरल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चाहिए मोटिवेशन के लिए, क्योंकि जो करा रहा है वर्कशॉप उसका अपना एक्सपीरियंस ही वो है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो होगा ही, तो वो औरों को भी क्या कहेगा। अब जब बाकी सुन रहे हैं उनके अंदर तो ऑलरेडी स्ट्रेस है, तो वो कहेंगे हाँ राइट, थोड़ा तो है, फिर थोड़ा और ज्यादा कब हो जाता है उसका तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब स्पिरिचुअल लेवल पर उसकी प्रैक्टिस हो रही है तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हर एक का अपना अनुभव है। और सिर्फ बहनें आश्रम में रह रही है वो नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हुए भाई बहन कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं। अब जब वो अपने अनुभव से और स्पिरिचुअल फाउंडेशन से सभी टीम के साथ शेयर करते हैं, बिकम्स इजियर फॉर देम टू वर्क ऑन इट। तो कॉर्पोरेट्स में इस तरह की वर्कशॉप्स होती, फिर उनमें से जिनको उसमें और इंटरेस्ट आता, देन वी स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन विद देम इन द वर्कशॉप। कई ऑर्गेनाइजेशंस में मेडिटेशन रूम्स खुल चुके हैं और सभी इम्प्लॉयज जिनको भी इंटरेस्ट हो वो हर रोज ऑफिस में आने से पहले और ऑफिस से जाने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन रूम में जाकर बैठते हैं। कई जेल्स के अंदर मेडिटेशन रूम्स खुले हैं, कई स्कूल्स के अंदर खुले हैं, छोटे छोटे साइलेंस रूम कह सकते हैं उसको, एक्सपीरियंस रूम कह सकते हैं, समवेयर वे यू कैन अनवाइंड, रिलैक्स, फोकस एंड चैनलाइज। सो स्कूल्स में हम वैल्यूज पर वर्कशॉप्स करते हैं एंड रिलेशनशिप

0: टीचर्स के लिए पेरेंटिंग वर्कशॉप स्कूल्स में होती है बट ऑन अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन। फिर धीरे धीरे मेडिटेशन उसमें इंट्रोड्यूस होता है।
1: एक बहुत इंटरेस्टिंग अभी बात आपने कही है, उसको मैं लेना चाहूंगी। आपने कहा कि जैसे ही स्पिरिचुअल नॉलेज हमें आती है, वेरी कॉन्फिडेंटली वी से इट इज अननेसेसरी। स्ट्रेस, टेंशन, एंगर, यू नो, ये सारी चीजें जिन्हें अभी तक हमने नेचुरल कहा था, थोड़ा थोड़ा थोड़ा हो सकता है। और जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन के लिए चाहिए था, बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा गुस्सा, हेल्दी गुस्सा, पॉजिटिव गुस्सा, यू नो, पॉजिटिव एंगर, पॉजिटिव ईगो, यू नो, ये सारी चीजें। आप बहुत लोग बोलते हैं, चाहे राजयोग का ही अभ्यास जो कर रहे हैं, कि अच्छा आपने कहा कि इट्स एब्सोल्युटली नॉट नीडेड, नहीं, जरूरत ही नहीं है, लेकिन है तो सी। और वो जो हमें सिखा रहे हैं, चाहे कोई सिस्टर ही बता रही है या कोई भी, उनमें भी तो कई बार दिखता है, यू नो। सो देन वी सी व्हाट यू शुड
0: बट द कॉन्शियसनेस नाउ सी। एक है कि परफेक्ट हेल्थ पॉसिबल है, ठीक है। वंस मेरी कॉन्शियसनेस में ये फिट हुआ विद अंडरस्टैंडिंग, विद लुकिंग एट समवन हु हैज अचीव्ड इट एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि परफेक्ट हेल्थ पॉसिबल है, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। लेकिन मेरा गोल क्या रहेगा फुल टाइम? परफेक्ट हेल्थ, विच डजेंट मीन मैंने एक दिन में परफेक्ट हेल्थ अचीव करनी है, बट माई गोल इज परफेक्ट हेल्थ। तो मेरा जो एफर्ट आएगा ना उसके अंदर, इट विल बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल।
1: आई नॉट गिव लिवरेज।
0: लेकिन इफ आई से कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है, परफेक्ट हेल्थ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं अपने आप को बहुत लिबर्टी दे देती हूँ गलत चीजें खाने की पीने की, जस्ट बाय सेइंग कि कभी कभी बीमार होना तो नेचुरल है। अब जो अगर मैंने अपने आप को कहा कभी कभी बीमार होना नेचुरल है, तो वो कभी कभी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत बढ़ती जाती है। आज हम ब्रह्मा कुमारीज में अपनी दादीज को देखते हैं, दे आर 85-90+, हेडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओवर 9 लाख पीपल, एंड वी आर सीइंग देम एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री इन एवरी सिचुएशन। कौन सी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आई होगी, जहां 9 लाख लोग हैं, 25,000 सिस्टर्स हैं। आज एक घर में एक बेटी हो तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जहां 25,000 बहने हैं, 9 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिचुएशंस आएंगी, वी हैव सीन देम एब्सोल्युटली स्टेबल, एंड देन व्हेन वी लुक एट देम एंड वी से यस दिस इज पॉसिबल। फिर हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि कहां पहले थे, कहां अभी हम पहुंच रहे हैं, एंड देन वी आर वेरी क्लियर कि यस वी विल ऑल्सो रीच देयर। बट वो कन्विक्शन के साथ हम करते हैं तो फिर एफर्ट बहुत जेन्युइन और फुल हार्टेड एफर्ट होता है। वी आर नॉट एबल टू गिव लिबर्टी टू आवरसेल्फ्स। अब इसमें अगर थोड़ा स्ट्रेस हो भी गया, गुस्सा आ भी गया, आई इमीडिएटली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ एंड गेट माई सेल्फ बैक टू द फाउंडेशन। लेकिन अगर मैंने कहा होता कि थोड़ा थोड़ा तो ओके है, तो हर टाइम होगा तो हम कहेंगे थोड़ा थोड़ा तो ओके है, तो थोड़ा थोड़ा करते करते संस्कार पक्का हो गया। जब कहा जीरो पर लेकर आना है, तो थोड़ा थोड़े को खत्म किया तो संस्कार भी फिनिश हो जाता है। सो द होल पर्सपेक्टिव विल चेंज।
1: इज इट पॉसिबल टू लीड अ परफेक्ट लाइफ द वे वी आर टॉकिंग?
2: जैसे शिवानी बेन ने समझाया कि अगर वो गोल होगा और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो करते करते एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे, और गोल नहीं होगा तो स्ट्रेस बढ़ जाएगी।
1: कई बार क्या होता है कि उसका ही स्ट्रेस, मतलब खासकर मैं इसी की बात नहीं कर रही, जिंदगी में अगर हम स्पिरिचुअल कोई फिलॉसफी को लेते हैं, कई बार हम उस स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि वी हैव टू डू इट परफेक्टली। तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर करता है, लोगों से दूर करता है। उससे कैसे बचें? आज हम लाइफ की स्किल्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे एस्पेक्ट्स जानते हैं।
0: वो तब होता है जब हमारा सारा फोकस बाहर की चीजों पर है, मुझे बाहर सब कुछ ऐसे ऐसे करना है, चाहे वो रिचुअल्स को लेकर है, चाहे वो कोई भी अपने जीवन की प्रिंसिपल्स को लेकर है। इट इज वेरी गुड अपने प्रिंसिपल्स के साथ बहुत अटेंशन और यू नो स्ट्रिक्टली चलना, लेकिन अगर मेरा अटेंशन अंदर नहीं है तो कई बार मैं अपने बाहर के प्रिंसिपल्स पर स्ट्रिक्टली चलने के लिए गुस्सा भी कर सकती हूँ, किसी को डांट भी सकती हूँ, इरिटेट भी हो सकती हूँ अगर मैं नहीं कर पा रही, देन आई हैव लॉस्ट द फोकस एनीवेज। लेकिन यहाँ जो प्रिंसिपल्स की बात हो रही है वो अंदर है, कि अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं उन पर कांस्टेंट अटेंशन रखना है, तो फिर ये बातें टेंशन नहीं क्रिएट करेंगी। यू विल ओनली डू इट विद कांस्टेंट अटेंशन इनसाइड, एंड इट्स अ वेरी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोसेस, फोर्सफुल नहीं है। अगर बाहर से अंदर की

0: परिवर्तन लाना होता तब हम कुछ फोर्स कर सकते हैं। ये तो एक नेचुरल धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए पता भी नहीं चलता एक्चुअली कि कब परिवर्तन हो रहा है। वी डोंट इवन कम टू नो। जब सिचुएशन आती है कोई
1: तब पता चलता।
0: अच्छा पहले अगर हम होते तो वी वुड हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। टुडे वी हैव रिएक्टेड इन अ डिफरेंट वे। एब्सोल्युटली।
2: और एक बात ये भी होती है फाउंडर जो है वह क्या बताते हैं। हम देखते हैं ब्रह्मा बाबा ने भी एक लाइट लाइफ लीड की। जो भाई बहन थे बिल्कुल बाबा रिलैक्स होते थे, खेलते खेलते सिखाया। आदि प्रकाशमणि जी को हमने देखा एकदम लाइट थे, अंत तक बिल्कुल लाइट थे। तो जब उनमें लाइटनेस है तो जो पुरुषार्थ करने वाले हैं उनमें भी लाइटनेस आ जाती है, स्ट्रिक्टनेस नहीं आती।
0: लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। जो आपका चाहे वो घर का बड़ा हो, परिवार के बड़े हों, या फिर ऑफिस के या ऑर्गेनाइजेशन के हों, कहीं के भी हों, शिवानी डॉक्टर पटेल हर बार की तरह हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। वो स्किल्स अब तो मैं कहूंगी कि भूले हुए थे लेकिन काफी समय से भूले हुए थे, काफी जन्म से भूले हुए थे ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन में हम देख ही नहीं पा रहे थे। अब इसको देख रहे हैं तो नेचुरल लग रही है। थैंक यू सो मच
2: रक्षण जी।
0: अब मेडिटेशन के महत्व को समझा, खासकर इस नई जीवन शैली में अगर हम नींव मेडिटेशन से रखते हैं, योग से रखते हैं, खुद अपने आप को पहचानने से रखते हैं, फिर देखें धीरे धीरे, क्योंकि आज हमने उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स भी देख लिए, जान लिया, हम अवेयर हैं अब कि हमारी बॉडी पर हमारे माइंड पर क्या असर पड़ रहा है। अब इसको देखना शुरू करें। अभी तक रिश्तों को देखा था, अभी तक इनफैक्ट बाहर की चीजों को देखा था कि मेडिटेशन से क्या इफेक्ट हो रहा है। अब अपनी बॉडी के हर एस्पेक्ट हर अंग को देख पाएंगे। कोई बात मन में है, आपका स्वागत। आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अब इवनिंग विद रमा कुमारी इसकी लाइव स्किल्स की इस श्रृंखला में आज की कड़ी में इतना ही। फिर मिलेंगे। ओम शांति।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजी शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि पर चिंतन पर दर्शन अर्थात दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की गलतियों को देखना, दूसरों के दोषों को स्वभाव संस्कार को देखना, उसी का चिंतन करना वर्णन करना, इसी को पर चिंतन पर दर्शन कहते हैं। यह एक विकार है। पर चिंतन पर दर्शन करने वाला व्यक्ति दूसरों के दोषों कमियों या उनके व्यवहार में गलतियां निकालता रहता है, आलोचना करते रहना उसका स्वभाव बन जाता है। दूसरों के जीवन में अत्यधिक रुचि लेने लगता है। परमात्मा कहते हैं दूसरों के बारे में सोचने से हमारी अपनी ऊर्जा और मन की शांति नष्ट हो जाती है। पर चिंतन से मन में नकारात्मक भावनाएं, क्रोध, घृणा, अहंकार उत्पन्न होता है। परमात्मा कहते हैं कि पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन पर दर्शन से किसी का फायदा तो होता नहीं, सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर कोई आपको सच्ची बात भी सुनाने आए और आपने सुन लिया, बुद्धि में धारण कर लिया, तो आपका मन और बुद्धि दोनों मैली हो जाएगी, क्योंकि आपने किसी और की कमी कमजोरी को अपने मन और बुद्धि में संभाल कर रख लिया। अगर आपने एक बार भी किसी की बातों को सुन लिया तो सुनाने वाला व्यक्ति बार बार आपके पास आएगा, आप उसके लिए कूड़े का डिब्बा बन जाएंगे। जो भी ऐसा समाचार होगा वो आपके पास ही आकर सुनाएगा, क्योंकि आपने सुना है। आपका मन और बुद्धि कचरे के डिब्बे की तरह बन जाएंगे जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के कमी कमजोरी गलतियों का संग्रह होगा।

इतना निगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने मन बुद्धि में भरने के बाद आप सकारात्मक सोच ही नहीं पाएंगे। अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना मुश्किल लगेगा। परमात्मा कहते हैं, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। कई बार कई लोग कहते हैं कि पता तो चलना चाहिए कि क्या बात है, और दूसरों की गलतियों को बड़े रुचि से सुनते हैं। परमात्मा कहते हैं कि क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? अगर ठीक ही नहीं कर सकते तो सुना क्यों? उससे आपको क्या फायदा हुआ? अपना समय वेस्ट किया, अपनी शक्ति निगेटिव बातों में वेस्ट किया, मन को भटकाया। जितना हम दूसरों के अवगुणों का चिंतन करेंगे उतना वो अवगुण हमारे चित्त पर रहेंगे, और जो अवगुण हमारे चित्त पर रहेंगे वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाएंगे, और जो हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा व्यक्तिमत्व बन जाएगा। अवगुणों का चिंतन करने से अवगुण हमारे अंदर भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि अवगुणों पर ही हमने ध्यान दिया है। जिस पर भी ध्यान लगाएंगे वो चीजें समाज में बढ़ती जाएंगी। अवगुणों का चिंतन करने से वायुमंडल वातावरण खराब होता है, उस जगह का वाइब्रेशन खराब होता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां हमें दिव्य शांत वाइब्रेशन का अनुभव होता है, क्योंकि हम बड़ी ही श्रद्धा से अपने देवी देवताओं के गुणों का वर्णन करते हैं, महिमा करते हैं, चिंतन करते हैं। गुणों का चिंतन करने से हमारा मन भी प्रसन्न शांत होता है, उस जगह के वातावरण सकारात्मक बन जाता है। हम अपने चिंतन से किसी भी जगह का वातावरण निगेटिव बना सकते हैं, और अपने चिंतन द्वारा किसी भी जगह का वातावरण को पॉजिटिव बना सकते हैं। बुराई का निर्माण करने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छाई का निर्माण करें जो हमें भी अच्छा महसूस कराए। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मनोबल तक, आस्था से अस्तित्व तक। पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि किसी की बुराई सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। अगर आप किसी की बुराई सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो जो आप उसको भी सदा के लिए फुल स्टॉप लगा दो, अपने अंदर भी फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का समाचार सुना उसके प्रति दृष्टि में व संकल्प में भी घृणा भाव बिल्कुल नहीं हो, अगर आप उस व्यक्ति को बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, उस व्यक्ति का कल्याण कर सकते हो, तो कल्याण की भावना से भले सुनो, लेकिन अगर आप व्यक्ति को बदल नहीं सकते तो फिर किसी का अवगुण बुराई सुनकर फायदा ही क्या है, इसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमारा मन तो उस व्यक्ति प्रति घृणा, नफरत, द्वेष जैसी निगेटिव भावनाओं से भर गया। निगेटिव भावनाएं हमें भी शांत सुखी रहने नहीं देगी। दूसरों की गलतियों की सजा हम अपने आप को भी देते हैं, अपने मन की शांति खुशी गवाकर। अगर हम किसी को सुधारने के निमित्त है तो सुधारने की भावना से, उसका कल्याण करने की भावना से उस व्यक्ति की गलतियों को सुन सकते हैं। लेकिन अगर हम निमित्त नहीं हैं, हम उसे सुधार ही नहीं सकते, तो उस व्यक्ति के अवगुणों को मन बुद्धि में सजाकर रखने का फायदा ही क्या है। परमात्मा ने हमें मन बुद्धि किसी के अवगुणों को रखने के लिए नहीं दी है, मन अच्छा सोचने के लिए दिया है और बुद्धि परमात्मा के ज्ञान रत्नों को धारण करने के लिए दिया है। जब हम किसी के अवगुणों को सुनकर उसे अपने मन बुद्धि में रखकर अपनी भावनाओं को दूषित करते हैं और मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत क्रिएट करते हैं, तब हमारा उस व्यक्ति के साथ कर्मों का निगेटिव खाता बन जाता है। कर्मों का यह निगेटिव हिसाब किताब का खाता आगे चलकर हमें ही दुख देता है। जन्म जन्म हम सब ने यही किया है, दूसरों के अवगुण देखते आए, उसके बारे में सोचते आए, दूसरों के सामने उसका वर्णन करते आए, ऐसे व्यक्तियों से कर्मों का हिसाब किताब बनाते आए और जन्म जन्म दुख पाते आए। पहले के खाते अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और कहां किसी के अवगुणों को देखकर उस व्यक्ति के साथ कर्मों के हिसाब किताब का नया खाता शुरू करें। हमारे मन से निकलने वाली घृणा नफरत की भावना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है और उसे और ही कमजोर शक्तिहीन करती है, जिसके कारण हमारा पाप का खाता बन जाता है और हम भी दुख पाते हैं। हम उस व्यक्ति को और ही कमजोर करने के निमित्त बन जाते हैं, इसीलिए हमारा भी पाप का खाता बन जाता है, हमारी भी आंतरिक शक्ति घटती है। हमारी सोच निगेटिव नकारात्मक बनती है और हम भी दुख को महसूस करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अगर आपको
किसी की कमी कमजोरी अवगुण नजर आए तो आप उसे दुआ दो, उसके प्रति शुभ भावना रखो ताकि उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़े और वो उस अवगुण से मुक्त होने का प्रयास कर सके। हमें दुआ देकर औरों की आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है। हमारी बददुआ नेगेटिव भावना उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को घटाती है, जिससे हमारा पाप का खाता बन जाता है जो हमें दुख देता है। इसीलिए सभी को दुआएं देनी है, चाहे कोई कैसा भी हो। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, परमात्मा कहते हैं कि अगर किसी एक ने किसी के बारे में कुछ सुनाया तो वो दूसरे को सुनाएगा, दूसरा तीसरे को सुनाएगा और सुनाने में भाव ही बदल जाएगा। अगर कोई अपने हिसाब से सुनाएगा, अपना भाव ऐड करके सुनाएगा, तो बात कुछ होगी और फैलते फैलते कुछ और ही हो जाएगा। तो ये भी वायुमंडल को खराब करता है। एक से बात सुनी तो आठ दस को नहीं सुनावे, यह हो नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं कि समझो आपने चार को सुनाया, उन चार की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब की और परिचिंतन शुरू हुआ तो इसकी गति बड़ी फास्ट और लंबी होती है। किसी के प्रति किसी और की भावनाओं को खराब करना, यह भी पाप के खाते में आता है, क्योंकि आपने जिसे भी सुनाया वो उस व्यक्ति को घृणा नफरत के दृष्टि से देखेगा। उसकी भावनाओं को दूषित करने के निमित्त आप बने तो आपने भी आपके पाप के खाते को बढ़ाया, जिसकी सजा आपको भी मिलेगी। परिचिंतन से हमारे कई मनुष्य आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनने से बंधन हो जाता है। परिचिंतन परदर्शन से हमारे मन की एकाग्रता नष्ट होती है, मन उदासी को महसूस करता है, खुशी समाप्त हो जाती है। परचिंतन परदर्शन से हमारा पुण्य का खाता समाप्त होता है। परचिंतन परदर्शन हमारे बुद्धि के लिए हानिकारक है, ये बुद्धि को भ्रष्ट करती है। जो व्यक्ति हमेशा परचिंतन परदर्शन में रहता है वो भगवान से दूर हो जाता है। उसकी आंतरिक शक्ति नष्ट होने के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता है।

परमात्मा कहते हैं किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के दिल से गिराना, उसकी बुराई करना भी पाप है। परचिंतन परदर्शन में रहने वाला व्यक्ति कभी भी स्व उन्नति नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं कि बुराई सुनने औरों को सुनाने से हमारी खुद की और औरों की अवस्था हलचल में आती है। हम अचल अडोल स्थिर नहीं रह सकते। अगर किसी को सुधारने या शिक्षा देने के कल्याण की भावना से सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे शिक्षा देने के निमित्त नहीं है तो उसे सुनना और फैलाना नहीं है। परमात्मा कहते हैं अगर आपने किसी की गलती कमजोरी सुन ली तो आपके मन के सोच का ब्रेक पावरफुल होना चाहिए। सेकंड में ब्रेक लगाकर फुल स्टॉप लगाने की ताकत आपके पास चाहिए, नहीं तो यह परचिंतन बहुत समय चलेगा जिससे आपका समय एनर्जी वेस्ट होगी। परमात्मा कहते हैं हम खुद की स्थिति को बिगाड़कर औरों को ठीक नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं को दूषित कर घृणा द्वेष भावना रख कर हमने भी गलत किया। एक गलत दूसरे गलत को ठीक नहीं कर सकता। औरों को शिक्षा देने के लिए या सुधारने के लिए पहले हमारी मन की भावनाओं का ठीक होना जरूरी है। हम ठीक होकर ही दूसरों को ठीक कर सकते हैं। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रुति हो, परमात्मा कहते हैं कि परदर्शन पर चिंतन से बचना है तो उसका उपाय है स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, परमात्म चिंतन। स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये है स्वचिंतन। जब हम ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका मनन करते हैं, ज्ञान के ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं, उसे कहा जाता है ज्ञान चिंतन। और जब हम परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उसके दिव्य गुणों का चिंतन करते हैं, परमात्मा के कर्तव्यों का चिंतन करते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा चिंतन। परमात्मा कहते हैं परचिंतन परदर्शन से बचना है तो स्वचिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, सर्व पर परोपकार करो। परमात्मा कहते हैं कि आपका व्यवहार दूसरों के व्यवहार पर डिपेंड ना हो। कोई हमसे अच्छा व्यवहार करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा तो हम भी बुरा व्यवहार करेंगे। तो फिर हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारे असली नेचर क्या है? अगर हमारा व्यवहार अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा तो हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में तो है ही नहीं। कितने अलग अलग स्वरूप धारण किए हैं, इन सारे स्वरूपों में हमारा वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप कौन सा रहा? परमात्मा कहते हैं कोई कैसा भी व्यवहार करे, आप अपने वास्तविक स्वरूप, अपने शांत स्वरूप को नहीं छोड़ो। क्यों हम दूसरों के लिए अपनी ओरिजिनल नेचर को छोड़े? हमारा ओरिजिनल नेचर शांत है, हमें इसी शांत नेचर में टिकना है। परमात्मा कहते हैं व्यक्ति या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आओ, किसी भी हालात में अपनी शांत नेचर को मत छोड़ना। हमें सारा दिन यही पुरुषार्थ करना है कि कोई कैसा भी हो,

कैसा भी व्यवहार करे, हमें हमारे शांत स्वरूप में टिके रहना है। क्यों हम दूसरों के लिए खुद को बदल दे? क्यों हम अपना ओरिजिनल शांत स्वरूप छोड़ दे? क्यों हम अपनी ऊर्जा को घटाएं? क्यों हम हलचल में आए? क्यों हम परचिंतन परदर्शन में अपना समय गवाएं? हमें पुरुषार्थ करना है, अपने शांत नेचर में टिके रहने का, सभी के प्रति शुभ भावना रखकर अपने पुण्य का खाता बढ़ाने का। कभी कभी लगेगा यह आसान नहीं है, हर वक्त शांत रहना, लेकिन हमें अपने प्रयत्नों को छोड़ना नहीं है। जब हम अपना ध्यान दुनिया की बातों से हटाकर परमात्मा पर लगाते हैं, तब परचिंतन परदर्शन से मुक्त होना आसान होगा। वेस्ट से बेस्ट की तरफ ध्यान लगाना है। हम जहां भी ध्यान लगाएंगे उसी ओर हमारी ऊर्जा बहेगी और वो चीजें बढ़ने लगेगी। जब हम परमात्मा के दिव्य गुणों पर ध्यान लगाते हैं, तब हमारे अंदर भी अच्छाई दिव्य गुण आने लगते हैं। परोपकार करना हमारे लिए भी आसान हो जाता है। जब हमारा मन ज्ञान के चिंतन में रहता है, तब हम व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाते हैं। ये विश्व नाटक कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कल्याण समाया हुआ है। ये विश्व नाटक न्यायकारी है, एक्यूरेट है, सही है। यहाँ वही हो रहा है जो कर्मों के फल अनुसार होना चाहिए। सभी मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। ये धरती कर्म प्रधान है, जिसने जो जो बोया है वही पाता है। तो क्यों ना हम पुण्य की खेती करें, सद्भावना शुभ भावना परोपकार के बीज बोकर पुण्य का खाता बढ़ाए। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ríe, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे, रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।

0: क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भले नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगाने।
0: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
1: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
0: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
1: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा।

0: तुम नहीं समझी कैसा खोना। उनके बराबर तोल के सोना मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
1: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
0: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना।
1: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
0: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं कन्हैया।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दूं मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दांतों के बाजार में बेचूं। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी?

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां बिरहा की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी न कभी

0: वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने बार बार अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाए थे। सन 1857 की क्रांति के समय सरजू प्रसाद की उम्र मात्र 17 साल की थी। वे क्रांतिकारी स्वभाव के थे और अंग्रेजों से उन्हें घृणा थी। अपने अध्ययनकाल में उन्होंने तलवार और बंदूक चलाना अच्छी तरह सीख लिया था। उन्हें घुड़सवारी में भी महारत हासिल थी। सरजू प्रसाद सिंह ने 3000 सैनिकों की एक सेना बनाई थी। क्रांति के पथ पर जो पहला काम उन्होंने किया वो था कंपनी सरकार द्वारा नियुक्त तहसीलदार को मारकर रियासत का प्रशासन अपने हाथ में लेना। इसके अलावा उन्होंने कंपनी सरकार की घुड़सवार सेना पर अधिकार करके अपने घुड़सवार नियुक्त कर दिए थे। 1857 की क्रांति के समय 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को अंग्रेजों ने सरजू प्रसाद पर दो तरफा हमला किया। सरजू प्रसाद ने अंग्रेजों की संयुक्त सेना को तहस नहस करके उसके हथियार लूट लिए। 6 नवंबर को मुरवाड़ा के समीप एक बार फिर अंग्रेजी सेना को सरजू प्रसाद के हाथों परास्त होना पड़ा। अपनी निरंतर पराजयों से खिन्न होकर अंग्रेजों ने एक विशाल सेना 14 नवंबर को जबलपुर से भेजी। सरजू प्रसाद के हाथों मेजर जॉन किंग के मारे जाने के कारण ये सेना स्वयं ही भाग खड़ी हुई। सरजू प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करने में अंग्रेजी सेना को कई साल लग गए। जब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो उन्होंने जीवन भर जेल की कोठरियों में सड़ने के स्थान पर जीवन मुक्ति का उपाय अपनाया और अपने पेट में कटार मारकर आत्म बलिदान दे दिया।

0: सुन रहा है ना, साथी हाथ बढ़ाना।
1: हाँ सुन रहा हूँ। तो
0: ये तू है जो अकेले गोवा जा रहा है?
1: तो
0: मतलब तू भूल गया ये गाना किस जमाने का है और आज कौन सा जमाना है?
1: अरे हाँ जानता हूँ, ऊंची महत्वाकांक्षाओं का जमाना है जिसमें एक भयंकर कॉम्पिटिशन प्रतिस्पर्धा मची हुई है, एक अजीब दौड़, एक अजब होड़ मची हुई है। हर कोई आगे निकल जाना चाहता, इस दौड़ में किसी को होश तक नहीं है कि उसका पैर किसके पैर पर पड़ रहा है।
0: अरे गजब है यार, तू तो नेताओं की तरह भाषण देने लगा। अरे मैं तो सिर्फ गोवा साथ चलने की बात कर रहा था।
1: सुन, मैं गोवा नहीं जा रहा हूँ।
0: गोवा नहीं जा रहा? क्यों?
1: प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तेरी ये जो वक्र दृष्टि है ना वो पड़ गई है उसमें।
0: तभी तू पिन्नाया हुआ वे। डोंट वरी, अपन चलते हैं साथ।
1: है? किस साथ की बात कर रहा है ये? आज जब भीड़ में भी आदमी अकेला है, कंबाइंड फैमिली, संयुक्त परिवार टूट रहा है, न्यूक्लियर

0: फैमिलीज बन रही है, पति पत्नी और बच्चों के परिवारों में भी पति और पत्नी स्वतंत्र ध्रुव बनते जा रहे हैं। और तू किस साथ की बात कर रहा?
1: लगता है बेटा आज कोई गहरा झटका खा गए। ए छोटू
2: जी वाले,
1: जरा इधर 3 गुलाबी स्पेशल लगाना।
2: जी।
1: अभी बताओ बेटा क्या हुआ?
0: कुछ नहीं कहिए दादा, बस ये है ना, इसने मेरा मूड ऑफ कर रखा।
1: हाँ वो तो दिख ही रहा है। देखो कह देने से मन हल्का हो जाता है, फिर अब 1 से 2 और 2 से 4 जुट जाते हैं तो बड़ी बड़ी विद्या आसान हो जाती है। कोई खास बात हो तो हम लोगों को बताओ।
0: कहा ना दादा, कोई खास बात नहीं है, कई बार जरा सी बात भी मन को चुक जाती है। और सुन, तू गोवा चलना चाहता है ना, चल चल मेरे साथ।
1: ये वीना बात।
2: चाय का हो गया।
3: अरे गोवा तो मस्ती की जगह है ही, वहाँ से कन्याकुमारी चलेंगे और फिर पोर्ट ब्लेयर।
0: वहाँ क्यों चलेंगे?
3: वहाँ आलू के पराठे बड़े अच्छे बनते हैं।
0: सुना गजबिया दादा, आपका ढाबा छोड़कर ये पोर्ट ब्लेयर आलू के पराठे खाने जा रहा।
3: वहाँ सेलुलर जेल है जहाँ आजादी की लड़ाई में पकड़े गए क्रांतिवीरों को देश निकालने के बाद रखा जाता था, और अब तो वो आजादी के महासमर का महान तीर्थ स्थल बन गया है।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, वाह वाह वाह। पोर्ट ब्लेयर जाओ तो सेलुलर जेल की दहलीज को जरूर माथा टेक कर आ।
0: अब तो गजबीय दादा ने भी टूर प्लान कर दिया है।
1: देखो बेटा, आजादी की लड़ाई के दौरान जो बुनियादी चीज आज याद रखने लायक है वो है एकता।
0: हाँ काका।
1: एकजुटता, जो लड़ाई में राजा महाराजा सामन सिपाही किसान कमलकार आम आदमी सभी एक साथ एकजुट होकर लड़े, यहाँ तक कि दूर जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई भी। हम जीते तो इसी एकता से, और जहाँ हारे वहाँ एकजुटता की कमी के कारण। तो आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी सुना रहे हैं जो अपनी मंजिल पाने के लिए सबको एकजुट रखने में जुटा रहा।
0: कौन था काका वो?
1: वो था जबलपुर जिले का अमर सेनानी विजय राघवगढ़ का राजा ठाकुर सरजू प्रसाद।
2: ठाकुर सरजू प्रसाद के बारे में विस्तार से बताओ ना हम सब।
0: हाँ बताइए ना
1: बेटा। तो सुनो, अक्टूबर 1857 आजादी के महासमर का वर्ष, विजय राघवगढ़ में घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थी।
4: आखिर ये विजय राघवगढ़ में क्या होता?
5: सर, ये रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंतर्गत हमारे पास आते हैं।
4: ये तो उधर की सभी एक्टिविटीज पे कड़ी नजर रखने का, उधर कोई गड़बड़ की खबर होता?
5: सर, आपको याद होगा 1826 में विजय राघवगढ़ कटनी जिले में मेहर जागीर का एक भाग था।
4: यस, मालूम है 1826 में ही तो ठाकुर दुर्जन सिंह की मौत पे उनके 2 सन के बीच बंटवारी में ठाकुर विष्णु सिंह को मेहर और ठाकुर प्रयागदास को विजय राघवगढ़ मिला।
5: यस सर, 1845 में जब ठाकुर प्रयागदास की मृत्यु हुई तब उसका बेटा सरजू प्रसाद केवल 5 साल का था, इसलिए तो अंग्रेज सरकार ने रियासत की देखभाल कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत अपने हाथ में ले ली।
4: पर उधर ये बगावत की तैयारी का खबर कैसा?
5: कोई बगावत नहीं सर, असल बात ये है कि मेहर जागीर के ठाकुर विष्णु सिंह के जो बेटे हैं, विष्णु सिंह ने बड़े बेटे मोहन प्रसाद को अपना वारिस बनाया था।
4: ओके।
5: अब जब मोहन प्रसाद की मौत हुई तो विष्णु सिंह का छोटा बेटा नेपाल सिंह राजा बनना चाहता है, पर गवर्नर जनरल के एजेंट ने मोहन प्रसाद के बेटे को वारिस घोषित किया है।
4: तो फिर
5: अब नेपाल सिंह अपने कजन विजय राघवगढ़ के राजा सरजू प्रसाद से मदद मांगता है, महज घरेलू झगड़ा है।
4: पर इसे लाइटली नहीं लेने का, हमारे पास खुफिया रिपोर्ट, नेपाल सिंह सरजू प्रसाद को और उसके सरदारों को उसकी जनता को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़काता, तुम इस पे कड़ी नजर रखो।
5: यस सर।
1: कमिश्नर कटनी की खबर बेबुनियाद नहीं थी। सन 1857 में जब जबलपुर में विद्रोह सुलगा तो विद्रोह की आग कटनी जिले में भी फैल गई। विजय राघवगढ़ में सरजू प्रसाद ने और मैहर में नेपाल सिंह ने विद्रोह की बागडोर अपने हाथों में ले ली।
6: देखा तुम, वही हुआ ना जिसका हमको डर था, बगावत। ओ बगावत, आखिर विजय राघोगढ़ का राजा बगावत किया, तहसीलदार साबित अली और उसका 23 को मारा, उनका सब प्रॉपर्टी लूटा, थाने पे कब्जा किया और चुके ही के डाक बाबू को कैद किया, पूरा का पूरा बगावत किया।
5: सर, ये सारा नेपाल सिंह का खेल था, उसी ने अपने भाइयों और राधे उर्मितिवा के साथ मिलकर विजय राघोगढ़ के राजा सरजू प्रसाद को उकसाया।
6: इस हैदराबाद कंटीजेंट के दफेदार से पूछो इसने क्या देखा, तुम बताओ।
3: हुजूर, हमने देखा गांव के दोनों छोरों पर बांसों की बाड़े खड़ी कर दी गई हैं। इनमें से हर एक बाड़ पर विजय राघोगढ़ के राजा की 10-10, 15-15 सिपाही तैनात हैं।
5: और क्या देखा तुमने?
3: और हुजूर, वहाँ फारसी, हिंदी और अंग्रेजी लिखावट पढ़ने वाले मुंशी भी थे हुजूर। और हुजूर, उन्होंने हमारी तलाशी ले ली, हमारे पास से सभी कागजात पत्र आदि सब ले लिए और हमारे सब रुपया पैसे भी छीन लिए हुजूर।
5: उनका साहब कौन था?
3: हुजूर, वहाँ राजा के एजेंट का नाम बख्तावर बरेरिया बताया हुजूर।
6: और उधर खिलवाड़ा में क्या हुआ वो भी बताओ।
3: खिलवाड़ा में हमें विजय राघोगढ़ के 5-6 सिपाही मिले हुजूर, उन्होंने हमारी फिर से तलाशी ली।
6: कुछ पता चला कौन लोग शामिल था इस बगावत में?
5: यस सर, राजा सरजू प्रसाद के करीब 3,000 लोगों के साथ शाहगढ़ और मानगढ़ के राजे और साथ ही नारायणपुर के ठाकुरों के मिल जाने के कारण विद्रोहियों की संख्या काफी अधिक हो गई है। विद्रोहियों में लाला छगर सिंह, दीवान शारदा प्रसाद, गणेश बुद्धि सिंह, मुकुल सिंह, दीवान दलगंजन सिंह, बीरू मिस्त्री, शिवलाल बारी खिलेदार और खिलवाड़ा का थानेदार राम प्रसाद आदि प्रमुख हैं।
6: और उनका लीडर कौन होता?
5: विजय राघोगढ़ का राजा सरजू प्रसाद और मेहर का नेपाल सिंह।
1: वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो विजय राघोगढ़ से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए रीवा राज्य ने अंग्रेजों से संधि कर ली।
7: आपने सुना, रीवा और नागौद राज्यों की सेनाएं अंग्रेजों के साथ मिल गई हैं?
8: हाँ, हमें पता है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि अपने निजी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए हम देश के बड़े हित को भूल जाते हैं। अरे, फिरंगियों को हमारी इस कमजोरी का पता है और वो इसका पूरा पूरा लाभ उठाते हैं।
7: माना रीवा और नागौद राज्यों को अंग्रेजों से हाथ मिलाकर ब्रिटिश सरकार के स्वामी भक्त होने का तमगा मिल जाएगा और उनकी गद्दी भी सलामत बनी रहेगी, पर हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी से उनको फायदा क्या होगा?
8: हमें नीचा दिखाने का मौका वो कैसे छोड़ सकते हैं?
7: इसका क्या मतलब है?
8: हमारे स्वर्गीय पिता ठाकुर प्रयागदास जी ने रीवा राज्य का खितौली इलाका जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तभी से हमारे राज्यों के बीच दुश्मनी ठन गई। अंग्रेजों के सहयोग के कारण रीवा और नागौद की सम्मिलित सेना के पास हमारे मुकाबले अधिक सैनिक और शस्त्र हैं। फिर भी हमारे रणबांकुरे सैनिकों का उत्साह अजब गजब का है।
7: तभी तो विजय राघवगढ़ पर चारों ओर से आक्रमण होने के बावजूद हमारे सैनिक उनके हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
8: वैसे ये कैमूर इलाके से हाल ही में खबर आई है अभी।
7: अच्छा, क्या खबर आई है? अरे, उधर तो दीन बंधु के नेतृत्व में बघेला सेना ने हम पर आक्रमण किया था।
8: हाँ, पर हमारे लाल सिंह दौआ के युद्ध कौशल के आगे बघेला सेना की एक नहीं चली, उनके पैर उखड़ चुके हैं।
7: ये तो अच्छी खबर है भाई।

0: पर इधर की खबर अच्छी नहीं है।
1: क्यों, ऐसा क्या हुआ? इधर तो हमारे दो सेना नायक सरदार रामबोल और वंदन चाचा मोर्चा संभाले हुए हैं। उनकी तोपों की गर्जन से दुश्मन की सेना में हाहाकार मचा हुआ है।
0: अरे ये खबर पुरानी खबर हो गई है। ये सच है, रामबोल और वंदन चाचा की रामबाण और बम गर्जन तोपों ने दुश्मन की सेना में भारी तबाही मचाई है।
1: हाँ।
0: और इसके चलते रीवा, नागौद और ब्रिटिश तीनों सेनाओं ने अपना निशाना इन तोपों को बना लिया। वंदन चाचा शहीद हो गए।
1: अरे।
0: पर रामबोल लड़ता रहा, लगातार आग बरसाता रहा। जब युद्ध करते करते रामबोल भी शहीद हो गया तो उसकी वीरांगना पत्नी नैनी ने युद्ध संचालन अपने हाथ में ले लिया।
1: अच्छा, लेकिन अब क्या स्थिति है
0: नेपाल सिंह? स्थिति अच्छी नहीं है। इस मोर्चे की सभी तोपों पर अंग्रेजी सेना का अधिकार हो चुका है। हाँ, नैनी के अधिकार में बची एकमात्र तोप ने अंग्रेज सेनापति कोयल को भागकर ज्योतिषी के घर रात बिताने को मजबूर कर दिया है।
1: यानी अभी भी स्थिति हाथ से निकली नहीं है। मैं मोर्चे के लिए अतिरिक्त लड़ाके भेजने का इंतजाम करता हूँ।
2: उसके बाद क्या हुआ गजबिये काका?
3: पर बेटा, स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ गई।
2: क्यों काका?
3: बंगाल सेना दमोह और सागर में विद्रोह कुचलने के बाद विजय राघवगढ़ आ पहुंची। इससे स्थिति एकदम बदल गई। रीवा की सेना ने दुगने उत्साह से विजय राघवगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया।
2: फिर नैना का क्या हुआ गजबिये काका?
3: नैना भी मारी गई। स्थिति को हाथ से निकलते देख सरजू प्रसाद और नेपाल सिंह किले से चुपचाप निकल गए और किले का नियंत्रण और रखवाली नेपाल सिंह के भाई मुकुंद सिंह के जिम्मे आ गया। रीवा सेना और अंग्रेजी फौजें लगातार किले पर आक्रमण करती रही।

0: Oh, congratulations, Mr. Osborne.
1: Oh, thank you, Mr. Commissioner.
0: रीवा के पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर ऑसबर्न का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आखिर आपने विजया राघवगढ़ का किला जीत ही लिया।
1: बट कमिश्नर, ये काम इतना आसान नहीं था। किला काफी मजबूत है, फिर उसका अंदर बैठा बागी लोग काफी महफूज था।
0: लेकिन तुम्हारे पास तो काफी संख्या में तोपे थी। 13 तोपे तो रीवा सेना की ही थी, फिर तुम्हारी अपनी तोपे। सुना है बागी तो केवल बंदूक और तलवारों से लड़ रहे थे।
1: ओ करेक्ट मिस्टर कमिश्नर, हमारे पास काफी संख्या में तोपें थी, पर किले की मजबूती के आगे हमारी तोपें कुछ नहीं कर पा रही थी।
0: तुम ठीक कहते हो, मेरे पास रिपोर्ट है। किले पर कब्जा करने भर के लिए 9 दिन तक बहुत सीरियस युद्ध चला।
1: पर मिस्टर कमिश्नर, ये भी सच है, तोपों के बल पर ही हम ये जंग जीत पाया।
0: बागियों के लीडर सरजू प्रसाद और नेपाल सिंह कैसे बच निकले? उनका तो सफाया हो जाना था।
1: लेकिन हमको बताया गया, वो तो हमारे विजय राघवगढ़ पहुंचने के पहले ही भाग गए थे, जब उनका आखिरी टॉप बेकार हो गया था। किले का जिम्मा तो नेपाल सिंह के भाइयों के पास था।
0: सुना बागियों ने समर्पण करना चाहा था?
1: ओ यस यस कमिश्नर, वो सरेंडर के लिए शर्त रख रहे थे। हमने उनकी कोई शर्त नहीं माना। 100 के करीब बागियों को पकड़कर फांसी पर लटका दिया।
0: अब किले का हालत कैसी है?
1: बहुत खराब है। हमने किले को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब कोई बागी वहां छिपने का बात तक सोच नहीं सकता है।
2: फिर काका ठाकुर सरजू प्रसाद कहाँ गए?
3: ठाकुर सरजू प्रसाद जब विजय राघवगढ़ के किले से भागे तो उनके सामने समस्या थी कि किधर जाए। उसे पश्चिम बुंदेलखंड की याद आई, जहां बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बहद बली विद्रोह की आग जलाए हुए थे।
2: अच्छा।
3: उसे अपनी मंजिल शाहगढ़ ही नजर आई।

0: ठाकुर सरजू प्रसाद जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप इधर चले आए।
1: हमारा किला चारों ओर से घिर चुका था। किले पर हमले तेज होते जा रहे थे। हमारे तोपची मारे जा चुके थे और किसी भी समय दुश्मन की फौजें अंदर घुस सकती थी। उस समय जब हमने किला छोड़ा, हमें नहीं मालूम था हम कहां जा रहे हैं।
0: अच्छा, एक बात बताएं, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहां घनघोर जंगल के बीच सौरई में मौजूद हैं?
1: बखत बली जी, हमें यहां की जानकारी शागर से ही मिली। हम पहले से भी शागर के संपर्क में रहे हैं।
0: ठाकुर साहब, अब हमें सोचना है कि फिरंगी सेना को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। वैसे शायद अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपका विजय राघोगढ़ का किला बर्बाद हो चुका है और आपकी रियासत मेहर और सोहावल रियासतों के साथ पॉलिटिकल एजेंट आसबोर्न के अधिकार में दे दी गई है।
1: हाँ, जब हम फकीरों के वेश में यहां के लिए पलायन कर रहे थे तो रास्ते में लोगों से हमें सारी खबरें मिल गई थी।
0: अच्छा, तो अब तय ये रहा कि आप हमारे साथ घमौनी चल रहे हैं। वैसे आपके साथ आदमी कितने हैं?
1: सिर्फ 300 सिपाही, 7-8 सवार और 2 छोटी तोपें।
0: मतलब आपकी बड़ी 13 तोपें किले में ही रह गईं?
1: जी, ये भी इसलिए बच गए क्योंकि हम फकीरों के वेश में थे और हम खमर 12 की गली में जाकर छिप गए थे।
2: और राजा बखत बली की फौज के साथ ठाकुर सरजू प्रसाद ने भी धमौनी के पास पड़ाव डाल लिया।
3: राजा साहब का इकबाल बुलंद हो।
0: आओ सामंत, क्या खबर लाए हो?
3: हुजूर, खबर मिली है कि अंग्रेजी फौज नारहट की ओर बढ़ रही है।
0: यानी हमें नारहट की ओर कूच करना होगा? सुन रहे हो ना ठाकुर साहब?
1: हाँ, हम सुन रहे हैं। तो जल्दी ही इम्तिहान की घड़ी आ गई।
0: इम्तिहान की नहीं ठाकुर साहब, प्रतिशोध की घड़ी कहिए, प्रतिशोध।
3: हुजूर, खबर है कि ब्रिटिश फोर्स को परोल गांव पहुंचना होगा।
2: परोल गांव के पास ही विद्रोही सेना और ब्रिटिश फोर्स के बीच घमासान युद्ध हुआ। विद्रोह सेना का आक्रमण इतना भीषण था कि अंग्रेजी सेना के पेड़ उखड़ गए और उसे लौटना पड़ा। भारत माता की जय।
1: बधाई हो राजा साहब, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, उनका काफी असलाह हमारे हाथ लगा है।
0: आपको भी बधाई ठाकुर साहब। पर ठाकुर साहब, आपका रण कौशल तो देखते ही बनता था।
1: क्यों मजाक करते हैं राजा साहब, ये तो आपकी फौज का जुनून और हमारी योजना का नतीजा था कि अंग्रेजी सेना को भागना पड़ा।
0: ठाकुर साहब, आप नाहक नम्रता बरत रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे। आपका साथ पाकर हमारा हौसला कई गुना बढ़ गया है ठाकुर साहब।
1: अरे, ये तो आपका बड़प्पन है जो इस नाचीज को इतना सम्मान दे रहे हैं। पर हमें लगता है इस पड़ाव पर हमें स्थायी निगरानी चौकी बनानी होगी।
0: आप ठीक कहते हैं, पर हमें अंग्रेजों की चाल पर भी नजर रखनी होगी। शायद आपको पता नहीं है, ब्रिटिश सरकार ने विजय राघोगढ़ के बागियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की है।
1: अच्छा। क्या इनाम रखा है हम पर, जरा हमें भी तो पता चले।
0: इस घोषणा में 9 लोगों के इनाम है। राजा सरजू पर 3,000 रुपए का इनाम है। और सरजू प्रसाद के बहनोई छतर सिंह पर 300 रुपए, दीवान सारदा प्रसाद पर 300 रुपए, दीमान दल गंज सिंह पर 200 रुपए,
1: अच्छा,
0: जमादार बीजू मिस्त्री पर 100 रुपए, और ये किलेदार शिवलाल बर्री पर भी 100 रुपए, और केलवारा थानेदार राम प्रसाद पर भी 100 रुपए इनाम रखे।
1: भाई वाह राजा साहब, अब हमारी कीमत 3,000 रुपए हो गई।
0: ठाकुर साहब, 3,000 रुपए तो आपकी नौशावर हैं।
1: और क्या क्या घोषणा

0: की हैं हमारी फिरंगी सरकार ने
1: घोषणाएं की हैं कि रीवा के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन रीवा राज की फोर्स ने विद्रोहियों को मेहर विजय राघोगढ़ और सोहागपुर के राज्यों से बाहर निकाल दिया है और कंचनपुरा जूरा मेहर जुकेही कनबर्रा और विजय राघोगढ़ के किले पर भी एजेंट ने अपना कब्जा कर लिया है।
0: ये खबर तो हमारे पास है।
1: इन घोषणाओं की जानकारी आपको देने का एकमात्र मकसद ये है कि अब हमें छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना पड़ेगी। ठाकुर साहब,
0: आप ठीक कहते हैं राजा साहब, अब तो भेष बदल कर रहने में समझदारी है।
1: सो तो ठीक है, पर हमें अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से बाहर भगाने के लिए सब ओर से सहयोग जुटाना होगा।
2: अपनी खोई शक्ति फिर से संजोने के लिए ठाकुर सज्जू प्रसाद सब ओर से सहयोग जुटाने में जुट गए।
3: ठाकुर साहब, आपने 21 मार्च 1858 को तात्या टोपे को जो पत्र लिखा था उसका जवाब आया है।
0: उन्होंने क्या उत्तर दिया है?
3: बड़ा ही उत्साहवर्धक उत्तर दिया है।
0: अच्छा?
3: लिखा है, ठाकुर सज्जू प्रसाद जी, हमें खुशी है कि आप बानपुर के राजा मर्दन सिंह और शाहगढ़ के राजा बखत बली के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से मार भगाने के यज्ञ में जुटे हैं।
0: हाँ।
3: उधर अंग्रेजों को सबक सिखाने का काम आप लोग करें, इधर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने के लिए झांसी की ओर जा रहे हैं। आशा है जल्दी ही कहीं मुलाकात होगी।
0: सचमुच?
3: हाँ,
0: बड़ा उत्साह बढ़ाने वाला जवाब है। ऐसा ही जवाब नाना साहब पेशवा का आया है। उन्होंने लिखा है, हमारी प्रतिज्ञा है हम किसी भी कीमत पर अपनी आजाद शाही को नहीं गंवा सकते। ध्यान रहे, बादशाही नहीं आजाद शाही। हमें खुशी है आप सभी राजा हमारे साथ हैं। ईश्वर ने चाहा तो हम जल्दी ही मिलेंगे।
3: सचमुच बड़ा प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पत्र है ये।
0: आप ठीक कहते हैं राजा साहब, ये पत्र हमारे संकल्प को नई शक्ति प्रदान करते हैं।
3: वाकई,
0: क्योंकि ये हमें एक दूसरे से जोड़ने के साथ हमारी हिम्मत भी बढ़ाते हैं। ये सूबेदार बहादुर सिंह जी ने लिखा है।
3: अच्छा?
0: लिखते हैं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब अपने प्राण बचाना जरूरी होता है, पर जीवन में कभी कभी ही ऐसे अवसर आते हैं जब अपनी जान निछावर कर देना सौभाग्य कारक होता है। हमारी रक्त की हर बूंद से हजारों वीर उठ खड़े होंगे जो उन्हें देश से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे।
2: बेटा, ये वो समय था जब आजादी के लिए मर मिटने, सब कुछ कुर्बान कर देने की भावना चरम पर थी। अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह को बर्बरता से कुचलना शुरू किया। हजारों विद्रोही पकड़े गए, सैकड़ों लोग मार डाले गए, फिर क्षमादान की आम घोषणा का नाटक रचा गया। मुखबिर की खबर पर ठाकुर सज्जू प्रसाद भी पकड़े गए। सन 1864 में उन्हें बंदी बनाया गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, आजीवन कारावास की सजा के तहत उन्हें रंगून ले जाया जा रहा था, पर अपमान के बजाय मौत को अधिक अच्छा मानते हुए उन्होंने खुद को खंजर मारकर अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया।
4: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
5: उनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: बीइंग ब्लिस में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: ये जो बात हो रही थी शराब की, दुआओं की, ब्लेसिंग्स की, अपनी थॉट्स से ही हमें शराब और वरदान मिलता है, जो लासा अहमद से आपकी बात हो रही थी। तो मेरी डिस्कशन हो रही थी एक पुलिस मैन से, और मतलब काफी सीनियर पोस्ट, कुछ पिक्चर के बारे में बात करनी थी, तो वो आए मुझसे मिलने। तो मुझसे कहने लगे मैं वापस जेल जा रहा हूं। तो मैंने कहा आप जेल में क्यों हैं? बोले मैं पेरोल पे आया हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने अंडरवर्ल्ड के लोगों को उस एरिया में मारा था कि मुझ पे कुछ फ्रेम हो गया कि गलत मार दिया, जानबूझ के मार दिया, कि आपने प्लांट किया इस आदमी को और फ्रेमिंग की, तो अभी मैं केस लड़ रहा हूं कोर्ट में। तो उन्होंने बातचीत करते करते बोले पता नहीं कौन देवी देवता नाराज है, पता नहीं मुझे किसका श्राप लगा। तो मैंने बड़ी एक थॉट आई आपकी बात करने के, आपसे बात करने के बाद। मैंने उनसे कहा आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने जितने लोगों को मारा एनकाउंटर में, तो क्या इज इट पॉसिबल कि वो लोग आपको मारना चाहते थे? तो बोला 100%। उन्होंने तो कई पुलिस ऑफिसर्स को भी मारा, उन्होंने तो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी मारा है। तो मैंने बोला आपको सेफ्टी किसने दी? जेल ने। तो आप जेल को शराब समझोगे या जेल में आप सिक्योर्ड हैं? मैंने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी, सेफ्टी दी, तो आज आप जिंदा हैं ताकि आप अपने बच्चों के साथ आज मेरे घर आए हैं।
2: राइट। लेकिन इसमें भी वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन जो आपने कहा भगवान ने आपको सिक्योरिटी दी,
1: जिन्होंने भाई उनकी लैंग्वेज में कहा ना,
2: नहीं क्योंकि ये लैंग्वेज को ही चेक करना है, ये लैंग्वेज को ही अब चेक करना है। कहीं एक बार हम कहते हैं देवी देवताओं ने हमें श्राप दिया, फिर अगर उसी बात को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर पॉजिटिविटी जैसे निकल कर आई कि आपके साथ जो हुआ वो एक्चुअली आपके लिए यूजफुल था, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल था, आपकी लाइफ इतनी सुंदर, मतलब ठीक है आप घर से अलग हैं लेकिन प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर हैं, अपने परिवार के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्टेक्ट में हैं और यहां से भी रिलीज होकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये भी क्यों हुआ? अब इसमें भी अगर हम कह दें क्योंकि देवी देवताएं हमारे से खुश हैं या भगवान ने मेरे लिए ये कर दिया, तो एक में एक रूल और दूसरे में दूसरे रूल नहीं यूज हो पाएगा। जो हमने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए, और सिर्फ इस जीवन में नहीं अनेक जन्मों में, तो हमने श्रेष्ठ कर्म भी किए, कुछ थोड़े से दूसरे कर्म भी किए, ये एक कॉम्बिनेशन की तरह हमेशा हमारे सामने आएंगे। इट विल नेवर बी, लाइफ विल नेवर बी ब्लैक एंड व्हाइट कि अभी सारे अच्छे वाले कर्मों का फल है, अभी ये अच्छे कर्मों का फल साइड पे हुआ, अभी ये सारे मेरे गलत कर्मों का फल आ रहा है, नहीं। इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस। एंड इसीलिए आप देखो प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ कोई उसमें सोल्यूशन भी दिखता है, कभी कभी प्रॉब्लम में ही कल्याण दिखता है। राइट। अब ये सब होगा किस पे डिपेंडेंट? हमारे प्रेजेंट थॉट्स पे भी। एक है प्रॉब्लम आई, प्रेजेंट थिंकिंग आपकी सोल्यूशन ओरिएंटेड हुई, प्रेजेंट थिंकिंग ने आपने उसके अंदर कल्याण ढूंढा। ये भी हो सकता है प्रेजेंट थिंकिंग में आप उसके अंदर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम का ही चिंतन करते रहे, लेकिन ये दोनों चीजें जो आई वो हमारे पिछले कर्मों का फल है, पिछले और अभी के, इस जन्म के पिछले कर्मों का फल है। ये बार बार बार बार बार बार रीइन्फोर्स करना होगा, बार बार रीइन्फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्रिएट्स डेस्टिनी। तो वो बिलीफ सिस्टम पुराना वाला अब छोड़ना होगा ताकि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर हर चीज में लेनी पड़ेगी। लोगों पर भी ब्लेम नहीं, भगवान पर भी ब्लेम नहीं, देवी देवताओं पर ब्लेम नहीं, प्रकृति पर ब्लेम नहीं,

ग्रहों पर ब्लेम नहीं, किसी पर ब्लेम नहीं, किसी की नजर पर ब्लेम नहीं, किसी की सोच मेरे प्रति जो है उस पर ब्लेम नहीं। अब परमात्मा का इसमें क्या रोल है? परमात्मा का रोल ये है कि परमात्मा शक्तियों का सागर है। परमात्मा मेरा कर्म नहीं चेंज कर सकता, परमात्मा मेरे पिछले कर्म का जो फल आ रहा है उसको भी नहीं लिखता है, ना वो जब आने वाला है वो उसमें कोई चेंज ला सकता है। ये परमात्मा का रोल नहीं है। अगर परमात्मा ये करे तो फिर

0: सही तरह से उसको फेस करते हैं, लेकिन जो आया, जो बात मेरे सामने आई, उसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं था।
1: मेरा ही पास करना था,
0: टोटली मेरा ही है। दिस वी हैव टू बी लाइक, क्योंकि इतना डीप इनग्रेन्ड है ना, कि करते भी हैं फिर धीरे धीरे वापस पुराने बिलीफ सिस्टम पे
1: जाते हैं। ये पुलिस ऑफिसर को मैं ये कह सकता हूँ, जो आपने अच्छे कर्म किए, दुष्ट को मारा, लोगों को बचाया, लोगों को जो लोग दुखी कर रहे थे, राक्षस समझो, उनको तुमने एलिमिनेट किया, उनको जेल में डाला, उनकी दुआओं से आज आप सेफ्टी में हैं।
0: उन विक्टिम्स की दुआएं आपके श्रेष्ठ कर्मों से जो आपको मिले। सो एम्पावर द सोल। सी द मिनट आई
1: फाइनली, नो ब्लेम गेम, नोबडी एल्स, मतलब मेरे कर्म अच्छे थे, जो मैंने अच्छा कर्म किया तो आपकी दुआ मिली, आपकी दुआ मिली तो उसका मुझे भला हुआ।
0: एब्सोल्युटली। और मेरे कुछ पिछले, कुछ हो सकता ना, कहीं कुछ ये भी था, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये छोटा चैलेंज आया है, लेकिन इस चैलेंज में भी अब
1: कल्याण है।
0: हाँ, कल्याण भी है, लेकिन इस पीरियड को क्रॉस करने के लिए भी अब अगर मैं अच्छा सोचता रहूंगा, अब परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर अपनी स्थिति को स्टेबल रहूंगा, तो ये फेज भी मेरे लिए उतनी सफरिंग नहीं लाएगा। सिर्फ परिस्थिति और सफरिंग, ये दो चीजें अलग अलग है। अब परिस्थिति है, लेकिन सफरिंग कितनी होनी चाहिए वो हमारी चॉइस होगी। कई बार परिस्थिति छोटी होती है, सफरिंग ज्यादा है, और किसी के लिए परिस्थिति बड़ी होती है, सफरिंग कम। तो मतलब जो पास्ट कार्मिक अकाउंट था वो बड़ा था, इसलिए परिस्थिति बड़ी आएगी, लेकिन प्रेजेंट स्थिति बहुत अच्छी है तो सफरिंग कम होगी, तो प्रेजेंट डेस्टिनी। तो हम इवन अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट के इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकल सकते हैं। सी, ब्लेम गेम और इन्फ्लुएंस से जब बाहर निकलने की बात आ रही है, कि आई एम्पावर माई सेल्फ ताकि बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस मुझ पर कम पड़े, लोगों की सोच, प्रकृति, परिस्थिति, प्लैनेट्स, ये सब का मुझ पर प्रभाव पड़ता है। कब पड़ता है? जब मेरी अपनी स्थिति
1: कमजोर
0: है। अब मैं अपनी स्थिति को ऊपर जितना उठाऊंगा, तो कोई मुझे कहे आपके ऊपर फला समय 6 महीना ग्रहचारी है, तो वो तो है, वो प्लैनेट तो है, इट्स नॉट गोइंग अवे एनीवेयर। प्लैनेट है, प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन्फ्लुएंस कितना होना है और कितना इन्फ्लुएंस से ऊपर निकलना है, वो पावर मेरे पास है। अब सिमिलरली पास्ट कार्मिक अकाउंट है, वो तो मेरा ही क्रिएटेड कार्मिक अकाउंट है, वो भी वापस आएगा, लेकिन पास्ट कार्मिक अकाउंट से प्रेजेंट में कितना इन्फ्लुएंस होना है और कितना पास्ट कार्मिक अकाउंट के भी इन्फ्लुएंस से ऊपर उठना है, ये भी अब मेरे पास पावर है। जो अब आपने वो पुलिस ऑफिसर की स्टोरी बताई, वो जेल में है, इतने सीनियर ऑफिसर होके अरेस्टेड है, अलग रह रहे हैं, ये रिटर्न ऑफ पास्ट कार्मिक अकाउंट है।
1: नहीं बट सिस्टर, इन्होंने तो किसी का कुछ नहीं किया, इन्होंने
0: सिचुएशन,
1: इनके जूनियर्स ने किसी रॉन्ग आदमी को मार दिया जो कि क्रिमिनल नहीं था।
0: सिचुएशन, लेकिन आज सामने क्या है,
1: तो बचाया गया ना इनको।
0: सेफ
1: इन अ जेल,
0: सेफ बट इन अ जेल ना, जेल में आना भी तो एक कार्मिक अकाउंट है ना, ये देखना। सी हाउ दे आर ऑल इंटरट्विंगल्ड एवरीथिंग, कैसी छोटी छोटी छोटी छोटी, इट्स लाइक अ जिग्सॉ पजल, एक एक टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा ऐसे होता है अलग अलग, ये सारे कर्मों का खेल एक जिग्सो पजल की तरह आता है साथ साथ।
1: लेकिन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से सपोज इनको जेल थी,
0: हाँ।
1: लेकिन जेल में कैसे रखा जा रहा है, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, आप पीएचडी करो, आप पढ़ो, आप 2 घंटे अपना योगा करो, पढ़ाओ सिखाओ, हाँ। तो

0: इज बीइंग ट्रीटेड एज अ,
1: तो इसीलिए गलत वाला भी आ रहा है, अच्छे वाले भी आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला भी आ रहा है, दुआओं वाले भी आ रहे हैं, सीधा जिग्सो पजल कैसे बनते हैं।
0: तो जेल में बैठ के भी वो दुआएं ले रहे हैं।
1: अब ये जिग्सो पजल को अगर हम ऐसे होकर देखें, थोड़ा सा डिटैच्ड ऊपर उठ के देखें, तो हमें पूरी पिक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगी कि कुछ मेरे इस कर्मों का रिजल्ट है और मेजोरिटी मेरे बहुत श्रेष्ठ कर्मों का रिजल्ट है, लेकिन ये पूरी पजल मेरी क्रिएटेड है, ये पूरी पजल मेरी ही क्रिएशन है, इसमें किसी और की कोई पावर नहीं है, इसमें परमात्मा का इस पजल को क्रिएट करने में कोई रोल नहीं है, ये सारे टुकड़े मेरे हैं। अब मैं परमात्मा से क्या ले सकता हूँ? इट्स लाइक अ चाइल्ड जो वो जिग्सो पजल अपनी खेल रहा है बैठ के, नो सारे पीसेस सब जम्बल्ड होके उसके पास पड़े हैं। पेरेंट यहाँ है, पेरेंट का पजल नहीं है वो, ना पेरेंट ने वो टुकड़े दिए हैं जो उस जिग्सो पजल में है, वो जिग्सो पजल इस बच्चे की है, अपनी है, और अब इस बच्चे ने ही उसको सॉल्व करना है। पेरेंट का क्या रोल है? पेरेंट का रोल है कि बच्चा जब खेल रहा है, अगर उसको कुछ थोड़ा सा नहीं पता चल रहा तो वो एक नजर यहाँ करता है, आप बताओ ना क्या करना चाहिए, एंड पेरेंट एक वर्ड देगा ऐसे ऐसे करके, एंड वो ऐसे करने से उसकी पूरी गेम ही बदल सकती है। टेक गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स एंड नॉलेज टू सॉल्व योर जिग्सो पजल।
0: तो पेरेंट आपने जो शब्द यूज किया, हाँ, इससे मेरे मन में पता क्या थॉट आई, परम पिता,
1: हाँ, परमात्मा,
0: परम आत्मा,
1: एब्सोल्युटली। इंस्टेड ऑफ सेइंग ये भगवान ने मेरे साथ ये किया, ये भगवान ने मेरे, अगर मैं भगवान को ब्लेम करूं जिस जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम देवी देवताओं को, परमात्मा को ब्लेम करते हैं, या ब्लेम भी नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, या उनको ये पावर देते हैं कि उनकी वजह से ये हो रहा है, तो हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक टाइम पे एक ही थॉट, जो हमने पहले भी देखा था, कि हम किसी के लिए अगर जिस समय गुस्सा है उस समय प्यार की एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाएगी। इफ आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम इन माई लाइफ, फॉर द पेन इन माई लाइफ, आई कैन नॉट फील लव एट दैट टाइम। तो हमारा जब हम ये बिलीफ सिस्टम इसलिए इतना क्रिटिकल है कि वो परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है, प्यार का सागर है, वो सिर्फ सुख देता है, वो सुख का सागर है, उस परमात्मा को अगर अपने जीवन की प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया, तो फिर उसके सुख का जो सागर है, कल्याण का सागर है, वो एनर्जी भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैंने ही ब्लॉक कर लेना अपने आप को, मेरा ही कनेक्शन उससे टूट जाएगा, क्योंकि अब या तो फियर है, भगवान के लिए डर है, या फिर उससे नाराज है। अब क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम्स के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराना, उसके लिए प्रैक्टिस ये भी करनी पड़ेगी कि जो मेरे जीवन में अच्छी चीजें हो रही है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना।
0: ये बात यहाँ तक के अंदर मेरे मतलब खून में सेल्स में घुसी हुई है। एक नया ड्राइवर रखा था मैंने, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 साल पहले की बात। वो January 1st को ज्वाइन किया और मेरी 1.5 महीने की शूटिंग थी, सारी की सारी कैंसिल। मैंने कहा नया साल, नई शूटिंग, नई फिल्म कैंसिल, कितना अनलक्की ड्राइवर मिला मुझे।
1: ये तो बहुत घरों में होता है, बेटे की शादी होती है, बहू आती है, अब बहू के आते ही अगर घर में कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये अनलकी है हमारे लिए। अच्छा, कोई किसी के आने से कुछ अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। बच्चा पैदा हुआ, कुछ डिफरेंट अच्छा हो गया, वो लकी है हमारे लिए। नहीं, मेरे श्रेष्ठ कर्म भी थे, मेरे श्रेष्ठ कर्म नहीं हो तो मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता। किसी और के श्रेष्ठ कर्म की वजह से मेरे साथ अच्छा हो, ये नहीं हो सकता।
0: अगर मेरा बच्चा जो अभी पैदा होने वाला या हो गया,
1: हाँ,
0: वो भी अपने कर्म लेके तो आया ना,
1: हाँ,
0: तो उसके कर्म भी तो मुझे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, मुझ पर असर करेंगे ना,
1: उसके कर्म उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे।
0: उसको जो दुआएं लेके कैरी फॉरवर्ड करके पिछले जन्म से अच्छे अच्छे दुआएं, अच्छे अच्छे कर्म लेके आया, घर में जब वो अच्छे काम करेगा तो खुशियां फैलाएगा ना।
1: वो अच्छे कर्म लेकर आसी, जैसे कि हम 5 लोग एक घर में रह रहे हैं, हमारी अपनी अपनी एनर्जी फील्ड है, अपने कर्म है, अपने संस्कार है। अब दरवाजा खुलता है, एक 6th मेंबर एंटर करता है,

0: ही है ना, एक बच्चा पैदा हुआ मतलब एक और आत्मा हमारे घर में आई, वो भी अपने संस्कार अपने पास्ट कार्मिक अकाउंट लेकर आ रही है। अब सपोज ये आत्मा बहुत श्रेष्ठ कर्म करके आ रही है, सपोज कोई संत आ जाए आपके घर, संत है, महात्मा है, कोई डिवाइन सोल है, वो आपके घर आई, दिव्य संस्कार लेकर आई, श्रेष्ठ कर्म लेकर आई, वो उसके कर्म है और उसके संस्कार हैं। लेकिन हुआ क्या, उसकी एनर्जी फील्ड जब हमारे घर आएगी, जैसे कोई महात्मा हमारे घर आ जाए, तो वो एनर्जी फील्ड वाइब्रेट होगी, वो वाइब्रेशंस हमें भी मिलेंगी। अगर हम उन वाइब्रेशंस को यूज करते हैं, मतलब उनका अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं कि वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं उस पॉजिटिव को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, उसको लेकर मैं अपनी थिंकिंग को चेंज करता हूँ, तो मेरे कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे, तब मेरे भाग्य में परिवर्तन आएगा। उनके आने से सिर्फ मेरा भाग्य बदल जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य।
1: और मैं, मुझे किसी ने समझो कुंडली वाले ने बोल दिया कि तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत सुख लाएगी, बच्चा होगा वो बहुत सुख लाएगा, और वो अगर नहीं लाया तो फिर मैं उनको ब्लेम करूंगा।
0: इसीलिए ना, बिकॉज
1: एक्सपेक्टेशन इतनी हैवी हो गई ना।
0: सी, प्रिडिक्शन क्या करती है, वो ऑलरेडी बताती है कि 10 साल बाद ये आने वाला है, 5 साल बाद और ये होगा, ये होगा, ये आत्मा आपके अब आपकी शादी होगी, सपोज कहा कि आपकी शादी होगी तो ऐसा होगा, शादी होगी मीन्स एक नया कार्मिक अकाउंट जो आपका पास्ट का है, वो नया वाला कार्मिक अकाउंट फिर से आपके लाइफ में आएगा। सपोज पहले पिछली बार आपका वो कार्मिक अकाउंट बहुत सुंदर था उस आत्मा के साथ, यू हैड अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, आपने सपोज उस आत्मा के लिए कुछ बहुत किया था उस जन्म में, अब जैसे ही वो आत्मा आपके कॉन्टेक्ट में आएगी, क्योंकि आपने किया था, जैसे ही वो आत्मा आपके कांटेक्ट में आएगी, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन वो क्यों हुआ, क्योंकि जिसके साथ वो कार्मिक अकाउंट था, वो कार्मिक अकाउंट फिर से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ वो स्टार्ट हुआ है, वो आत्मा इंस्ट्रूमेंट बनती है आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा लाने के लिए, लेकिन वो क्रिएशन आपकी ही है। और इसी तरह ऑपोजिट भी हो सकता है, अगर हमने किसी के साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, किसी को बहुत दुख दिया था, आज उस आत्मा से शादी हो जाए, या आज वो आत्मा मेरे घर बच्चा बनकर आए, तो फिर वो वाला कार्मिक अकाउंट भी तो आ रहा है ना। सो वे क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को साइड पे रख के और बोला वो आया तो सुख आया, वो आया तो दुख आया, वो आया तो प्रॉब्लम आ गई, ये आया तो प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब मेरा क्या फिर उसके अंदर। इसीलिए इसको जो हमने कहा ना, इंटेंशन और अटेंशन, ये अटेंशन रखना होगा कि जीवन में होने वाली हर चीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ना कि ये अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी, अच्छा हुआ ना भगवान की मर्जी, तो जैसे ही फिर कुछ प्रॉब्लम भी आती है वो भी भगवान की मर्जी।
1: क्रिकेट जब चलता रहता है, अगर वाइफ और मैं देखते तो मैं बोलता हूँ अभी 0 पे आउट हो जाए, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो, कैसी आप बातें करते हो, अभी देखो आउट हो जाएगा, प्लीज मत बोलो, आप मत बोलो। मेरे यहाँ बोलने से वो लंदन में खेल रहा है।
0: बट फिर इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना है ना। अब ऐसे क्या हुआ, ऐसे चलने से और ये सब बातें बोलने से, फिर ऐसे बोली हुई बातें जीवन की हर चीज में भी वही हो गई। सपोज बच्चा निकला घर से कुछ करने के लिए अपने काम पर, सपोज आपने निकलने से पहले बोल दिया मुझे डाउट है आज ये काम ठीक होगा, पता नहीं मेरे को लग रहा है कि ये तुम्हें ये वाली मीटिंग के लिए इस तरह से नहीं जाओ, या ये डील तुम्हारे लिए ठीक, लेट्स से, एंड बहुत अच्छी इंटेंशन ना, ऐसे कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, बहुत अच्छी इंटेंशन, मुझे नहीं लगता कि आपको ये डील करनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल नहीं होगी, गुड एडवाइस, प्योर इंटेंशन सेड विद द राइट एनर्जी, लेट्स से एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, सब परफेक्ट था। अब बच्चा गया मीटिंग में, कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इट डिडंट वर्क आउट, वापस आए कहेंगे सुबह जा रहा था ना, आपने बोला ना ये काम नहीं होगा, देखो नहीं हुआ, एंड इमीडिएटली द ब्लेम विल गो समवेयर एल्स, एंड तब सारा दिन एक दूसरे को बोलते हैं अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, सब अच्छा बोलो राइट, सब अच्छा सोचो वो भी राइट, लेकिन वो तब तक नहीं वर्क करेगा जब तक जिसका वो कर्म और जिसका भाग्य है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्लियर नहीं होगा।
1: बोलने वाला भी तो चेंज कर सकता है ना, जो आपके लिए भला है वो होगा, जो अच्छा है होगा, आपके लिए अच्छा है तो आपके फेवर में होगा, अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो नहीं होगा।
0: जो

0: बोल रहा है वो तो अपने बोल पर ध्यान रख सकता है, वो उसका पार्ट है। इम्पोर्टेंट है जो ले रहा है उस बात को, उसको रियलाइज करना होगा कि किसी के बोलने से, किसी के सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी के भी बोलने से या सोचने से मेरा भाग्य नहीं बनता है। कोई संत आत्मा महात्मा भी मुझे ब्लेस कर देना कि ये आपका काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं हमें ब्लेसिंग दो, मेरा ये काम हो जाए। काम हो जाएगा? हाँ, वो ब्लेसिंग देंगे,
1: भला होगा
0: नहीं, जो भी ना, बिकॉज आजकल बहुत सारा कुछ है कि इनके पास जाओ प्लीज मेरा ये काम हो जाए, उनके पास जाओ प्लीज, एंड वो बस इतना बोल भी देंगे अगर कि हाँ आपका बच्चा होगा या आपका ये काम होगा, अगले साल तक आपका बेटा होगा, बोल दिया। जिसने बोला उसने एक थॉट क्रिएट की, एंड पावरफुल आत्मा है तो उनकी थॉट बहुत पावरफुल
1: मैनिफेस्ट होगी।
0: नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगी।
1: आपकी पावरफुल थॉट मेरी थॉट को चेंज कर सकती है और मेरी थॉट फिर मैनिफेस्ट हो सकती है ना?
0: उसके लिए आपको बहुत पावरफुल होना पड़ेगा। लेकिन मैं
1: तो
0: आपके लिए नहीं, पावर नहीं आ गई।
1: मैं बोलता हूँ कि शिवानी बहन ने मुझे ये बोल दिया तो मुझे उनकी पावरफुल थॉट मुझे मिली और मेरी थॉट कॉन्फिडेंस से पावरफुल होगी कि अब होगा ही होगा।
0: होगा तब जब कंप्लीट वो थॉट अब आपकी है। हाँ। और पावर वो आपकी। सी, बहुत
1: इम्पोर्टेंट दिया ना,
0: नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि जब तक सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं होगा, मेरे आसपास के सबकी पावर भी कुछ नहीं कर सकेगी। अगर एक घर में एक बच्चा कमजोर है, इमोशनली नेगेटिव सोचता है, उस परिवार के सारे लोग भी उसके लिए अच्छा सोच ले, सारे संत महात्माएं भी उसके लिए अच्छा सोच ले, तो भी भाग्य नहीं बदलेगा। ये इम्पोर्टेंट है कि सब लोग उसके आसपास बैठकर सोचें और बोलें इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा, ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा है, सब बढ़िया होगा। इट विल नॉट हैपन जब तक वो आत्मा जो वो कर्म जिसका है उसका भाग्य नहीं बदलेगा, जब तक वो अपने कर्म को नहीं बदलेगी। ये पावर
1: थॉट उसके कर्म को नहीं, उसकी थॉट को नहीं बदलती है,
0: थॉट को नहीं बदलेगी। अगेन वी सॉ, वो थॉट को बदलेगी, मतलब पावर किसको दे दी मैंने? अगर मैं बोलूं आप मेरे लिए अच्छी थॉट क्रिएट करो, मेरा काम हो जाता है,
1: ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अपने बच्चे को समझाऊं, बेटा ऐसा सोचो, आपके ऐसे सोचने से, अच्छा सोचने से आपका ये सब बदल जाएगा, ये सब बातों में मत जाओ, तो मैंने एक पावर दिया ना,
0: आपने एक पावरफुल थॉट दी,
1: तो उसको अपने मेरे थॉट से उसके थॉट, उसने चिंतन किया, फिर उसकी थॉट पे चेंजेस आए, जो आपका प्रोग्राम क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है।
0: तो वही जैसे आपने कहा उसकी थॉट में चेंजेस आ गए,
1: वही तो कह रहा हूँ मैं।
0: तो फिर किया किसने सारा काम?
1: उसी ने किया, लेकिन मैंने एक ट्रिगर दिया, जैसे आपने बोले जिग्सो पजल है,
0: राइट,
1: सिर्फ भगवान थोड़ा सा बोला इशारा, बाप ने बोला ए इधर कर दे या बी का मुंह उधर कर दे,
0: राइट,
1: इतना ही बोला ना,
0: बिल्कुल। और लेकिन जब उसने बोला, क्या मैंने उस बात को एक्सेप्ट किया? लेट्स से साइड पे पेरेंट बैठ कर बोले ऐसे कर दे, मैं बोलू मैंने ऐसे करना है, जब तक मैं रिसीव नहीं करूं तो सारे देने वाले भी मेरे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं।
1: वो तो है,
0: इसीलिए अपना एंटीना रिसीविंग पावर, सी भगवान से भी मांग रहे हैं, महात्माओं से भी मांग रहे हैं, बड़ों से भी मांग रहे हैं, सबसे लेना बहुत अच्छा है, लेकिन लेने वाले को लेने का पात्र भी बनना पड़ेगा ना, सिर्फ मांगने से नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पात्र, देने वाला है वो पात्र और लेने वाला पात्र, सब दे रहे हैं लेकिन लेने वाला पात्र ही तैयार नहीं। तैयार मीन्स वो चाहता है कि मुझे सबकी दुआएं मिले, लेकिन खुद की थॉट्स को नहीं चेंज करेगा तो वो लेने वाले पात्र ने रिसीव नहीं किया। तो इसलिए सारा दिन में ये इक्वेशंस अगर क्लियर होंगी, मेरा कार्मिक अकाउंट, मेरी डेस्टिनी, मेरी थॉट्स, मेरी डेस्टिनी, सबकी गुड विशेस मुझे एक एनर्जी दे रही हैं, मैं इस एनर्जी को लूं और अपनी थॉट्स को चेंज करूं, फाइनली जो मेरे साथ होगा वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, दिस हैज टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक नहीं आएगी। जो मेरे साथ होगा बहुत अच्छा भी, वो भी मेरे कर्म से, और कुछ अगर थोड़ा दूसरा भी, वो भी मेरे कर्म से। दूसरों ने अपनी एनर्जी दी, लेकिन रिसीव करना या नहीं करना, वो पावर मेरे पास थी। तो ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि सब मुझे दुआएं दे रहे हैं, लेट मी ओपन माई माइंड एंड वो सारी ब्लेसिंग्स लू और अपनी थॉट्स को चेंज करूं। ये मुझे नेगेटिव एनर्जी में भी हेल्प करता है कि लोग मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, अपने एंटीना को बंद कर दो, नहीं कंज्यूम करनी किसी की एनर्जी, अपनी एक थॉट को ले लो और फोकस करके अपने कार्य पे चलो। दूसरों के बारे में सोचना, चिंतन करना जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, मैं अपने एंटीना को खोल देता हूं। अब इन सारी चीजों में जो रिसीव करने वाला है, मतलब सपोज मैं, मेरी अपनी स्थिति पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। स्थिति सिर्फ उस बात में नहीं, ओवरऑल स्थिति आपके, सपोज आप कोई काम के लिए जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मैंने आपके लिए नेगेटिव सोच दिया, पता नहीं कैसे होगा इनका काम, या आई होप इनकी ये डील आज, इतना भी गंदा सोच लिया कि इनको ये डील ना मिले आज। अब आपकी एनर्जी फील कैसी है, ओवरऑल एनर्जी फील, नॉट अभी की मन की स्थिति, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सपोज आप इस डील को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये तो होना ही है, मतलब ये तो दिस इज द बेस्ट फॉर मी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी एनर्जी फील, जनरली आपका पैटर्न एनर्जी फील वो इतनी पॉजिटिव नहीं है, उसमें बहुत गुस्सा है, बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत कई भी नफरत भी है किसी के लिए, हर्ट भी है, मतलब इफ द एनर्जी फील इज मोर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। लेकिन इस बात को लेकर आप बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जी फील नेगेटिव है तो मेरी नेगेटिव थॉट आप पर प्रभाव डालेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑरा क्या है। अब अगर आपको चाहिए कि मेरी ये नेगेटिव थॉट आपके ऊपर प्रभाव ना डाले, तो आपको सिर्फ इस बात में पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी फील को स्ट्रांग करना है, तब आपके ऊपर आसपास की वाइब्रेशंस, जिनको आप लेना चाहेंगे उनको आप लेंगे, जिनको नहीं लेना चाहेंगे उनको आप स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि इट विल द पावर विल बी विद यू। अगर इसीलिए क्यों स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन हेल्प करता है, जो आत्मा डेली मेडिटेशन करेगी, मतलब परमात्मा से कनेक्शन जोड़े, अच्छा सोचे, श्रेष्ठ कर्म करे, दुआएं सारा दिन उस आत्मा को मिले, ऐसी आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील, ओवरऑल हेल्थ, नॉट अभी 5 मिनट की हेल्थ, उस आत्मा की ओवरऑल एनर्जी फील जब पॉजिटिव और पावरफुल होगी, तब फिर उस आत्मा के लिए अगर कोई बुरी नजर, कोई गलत थॉट, कोई ईर्ष्या, कोई कुछ बात, तो वो उसके ऊपर असर नहीं होगा। अगर हमारी ओवरऑल एनर्जी फील्ड पावरफुल है, मतलब हम इमोशनली हेल्दी हैं, तब बाहर का परिवर्तन, बाहर का प्रभाव, यहां तक कि ग्रहों का प्रभाव भी, हम कहते हैं ना ग्रह इस टाइम ऐसे है, ग्रह मतलब वो ग्रह मेरे किसी संस्कार पर इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन अब अगर मैंने अपने संस्कारों पर वर्क करना शुरू कर दिया है तो फिर इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। तो फोकस सेट करें, फोकस इज अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन करना, जो कहते हैं ना डिटॉक्सिफाई, तो सारा जो पकड़ा हुआ है नेगेटिव है इसको क्लीन करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाते जाएंगे, विल बिकम फियरलेस, हमें फिर किसी से नहीं डरना है।
1: तो ये फियरलेस कैसे बनना है, ओवरऑल एनर्जी को कैसे सुधारना है और कैसे इम्प्रूव करना है, ये अगले एपिसोड में आपसे बात करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। थैंक यू। नमस्कार।
2: Everything good that is happening in our life, and also things which don't seem right, all of them are a consequence of our karmas. They have not been decided by God or deities. Our karmas write our destiny. Wrong karmas of the past come to us as challenges today. Help from others in times of challenges is a return of our good past karmas. Right response to the challenge now will be our right karma in the present, and this reduces the suffering. God is the ocean of knowledge, love and power. Connection with God gives us the knowledge and power to do the right karma in the present and to also face the return of past karma in the right way.

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उस

0: दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं, एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिय आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो। आपके साथ आरजे संजय। दोस्तों, 21 मई का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम हमले में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ये हमला श्रीलंका के अलगाववादी संगठन द्वारा किया गया था। राजीव गांधी के समेत 15 लोग मारे गए, 43 लोग घायल हुए। यह घटना भारत के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक आतंकवादी हमला माना जाता है। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी कारण भारत सरकार ने 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस घोषित किया। सरकारी संस्थानों और विद्यालय में शपथ दिलाई गई, हम आतंकवाद और हिंसा का विरोध करेंगे। तो दोस्तों, आज हम राजीव गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका बलिदान हमें प्रेरणा देता रहेगा। आइए हम सब मिलकर शांति, प्रेम और एकता का मार्ग अपनाइए। तो चलो सुनते हैं इसी के साथ एक सुंदर सा गीत।

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 12 मार्च 1993 की उस घटना की जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस दिन मुंबई शहर में एक के बाद एक कई स्थानों पर सिलसिलेवार धमाके हुए, चारों ओर अफरा तफरी मच गई, लोग भय और असुरक्षा से घिर गए। इन धमाकों में सैकड़ों निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हुए। यह पहली बार था जब इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र ठहर गया और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस घटना का उद्देश्य समाज में भय और अस्थिरता फैलाना था, लेकिन इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया और लोगों ने एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध किया। 12 मार्च हमेशा याद दिलाता है कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे

प्रिय दोस्तों, हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2001 की उस घटना की जिसने लोकतंत्र की नींव को हिला दिया। उस दिन संसद भवन परिसर में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 5 हमलावर नकली पहचान पत्र और वाहन स्टिकर का उपयोग कर परिसर में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उस समय कार्यवाही स्थगित हो चुकी थी, लेकिन भवन में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और बहादुरी से लड़ते हुए हमलावरों को रोक दिया। इस मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मी शहीद हुए और सभी हमलावर मारे गए। ये हमला लोकतंत्र पर सीधा आघात था और देश की सुरक्षा के लिए बड़ी चेतावनी साबित हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर संगीत।

आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 2008 की उस घटना की जिसने पूरे समाज को गहरे दर्द में डाल दिया। उस दिन मुंबई शहर के कई प्रमुख स्थानों पर एक के बाद एक हमले हुए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरा होटल में लंबी मुठभेड़ चली। कैफे में निर्दोष लोग निशाना बने। धार्मिक क्षेत्रों पर बंधक संकट पैदा हुआ और विले पार्ले में टैक्सी में विस्फोट हुआ। चारों ओर गोलियों की आवाज, धमाकों की गूंज और अफरा तफरी का माहौल। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। सुरक्षा कर्मियों ने बहादुरी से मोर्चा संभाला और लंबी लड़ाई के बाद हमलावरों को परास्त किया। ये घटना सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक सुंदर गीत।

14 फरवरी 2019 की उस घटना की जिसने पूरे देश को गहरे दर्द में डाल दिया। उस दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। एक वाहन में विस्फोटक भरकर टकरा गया था और चारों ओर धमाके की गूंज फैल गई। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और कई घायल हुए। ये घटना देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। पूरे समाज में शोक और आक्रोश का माहौल था। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है। तो दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक सुंदर सा गीत।

0: साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अब तुम्हारे हवाले।
1: प्रिय श्रोताओं, इन घटनाओं की स्मृति हमें यह याद दिलाती है कि हिंसा और आतंक का कोई स्थान नहीं है। हमें मिलकर शांति का दीप जलाना है, प्रेम का संदेश फैलाना है और एकता की शक्ति को बनाए रखना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी को जिन्होंने अपने प्राण गंवाए। प्रिय दोस्तों, रेडियो पुणेरी आवाज की तरफ से इन सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

पागल में से गाई हो, तेरा दिल करता हो यूं यूं, आंख मेरी शर्माई हो, जी आंख मेरी शर्माई हो, फिर देखो।

बढ़ता चल प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमीन तू बढ़ता चल रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं घबराना कहीं

0: लड़की, अरे कौन सी वो लड़की?
1: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, वो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या, आई थी वो धमकी।

मेरा वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मेरा बेटा नहीं।

हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं, हो एक बार आता है दिन ऐसा रोज नहीं के मुझे

झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ झूम झूम गाता है दिन ऐसा रोज नहीं, मुझको संभालो कोई।

गिरा गिरा जाऊं जब सामने तू आए। ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं, ओ दिल की बात बताता है दिन ऐसा रोज नहीं के मुझको संभालो।

0: खुशी के फूल गम की धूल पे बिछा दो।
1: इसे खुशियों का
2: कोई तो कमाल की बात है लता जी की
1: कर दो
2: कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार है, मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचती कि मैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ, मैं लता मंगेशकर हूँ, तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ। हम सबके लिए उन्होंने गाया, मेरे से पहले वालों के जनरेशन के लिए भी गाया और आज तक गा रही। उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती है।